0: ना। और विश्व संग्रहालय दिवस के मौके पर आज प्रदेश के स्मारकों और राजकीय संग्रहालयों में निशुल्क प्रवेश की सौगात दी गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम मरुमंगल। आज के हमारे कलाकार हैं बुंदू खां और उनके साथी।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मरु मंगल, आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से। आज के हमारे कलाकार हैं बुंदू खां और उनके साथी।

लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल आप सुन रहे हैं कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। आज के हमारे कलाकार हैं बुंदू खां और उनके साथी। आज के कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल। आज के हमारे कलाकार थे मुंदू खां और उनके साथी। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आपके साथी कुंदन कटारिया का, आपका साथी हाजिरे फिल्म संगीत लेकर। प्रोग्राम का पहला गीत फिल्म क्रांति से। आवाजें हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, नितिन मुकेश और साथियों की। इस गीत को लिखा है संतोष आनंद ने और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। जो चलती रहे पल पल उसे जिंदगी कहते हैं, जो चलती रहे पल पल उसे जिंदगी कहते हैं, जो जलती रहे हर पल उसे रोशनी कहते हैं, जो खिलती रहे पल पल उसे मोहब्बत कहते हैं, जो खिलती रहे पल पल उसे मोहब्बत कहते हैं, जो साथ न छोड़े कभी उसे दोस्ती कहते हैं।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: श्रोताओ, आइए सुने सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर को। फिल्म का नाम है प्रेम रोग। इस गीत को लिखा है पंडित नरेंद्र शर्मा ने और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से। अगला गीत अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाज में। फिल्म का नाम है आई मिलन की रात। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीतकार आनंद मिलिंद।

श्रोताओं, आइए प्रोग्राम का अगला गीत फिल्म गंगा जमुना सरस्वती से। आवाज़ है लता मंगेशकर की। इस गीत को लिखा है इंदिवर ने और संगीतकार अनु मलिक।

श्रोताओं, आइए सुने फिल्म राम तेरी गंगा मैली में लता मंगेशकर और साथियों को। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीतकार रविंद्र जैन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत मीडियम वेव 326.7 किलोमीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर, एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्स पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम आज के फनकार।

आज के फनकार कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आपके हर दिल अजीज दोस्त कुंदन कटारिया का आपका साथी हाजिर है ये प्रोग्राम लेकर। आज के फनकार के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे अभिनेत्री रीमा लागू की पुण्यतिथि पर ये विशेष कार्यक्रम। सुनवाएंगे उनकी फिल्मों के गीत। बात करते हैं हिंदी फिल्मों की शानदार अभिनेत्री रीमा लागू। उन्हें फिल्मों में माँ की शानदार भूमिकाएं निभाने के लिए जाना जाता है। फिल्म मैंने प्यार किया की साथिन माँ हो, या फिल्म वास्तव की कठोर माँ, या फिर फिल्म ये दिल लगी की मालिकाना माँ, रीमा लागू की इन भूमिकाओं का कोई सानी नहीं था। उन्होंने नए जमाने की माँ की भूमिकाओं को खूब चरितार्थ किया। फिल्म आशिकी, साजन, हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया, वास्तव, कुछ कुछ होता है और हम साथ साथ हैं, जैसी कई फिल्मों में रीमा ने माँ का जीवंत किरदार निभाया। उन्होंने सलमान खान के लिए कई फिल्मों में उनकी माँ की भूमिका निभाई। टीवी सीरियल तू तू मैं, इसमें वे सास के किरदार में थी। ऐसी थी अभिनेत्री रीमा लागू। आज हम सभी उनको याद कर रहे हैं उनके पुण्यतिथि पर। इस कार्यक्रम के माध्यम से एक गीतों का सजा गुलदस्ता उनको श्रद्धांजलि के रूप में भेंट कर रहे हैं आप और हम सभी। सुनवाते हैं उनकी फिल्म का गीत लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज में। फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन। इस गीत को लिखा है रविंद्र रावल ने और संगीतकार राम लक्ष्मण।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोता, हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री रीमा लागू की पुण्यतिथि पर। अगर उनके जन्म की बात करें तो 3 फरवरी 1958 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था और आज उनकी पुण्यतिथि है 18 मई को। आप और हम सभी उनको गीतों का गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं उनको श्रद्धांजलि के रूप में। उनका वास्तविक नाम गुरिंदर बादबाड़े था। वे जानी मानी

मराठी अभिनेत्री मंदाकिनी भातभाड़े की बेटी थी। उनके अभिनय की काबिलियत तब सामने आई जब वे पुणे के हुजूर पागा हाई स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। प्रोफेशनल तौर पर अभिनय करने के लिए उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। रीमा का विवाह मराठी अभिनेता विवेक लागू से हुआ। शादी के बाद उन्होंने अपना नाम रीमा लागू रख लिया। रंगमंच से अपने अभिनय का सफर शुरू करने वाली रीमा ने हिंदी की कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। उनको हिंदी फिल्मों में मां की शानदार भूमिकाओं के लिए जाना जाता था। सुनवाते हैं उनकी मां की भूमिका का गीत फिल्म जय विक्रांता से।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: माँ के शानदार भूमिकाएं निभाने वाली रीमा लागू, जिनको आज हम सभी याद कर रहे हैं उनकी पुण्यतिथि पर। बॉलीवुड में उनका सितारा फिल्म कयामत से कयामत तक में जूही चावला की माँ के किरदार से चमका। रीमा लागू अंत समय तक अभिनय के क्षेत्र में सक्रिय थी। अपने

अंतिम दिनों में वे धारावाहिक नामकरण में काम कर रही थी। इसके अलावा वे रंगमंच और विज्ञापन फिल्में भी कर रही थी। वैसे तो रीमा लागू ने अपना अभिनय का सफर रंगमंच से शुरू किया था, लेकिन देखते ही देखते वे बॉलीवुड की चहेती माँ बन गई। बॉलीवुड की अक्सर दया का पात्र जैसी दिखने वाली माँ से अलग रीमा लागू ने अपने किरदारों में हमेशा एक अलग अंदाज रखा। फिल्म वास्तव में ही नहीं, उन्होंने अपने माँ के हर किरदार को हमेशा पारंपरिक माँ की छवि से अलग और ज़्यादा प्रैक्टिकल रखा। रीमा लागू को अपने किरदारों के लिए 4 बार फिल्म फेयर का बेस्ट स्पोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड मिल चुका था। एक और गीत उनकी फिल्म का सुनवाते हैं, हम साथ साथ हैं, हरिहरन और साथियों के स्वर से। इस गीत को लिखा है रविंद्र रावल ने और संगीतकार राम लक्ष्मण।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोतों, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के फनकार। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं अभिनेत्री रीमा लागू की पुण्यतिथि पर हमारा ये विशेष कार्यक्रम। ममता और स्नेह से भरी माँ का रोल निभाने के लिए रीमा लागू हमेशा प्रसिद्ध रही। सलमान खान के करियर में रीमा लागू का बहुत बड़ा योगदान है। सलमान खान की कई बड़ी फिल्मों में रीमा उनकी माँ बनी। सलमान की जिन फिल्मों में भी उन्होंने माँ की भूमिका निभाई, वह सुपरहिट रही। हालत तो ये थी कि लोग उन्हें सलमान खान की माँ कहकर पुकारने लगे थे। हालांकि रीमा और सलमान खान की उम्र में ज़्यादा फर्क या फासला नहीं था, लेकिन उनके चेहरे पर ममता और स्नेह ने उन्हें वास्तविक जीवन में भी सलमान खान की माँ बना दिया। उस पर संयोग भी ऐसा रहा कि जिस भी फिल्म में रीमा सलमान खान की माँ बनी, उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सबसे पहले फिल्म मैंने प्यार किया, जो सुपरहिट रही। उसके बाद पत्थर के फूल, फिर साजन, हम साथ साथ हैं और जुड़वा। हालांकि हम आपके हैं कौन में रीमा लागू सलमान खान की हीरोइन माधुरी दीक्षित की माँ बनी थी और ये फिल्म भी सुपरहिट रही। उनकी एक फिल्म मैंने प्यार किया, इसी का गीत आपको सुनवाते हैं श्रद्धा सिन्हा की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है असद भोपाली ने और संगीतकार राम लक्ष्मण।

जी हाँ श्रोताओं, आपसे बात हो रही है अभिनेत्री रीमा लागू की पुण्यतिथि पर। अगर सिनेमा की दुनिया में माँ के किरदारों की बात आएगी तो रीमा लागू का नाम जरूर लिया जाएगा। रीमा लागू का चेहरा एकदम माँ की मूरत जैसा लगता था। माँ कैसे हंसती है, कैसे रोती है, कैसे गुस्सा करती है और कैसे एक जवान लड़की की सहेली बन जाती है। बड़े पर्दे पर रीमा लागू ने यह सब दिखा दिया था। जब अभिनेत्रियां माँ का किरदार निभाने से पीछे हटती थी, उस दौर में उन्होंने पर्दे पर माँ की परिभाषा बदल कर रख दी। रीमा लागू ने बता दिया था कि माँ केवल सूती साड़ी में रोना ही नहीं जानती, बल्कि सजना संवरना और हंसना भी जानती है। रीमा लागू ने पर्दे पर सलमान खान, माधुरी दीक्षित, जूही चावला और काजोल की माँ का किरदार निभाया है। सलमान खान की माँ के किरदार में तो रीमा लागू ऐसे जचती थी कि जैसे सच में सलमान की माँ ही हो। उस दौर में जब फिल्मों में हीरो हीरोइन अहम किरदारों में होते थे और लोग उनको देखने के लिए ही जाते थे, उस वक्त पर रीमा लागू ने साइड रोल में जान फूंकी थी। दर्शक भी माँ के किरदार में उनको ही देखना पसंद करते थे। ऐसी थी अभिनेत्री रीमा लागू। एक और गीत उनकी फिल्म का कुछ कुछ होता है, उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की, गीतकार समीर और संगीतकार जतिन ललित।

तुझे याद ना मेरी आए। कैसे ना आएगी याद, याद तो आएगी उस माँ के निभाए हुए किरदार की, अभिनेत्री रीमा लागू की। उनकी एक्टिंग इतनी असली और दिल छू जाने वाली, क्योंकि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की थी। इसके अलावा अभिनेत्री ने छोटे पर्दे पर टीवी शो तू तू मैं में भी काम किया, जो कि बहुत मशहूर हुआ था। रीमा लागू ने अपने करियर में 95 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया था। इसके अलावा उन्होंने श्रीमान श्रीमती जैसे टीवी शो को भी किया। फिल्मों में उनकी एक्टिंग बेहद दिलचस्प थी।

पर रोने वाली माँ को दी थी चुनौती। रीमा ने उस दौर की माँ को भी चुनौती दी थी जो सिर्फ पर्दे पर रोती रहती थी। रीमा ने अपने किरदार के जरिए बताया था कि माँ होने के मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हल्के रंग की साड़ी पहनकर रोती रहे और केवल अपने बच्चों के बारे में सोचे, बल्कि माँ तो वो भी है जो खुलकर हंसे, खुश रहे, सजे संवरे और अपने बारे में भी सोचे। रीमा ने माँ के किरदार में हमेशा कलरफुल कपड़े पहने और मॉडर्न हेयर स्टाइल बनाई। उन्होंने उस माँ को पर्दे पर जीवित किया जो गाना गाती है, डांस करती है और अपनी बेटियों की सहेली बनती है। ऐसी थी रीमा लागू। एक और गीत उनकी फिल्म का, पत्थर के फूल से, लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है रविंद्र रावल ने और संगीतकार राम लक्ष्मण।

माँ का जीवंत किरदार निभाने वाली रीमा लागू, उनकी फिल्म मैंने प्यार किया और हम आपके हैं कौन के लिए वर्ष 1990 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। अभिनेता राहुल रॉय की फिल्म आशिकी और संजय दत्त की फिल्म वास्तव के लिए भी उन्हें इसी सम्मान से नवाजा गया था और उनकी 18 मई 2017 को इस फिल्मी दुनिया को, इस जगत को अलविदा कह गई 59 वर्ष की आयु में। दिल का दौरा पड़ने पर उन्हें इस जगत को अलविदा कहना पड़ा। ऐसी थी रीमा लागू, मां का किरदार निभाने वाली, जिनको आज आप और हम सभी याद कर रहे हैं उनकी निभाई फिल्मों के गीतों के माध्यम से। एक फूलों का गुलदस्ता गीतों के रूप में उनको भेंट कर रहे हैं श्रद्धांजलि के रूप में। और आखिर में आपको सुनवाते हैं उनकी फिल्म साजन का गीत अनुराधा पौडवाल की आवाज में, गीतकार समीर और संगीतकार नदीम श्रवण।

श्रोताओं, जिंदगी के आखिरी वक्त तक रीमा लागू की शूटिंग जारी थी, जिन्होंने जिंदगी के आखिरी दिनों तक अभिनय किया। उस वक्त वे नामांकन टीवी शो का हिस्सा थी। 17 मई 2017 की बात है जब इस अभिनेत्री ने शो की शूटिंग करके घर पर लौटी थी। इसके बाद उनको सीने में तेज दर्द की शिकायत हुई और दर्द जब ज़्यादा बढ़ा तो इनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा और आधी रात को यानी कि 18 मई को वो इस दुनिया को अलविदा कह गई। और उनकी यादें इन गीतों के माध्यम से हमारे दिलों में आज भी जिंदा है और माँ के निभाए इस किरदार के रूप में। आज आप सुन रहे थे आज के फनकार के तहत अभिनेत्री रीमा लागू की पुण्यतिथि पर हमारा विशेष कार्यक्रम अपने साथी कुंदन कटारिया के साथ। और इसी गीत के साथ ही इजाजत दीजिए, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के फनकार। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फरमाइशी प्रोग्राम गीत बहार।

कार्यक्रम गीत बाहर सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। दुर्गाराम नायक की तरफ से दोस्तों कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म हमराज से, और इस गीत को सुनना चाहा है आप सबने। सिद्धार्थ नगर दर्यापुर भांभली से गजानन येले, नवदीप, विश्वदीप येले और अशोक येले। रघुनाथपुरा श्री गंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हीना, हर्षित गोस्वामी। नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा, अलका मिड्ढा। इसी गीत को सुनना चाहा है विक्रम कड़वासरा, सचिन सतीश, योगेश, युद्धव कड़वासरा, कुंदन जाखड़, लीलाधर स्वामी, किशन मायल, किडूराम जोया, हनुमान सहारण और सुनील पाईवाल ने। गांव कलाना, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से। घमंडिया सूरतगढ़ से जगदीश ढोकिया, प्रमिला ढोकिया, ज्योति सरिता, तमन्ना, सचिन, विष्णु और शिवम ढोकिया। 5 BNPM किकरवाली जोहड़ी से अशोक मांझू, सिद्धार्थ मांझू। वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। सादुल शहर से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। रज्जाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान और शबनम ने हनुमानगढ़ टाउन से सुनना चाहा है इसी गीत को। और हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु, सरवण रिणवा, हंसराज भाटिया, मनीराम, रणजीत राम किरोड़ीवाल। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छींपा, कपिल छींपा, ईशान और पूजा परिहार। बेहरवाला खुर्द सिरसा से बलवंत जाखड़, ममता जाखड़, प्रिया नैना जाखड़, हिमानी और शिवम जाखड़। पदमपुर से मेहर अरोड़ा, ममता, कीर्ति और भूमिका अरोड़ा। नई आबादी हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह तर्ड, कृष्ण मुकेश तर्ड, रामचंद्र, कपिल देव और हिमानी जाखड़। मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान और शेख हबीबुर रहमान। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा परवीन और जोहानुल होदा। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण, कपिल मेहरा, इनके साथ हैं कुणाल मेहरा। बठिंडा रोड डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग। गांव खारियां ढाणी, जिला सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश पूजा, आरजू और नव्य बिजारनिया। गांव खोखरावाली से विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास रोशनी और शगुन बारासा।

आइए श्रोताओं अब सुने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को। फिल्म का नाम है एक नज़र और इस गीत को सुनना चाहा है गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अरिजीत खटक, सुंदरलाल योगेश, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक। इसी गीत को सुनना चाहा है संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत, भरत, कमल साहनी, पिंगावाली चौक, गुराया जलंधर से, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढेंगिया, नमन ढेंगिया और अपार ढेंगिया, नरगौड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, योगेशपुरी टिवंकल, डिंपल मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, तौसीफ तैमूर हाशमी और कलीम अंसारी, गांव टोरोवाल नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, प्रियंका थांदी, प्रशांत, प्रियम, वामिका और वाणी थांदी, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा, पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल, नीतिशाह, सुरभि शाह, अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह, बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला, सुमित कुमार दामोदर, साधना, पवन पाटिल, वड़सिंगी बुलढाणा से अमोल मानकर, शोभाताई मानकर और शलोक दीपाली, मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग, अंजना रानी,

शिल्पा गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से, दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार, रिंकी शेखावत। गांव ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से, रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना, वंदना प्रियल, दिव्यांशी। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन। मोहल्ला हलवाईयान, शेरकोट, जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी प्रवीण, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और मदनलाल वर्मा। गांव आरायन से बनवारीलाल जयपाल, विमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम, विमला, जयपाल, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराजहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से। हमीरी कलां झुंझुनू से भंवर सिंह मीणा, तन्मय मीणा और गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान फैजान खां, अन्नू खां, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर, प्रमोद और प्रदीप येमेकर। इसी गीत को सुनना चाहा है। फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल, लाड़ी खेड़ा, शालनी, टिवांशी और इनका पूरा परिवार। इनके साथ हैं जीवन सिंह बूक। गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम, मोहम्मद आयान, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद यासीन और शमसुल कमर राही। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण खुराना, लव ए आरव खुराना और एसके पप्पी। पुखराज बड़गुजर से कैलाश मिस्त्री, गौरधन दरा, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी और हसन सिक्का। हिप्पर सोगा औसा, जिला लातूर से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो शेख, बाबा शेख, शिमर और कृष्ण शेख। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अकरम अंसारी और अल्ताफ अंसारी। डुमराव बिहार से डब्लू अंसारी, सोनम अदीबा और वसीम अंसारी। सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून, आफ्ताब अंसारी, महताब, मेराज, कल्लू और मल्लू अंसारी। नौहर हनुमानगढ़ से नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु, पवन सुथार, शंकर बिहारी, शिव कुमार, सोनू, महेंद्र सुथार और कालू। इनके साथ हैं गांव फेफाना नौहर से जयसिंह धामू, धर्मेंद्र सुथार, मदन सुथार, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब। आइए सुने आप सबकी पसंद का ये गीत।

आइए श्रोता अब सुने घरौंदा फिल्म का गीत अरुणा लैला और भूपेंद्र की आवाजों में, और इस गीत को सुनना चाहा है आप सबने मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक हकीकतपुरा मऊ से, मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, पीपरलॉड सरगांव छत्तीसगढ़ से, दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवम वर्मा, सांगली महाराष्ट्र से हनुमंत शिंदे, सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और बेबी जानविका, उत्तम नगर दिल्ली से बौद्धराज खोरवाल,

कमला रानी, गीतिका खौरवाल और भानु प्रकाश। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़। इसी गीत को सुनना चाहा है नाभा जिला पटियाला से सोमदत्त, कैरव, ज्योति, गुरमंत और मनु। शेरवानी गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। इसी गीत को सुनना चाहा है मोतीनगर एरिया से, दिल्ली से इन्होंने नाम अपना इस मैसेज के अंदर थोड़ा साफ नहीं लिखा है, समझ नहीं आ रहा है, मानसी गौरव। और इसी गीत के लिए हमें यह फरमाइश पहुंची है बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राज, सूरज कुशल वर्मा। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित, बेबी गर्वी, बेबी हिमाक्ष। गांव बांडीवाला फाजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया। गांव जोगीवाला श्री गंगानगर से प्रेम सहारण, मोनिका और मनीष। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु और रिधान खुराना। मुक्तसर से बाबू सिंह धीमान, बलजिंद्र कौर, रवनीत, निशु। भोपालगढ़ जिला जोधपुर से घनश्याम सिंह चौधरी और अंकित सिंह। फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम रागिया शेफ, शेख रहीम मुन्ना और इनके साथ हैं दानिश आसिफ शेख। संभलपुर काकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। सांगली जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला, सबाहत, किर्त हुजरे और रेहान शेख। फवारा चौक सिरसिला जिला चूरू राजस्थान से संदीप सिंह सोनगरा, प्राची सोनगरा, सोमल कार्तिक। डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामोरिया, अजयदेव तामोरिया, तुषार, पूजा तामोरिया, राधिका और प्रभा देवी। धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, आलिया, आयान बाबू। लखवाली हेड से भंवरलाल, कृष्णा, विशाल, सौरभ, ममता, राजबाला, नव्या, लक्षिता, मोहम्मद रफीक। संगरिया से मुकनाराम और महावीर लोहरा। महोबा बुंदेलखंड यूपी से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागनी, रिया, रेणु, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका, चंद्रेश गोहर और सुनील पाठक। रेणु शर्मा, विशेष शर्मा, रुद्र शर्मा, वंदना शर्मा, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। ये व्हाट्सएप मैसेज पहुंचा है हमारे पास। रानी बाजार बीकानेर से रानी झाम और बिट्टू झाम का। मरहर

दरवाज़ा एटा से, नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन, सुहेल हसन, रसीद वारसी, अनम अब्बासी, यसफ अब्बासी, सिकंदरा, मोबिन अब्बासी और इशरत परवीन का मरहरा दरवाज़ा एटा से, नबी हसन अब्बासी, शहनाज, नवेद, सुहेल, रसीद, अनम

है हितेंद्र दास का आसम से, अमरपुरा जालूखाट से जगजीत चंद्र प्रजापति, गांव नलोई तहसील शिवानी मंडी हिसार से सज्जन कुमार जांगड़ा, राजबाला नवीन मंदी, प्रियंका सपना नीतू कार्तिक और वेदांश जांगड़ा, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, नाईवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ से गौरव कंडियारा, राणा सिंह कंडियारा, मन्नू कंडियारा लड्डू और मीतो, अलीका तहसील डब्वाली से रूप सिंह लाखोत्रा, करमजीत, रानी सोनू और रजनी। इसी गीत के लिए ये मैसेज हम तक पहुंचा है गांव ब्रिकाली नोहर से, राम कुमार, सुधीर, दिलीप कामड़, बेगराज, कालू खान, नजाकत अली, गुट्टे खां, छगन सिंह तंवर और कालू का। आइए सुने आप सबकी पसंद का घरों दा फिल्म का ये गीत।

0: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
0: दो दीवाने शहर में।

आइए श्रोता वो अब सुने धनवान फिल्म का गीत। आवाजें दी हैं सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर ने। इस गीत को सुनना चाहा है, हम तक ये खत पहुंचे हैं डब्बाली हरियाणा से, जेके बाकोलिया, सुनीता बाकोलिया, संजय अनिल मीनू बाकोलिया, लुदेसर से पप्पू राम गाट, संतोष देवी, लक्ष्मी देवी, प्रियंका देवी, साक्षी और रुचिका देवी, चक 15 PS से सर्वजीत सिंह जौसन, सर्वजीत कौर जौसन, आदर्श पाल, रॉबिन, निमृत और सिदक जौसन, मलोट से जगतार गिल, गैबी गिल और अमनदीप गिल, चौटाला रोड डब्बाली से अंग्रेज सग्गू, सुखविंदर कौर, रॉबिन और डिंपल, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, गगन सोनी, जैस्मिन और रेखा, रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, आरायन राजस्थान से रणजीत सोलंकी, परमजीत कौर, विष्णुदेव सोलंकी, राजवीर, रमन राठौड़, जस्सू पमार, जगवीर और इनका पूरा परिवार, छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो, अलीका डब्बाली से बसंत सिंह चन्न, राजकुमार सुनीता और कुलदीप गांधी।

आइए श्रोताओं अब सुने किशोर कुमार और आरती मुखर्जी को। फिल्म का नाम है तपस्या और इस गीत को सुनना चाहा है संगरिया से श्याम मिड्ढा, सुमन मिड्ढा, दौलतपुरा श्री गंगानगर से शोलाल बेनीवाल, शांति बेनीवाल, मंजू मोहित हेमंत और अंजू बेनीवाल, कवाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव। इसी गीत को सुनना चाहा है व्यास कॉलोनी बीकानेर से अशोक कुमार शाही, संतोष शाही, राजश्री और गौरव शाही, पंचकुला हरियाणा से गुरमेल धीमान, पूजा, यश, तरनजोत, दिव्या, मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा, अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, विवान, लखविंदर संधू, महावीर संधू, गुरचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी, चोहलदा बागपत से संजय ढींगिया, नमन मुस्कान और कुणाल, दिल्ली शहर मोरीगेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार, यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता और मुस्कान, गांव कैरों जिला तरन तारण पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और गुरशब्द, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथलेश, तारणी, सूरज, सुजला, ज्योति और रेयांश ठाकुर। इसी गीत को सुनना चाहा है चक 14 PSB से कुलदीप सिंह, राजविंद्र कौर, संदीप सिंह, जसकरण सिंह, हरदीप, मनराज विर्क और इनका पूरा परिवार।

श्रोताओ, इस समय आप सुन रहे हैं फरमाइशी प्रोग्राम गीत बहार आकाशवाणी के काटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुने। यशुदास के स्वर में फिल्म का नाम है चितचोर और इस गीत को सुनना चाहा है केसरी सिंहपुर से राजकुमार ठठई, कमल ठठई, अशोक मित्तल, ताराचंद दायमा, मुंशीराम महेंद्रा, हीरालाल गजरा, कीकरवाली से बलवंत राम हंसनाथ, आठस ढानी से बाबूलाल कृष्णचारण, सुभाष झाझड़िया, सात एस कीकरवाली से धर्मपाल चोपड़ा, विद्या देवी चोपड़ा गांव, 17 एफ ढानी से पृथ्वीराम, 33 बीवी से इसी गीत को सुनना चाहा है हरीश कुमार मिगलानी गांव, 2 वी से रघुवीर सिंह, अजयपाल सिंह, शक्ति सिंह, गुरदीप सिंह शेरगिल, चांद सिंह सरा और 32 बीवी से सन्नी शीशपाल, रोशनी देवी, 18 एच

लॉटरी से। गुरबचन सिंह भट्टी ने इसी गीत को सुनना चाहा है और ये फरमाइश हम तक पहुंची है। मखू फिरोजपुर से बिल्ला बजाज, हैप्पी कपूर, मुनीश बजाज। गांव मसीता डब्बाली से दर्शन लौट, सरगुन, इंद्रजीत, कमलजीत, मीनाक्षी, सागर, हनी लौट, निहारिका और सारिका। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नाइक और शोभा नाइक। चाहलकला पंजाब से अमरजीत बंगा, परमिंदर बंगा, राजा बंगा, कुलविंदर कौर और अम्बा चाहल। सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा और आदिबा थापा। बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डॉम, सरफुद्दीन डॉम, कुमारी वली डॉम और डब्लू डॉम। मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अक्रम आसमा और अल्लाह आसमा। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहनकर, रही सरिता गवहनकर, सिद्धांत, प्रिंस, एकांश। विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश गवहनकर, वैशाली, श्वेता और कुमारी ध्वनि गवहनकर परी। सादुल शहर से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान। इसी गीत को सुनने के लिए हम तक ये खत पहुंचा है। गांव राजपुरा से हरदीप सिंह, जगवीर सिंह, जवाला सिंह, धर्मवीर झौरड़ और जगसीर सिंह का। आइए सुने आप सबकी पसंद का ये गीत।

0: आइए श्रोताओं, अब सुने शहनाई फिल्म का गीत। आवाज दी है मोहम्मद रफ़ी ने और इस गीत को सुनना चाहा है मंडी गोलूवाला से ब्रिजलाल चौहान और नीरज कुमार चौहान, श्री गंगानगर से बजरंगलाल शर्मा, जगमोहन सिंह अरनेजा, दिनेश कुमार शर्मा, नरेश कुमार शर्मा, भुच्चो कैंचियां बठिंडा पंजाब से प्रेम जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दीपेंद्र वीरेंद्र सम्मू, दमन अभिजोत और दमन वीर, मलोट पंजाब से राजकुमार इंदौरा, बिमला गैरी इंदौरा, विकास प्रियंका रमन, रितु भविष्य खन्ना, मिशेल खन्ना, किंशुक खन्ना और बेबी दीपांशी इंदौरा, लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ से हर्षिता रामेश्वर कान्हा, सफलता कपिल मीनाक्षी, सत्यनारायण मनोहर बाई और प्रभुलाल बागरी। इसी गीत को सुनने के लिए हम तक ये खत पहुंचा है इंदिरा विहार रायगढ़ से, अकरम नूरजहां, डब्लू नूरजहां, सईद वसीम नूरजहां, वलीउल्लाह नूरजहां, बुलंदशहर से बदरुवली अंसारी, फर्जुवली फर्जीवली अंसारी, लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर और परमजीत आदिबा कौर, सेक्टर 18 जगाधरी हरियाणा से विनय मोहर, मीनाक्षी पलोमा और ईशानी, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, महराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से, मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोदपुरी वीपी रंजू, अशोकपुरी सुशील, अनीता बीकेपुरी, रमा कैलाशपुरी, किशन और आरएस पुरी, सूरीवाला टिब्बी से सतनाम सवना, जसविंदर जस्सी, सुमन अंशदीप, तमन्ना हरमन, बेबी जया और परमवीर, सहारनपुर से अनवर साबरी, सन्नो साबरी, हिरम और अमन साबरी।
1: न झटको जुल्फ से

आइए श्रोताओ, कार्यक्रम के आखिर में सुने जाने अनजानी फिल्म का गीत। और इस गीत को सुनना चाहा है सेक्टर 67 मोहाली से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, कालका से शुभ चंद्र बजाज, करनाल से जग्गी दुआ, ग्राम पजोनिया जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंदसोलिया, आदर्श सार्थक भड़मोजी, आगर मध्य प्रदेश से रघुनाथ मालवीय, भंवरबाई, सुषमा, पुष्पा, ममता, मंजू, बबीता, राधा, सरिता, श्याम बाबू, भावना, दुर्गा, मधुबाला, विनोद और ओम प्रकाश ने।

इसी गीत के साथ फरमाइशी प्रोग्राम गीत बाहर समाप्त करने की अपने दोस्त दुर्गाराम नायक को आज्ञा दें। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बाहर। हम आकाशवाणी के काटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। अब सुनिए कार्यक्रम विवरण और उनका प्रसारण समय। अब से कुछ समय बाद 12:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सुगम संगीत का समय रहेगा 12:30 पर, 12:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेत खलिहान में। जानकारी लागत घटाएं, उत्पादन बढ़ाएं, जैव उर्वरकों का प्रयोग करें। और दिन में 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम जयपुर रोजमर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 1:05 पर कार्यक्रम होगा महिला जगत, इसमें चर्चा के विषय रहेंगे व्यक्तित्व निखार के मूल मंत्र, सैर करें उत्तराखंड की, गर्मी में पौधों का रखें खास ख्याल और अंगूर के जायके। इसके साथ साथ आप फिल्मी गीत भी सुनेंगे, कार्यक्रम पेश करेंगी मधुलता पुरोहित। दिन में 2 बजे आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार और 2:15 पर हिंदी में, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 2:30 पर कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत। उर्दू सर्विस के कार्यक्रम आप सुन पाएंगे दिन में 3 बजे से 5 बजे तक, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। संध्या 5 बजे आप सुनेंगे युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी, इसमें चर्चा के विषय रहेंगे राजस्थान के प्रसिद्ध रीति रिवाज, बढ़ती महंगाई, बढ़ता संकट, ग्लोबल वार्मिंग, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव और आज के इतिहास पर। संध्या 6 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण, 6:05 पर सैराइकी और 6:30 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिले की चिट्ठी 6:40 पर प्रादेशिक समाचार राजस्थानी भाषा में होंगे 6:45 पर, जिन्हें हम जयपुर रोजमर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। संध्या 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम चौपाल, इसमें जानकारी के विषय रहेंगे सामाजिक सद्भाव में कमी के कारण गर्मियों के दिनों में पशुओं व मुर्गियों की देखभाल और मायड़ भाषा का मान सम्मान कैसे बढ़ाएं, इस विषय पर भी चर्चा रहेगी। और उपलब्ध होने पर मौसम और बाजार भाव भी आपको बताया जाएगा। संध्या 7:45 पर कार्यक्रम रहेगा फिल्म संगीत और रात्रि 8 बजे एक ही फिल्म से जानकारी और गीत पेश किया जाएगा। रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे स्पोर्ट्स स्कैन समाचार। संध्या 8:45 पर रात्रि 9 बजे अंग्रेजी में समाचार होंगे, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम रहेगा सुगम संगीत पब्लिक स्पीक, यह कार्यक्रम होगा आज रात 9:30 पर, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे खेल जगत, यह हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले की जाएगा। 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार और रात के 11:10 पर सभा समाप्ति की उद्घोषणा की जाएगी। ये थे आज के दिन प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। 12:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी भोज भाइयों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आइए कार्यक्रम का पहला गीत सुने महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में। रचना है गुलशन बावरा की और संगीत कल्याण जी आनंद जी का है। फिल्म का नाम है उपकार।

आइए अब सुनें टशन फिल्म का गीत उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर की आवाजों में।

आइए सुनिए बजरंगी भाईजान फिल्म का गीत जुबिन नुत्याल की स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के काटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 12:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज कलाकार हैं मेहदी हसन।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत में मेहदी हसन को। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेत खलिहान। आज जानकारी का विषय है कुष्मांड कुल की सब्जियों की उन्नत खेती।
1: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों, कुष्मांड कुल की सब्जियां में नर और मादा पुष्पिका है, वह एक ही बेल पर न्यारा न्यारा है। और कुष्मांड कुल की जिकी प्रमुख सब्जियां हैं, बाकी बात करें तो इंगमा, तरबूज, खरबूजो, कद्दू, तोरी, लौकी, पेठा, चिरचिंडा, परवल, ककड़ी, टिंडा, खीरा, करेला आदि की एक प्रमुख सब्जियां हैं। आगे उन्नत किस्म की जो आप बात करा तो तरबूज की उन्नत किस्म है शुगर बेबी, असाही योमेटो, दुर्गा मीठा, दुर्गा केसर, अरका ज्योति आएंगी शक्कर किस्म है, सागी मधु जो कि शक्कर किस्म है। खरबूजे की उन्नत किस्म की बात करें तो दुर्गापुरा मधु, पंजाब सुनहरी, पंजाब हाइब्रिड, अरका जीत, हरा मधु, पूसा मधुरा।

और RS 43 प्रमुख है। कद्दू की बात करा तो इनमें पूसा विश्वास, पूसा अलंकार और अर्का चंदन प्रमुख उन्नत किस्म है। चिकनी तोरी की बात करा तो इंगी उन्नत किस्म गलगल तोरी इंगी उन्नत किस्म है और धारीदार तोरी जी की है बिंगी उन्नत किस्म पूसा नसदार है। लौकी की उन्नत किस्म की जो बात करा तो पूसा समर प्रोलिफिक लॉन्ग सगई पूसा समर प्रोलिफिक राउंड अर्का बिहार पूसा मंजरी और मेघदूत इंगी उन्नत किस्म है। ककड़ी की बात करा तो लखनऊ अगेती और अर्का शीतल इंगी उन्नत किस्म है। टिंडा की बात करा तो बीकानेरी ग्रीन टिंडा लुधियाना हिसार सिलेक्शन एक और अर्का टिंडा उन्नत किस्म है। खीरे की बात करा तो इंगी उन्नत किस्म बाल खीरा पाइनसेट पूसा सियोग उन्नत किस्म है और करेले की उन्नत किस्म की बात करा तो कोयम्बटूर लौंग पूसा दो मौसमी प्रिया अर्का हरित पूसा विशेष महिको करेला और ग्रीन लौंग करेले की उन्नत किस्म है। बात करें किसान भाइयों जलवायु और माटी की तो कुसमांड कुल की सब्जियां की बेलां की अच्छी वृद्धि खातर किया गया 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सही रहे और इन पर पाड़े को असर बहुत ज्यादा हुआ है। इन खातर किया गया उपजाऊ दोमट माटी जठे पानी को निकास अच्छो है बठे माटी बात सही रहे और इनकी खेती किसान भाई गर्मी और बरसात के मौसम में भी कर सके। बुआई के टाइम की जी आप बात करा तो तरबूज खरबूज और ककड़ी की बुआई फरवरी मार्च में और तोरी खीरा लौकी कद्दू करेला और टिंडे की बुआई ग्रीष्मकालीन फसल खातर फरवरी मार्च और वर्षाकालीन फसल की बुआई जून जुलाई के महीने में अपन करनी चाहिए। बुआई को टाइम इन बात पर निर्भर करे है कि आ सब्जियां की बुआई नदी पेटा में करी जान लग रही है या समतल माटी पर करी जान लग रही है। अब किसान भाई बात करा अगेती फसल लेन खातर अपन क्या उपाय करना चाहिए तो किसान भाइयों कुष्मांड कुल की सब्जियां गए बीजांग अंकुरण 20 डिग्री सेंटीग्रेड कम तापमान पर ठीक प्रकारों को नहीं हुए। इन खातर के बीजा ने सीधो खेत में ना बोगे प्लास्टिक की थैलियां में अपन बोनो चाहिए। थैलियां में एक तिहाई भाग चिकनी माटी एक तिहाई भाग बालू रेत और एक तिहाई भाग मींगणिया गोबर की खाद मिला के एक थैली में दो बीजा ने बोयो जा सके। थैलियां में रखड़ा बीजा ने जारों के सिंचाई अपन करनी चाहिए। रात के टाइम थैलियां ने पॉलीथीन ढक देनी चाहिए और सही तापमान होने पर तैयार खेत में स्थानांतरण अपन कर देना चाहिए। बीजा की बुआई पहला क्या है कि 24 घंटा पानी में भेगे टाटू बांध के 24 घंटे अपन रखना चाहिए और सही तापमान पर रखन बीजा के अंकुरण प्रक्रिया जो की है वह गतिशील हो जाए और इनके बाद बीजा ने बोयो जा सके। यूँ किए गए अंकुरण को जो अपना प्रतिशत है वो किसान भाइयों बढ़ जाए। बात करें किसान भाइयों खाद और उर्वरक की तो एक माँ किया है गोबर की खाद 200 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अपन रेडनी चाहिए। नत्रजन 80 से 100 किलो प्रति हेक्टेयर फास्फोरस 40 किलो प्रति हेक्टेयर और पोटास 40 किलो प्रति हेक्टेयर अपन देना चाहिए। देसी खाद फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा और नत्रजन की एक तिहाई मात्रा बुआई के टाइम माटी में रला देनी चाहिए और बाकी नत्रजन की मात्रा ने दो बराबर भागा में बांट के ट्रॉप ड्रेसिंग के रूप में पहली बार बुआई गए 25 से 30 दिन बाद और दूसरी बार फूल आने के टाइम अपन देनी चाहिए। बात करें किसान भाइयों बीज की मात्रा बुआई गो टाइम और दूरी की तो लौकी में बीज की मात्रा अपन 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखनी है। बुआई गो टाइमिंग फरवरी मार्च और जून जुलाई है और दूरी जी की है कतार और बुंटे की बा 2.5 से 3 मीटर गुणा 0.25 मीटर अपन रखनी चाहिए। कद्दू में 4 से 5 किलोग्राम बीज को है वो प्रति हेक्टेयर रखना है। बुआई को टाइम जून जुलाई और फरवरी मार्च है और इनमा 3 से 4 मीटर गुणा 1.25 मीटर अपन दूरी रखनी है। करेले की बात करना तो इनमें 4 से 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर अपन प्रयोग करना है। फरवरी मार्च और जून जुलाई में आएंगी बुआई को टाइम है और 1.25 मीटर ले गए 0.25 मीटर अपन दूरी बनाए रखनी है। तरबूज की बात करा तो 4 से 4.5 किलो प्रति हेक्टेयर बीज अपन प्रयोग करना है। फरवरी मार्च जून जुलाई में पाएंगी बुआई करनी है और 2.5 से 1 मीटर और जून जुलाई वाली फसल में 2.5 मीटर लेके 1 मीटर अपन दूरी रखनी है। खरबूजे की बात करें तो 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की मात्रा फरवरी मार्च पाएंगी बुआई और 2 से 0.60 मीटर अपन दूरी रखनी है। तोरी की बात करें तो 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की मात्रा रखनी है। फरवरी मार्च और जून जुलाई में बुआई करनी है। 1.5 मीटर लेके 60 मीटर तक दूरी रखनी है। साकि जून जुलाई में 2.5 से 0.75 मीटर की है दूरी अपन रखनी है। खीरे की बात करें तो 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मात्रा रखनी है। फरवरी मार्च जून जुलाई में आपाएंगी बुआई करनी है। 1.5 से 0.50 मीटर अपन दूरी रखनी है। जून जुलाई में किए गए 2.5 से 0.50 मीटर दूरी अपन रखनी है। ककड़ी की बात करें तो 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की मात्रा अपन रखनी है। फरवरी मार्च में बुआई करनी है। और किसान भाइयों कुष्मांड कुल की सब्जियां की बुआई नालियां में जे आप करा तो एक जिया पर दो बीज अपन बोना चाहिए और अंकुर

0: गए कई दिन बाद एक दो पौधा ने रख के बाकी बचेड़ा पौधा ने हटा देना चाहिए। बात करें किसान भाइयों, कुसमान टकूल की सब्जियां में लागन वाला कीट और बंग नियंत्रण की, तो बात करें लाल भ्रंग कीट की। वो कीट लाल रंग हुआ है और वो अंकुरित और नई पत्तियां ने खा गए बीमा छल्ला बना दिया, रहेंगे प्रकोप कई बार किया पूरी फसल ही नष्ट हो जाए। नियंत्रण करने खातर कार्बोरिल 5% या मिथाइल पैराथियन 2% चूर्ण 1 किलो प्रति हेक्टेयर की दरों बुरकावापन करना चाहिए, या फिर कार्बोरिल 50% घुलनशील गो 2 किलो प्रति हेक्टेयर की दरों अपना बुरकाव करना चाहिए, और 15 दिन अंतरालों जो जरूरी हुए तो वो बुरकाव जो है वो अपना दोहराता रहना चाहिए। बात करें फल मक्खी कीट की, आ करेला तोरी टिंडा ककड़ी खरबूजा आदि ने ज्यादा नुकसान पहुंचावे और इन आक्रमण किए कि फल काणा हो जाए। नियंत्रण करने खातर काला फला ने तोड़ के माटी में गैर उगाड़ देना चाहिए। मेलाथियन 50 cc या डाइमिथ्यूएट 30 cc 1 ml ने प्रति लीटर पानी के दरों चौपा ने छिड़काव करना चाहिए, और जरूरी होने पर किए गए 10-15 दिन के बाद किए गए इन छिड़काव ने अपने दोहराते रहना चाहिए। बात करें लाल मकड़ी यानी बरूथी की, तो बरूथी पत्तियां की निचली सतह पर रह गए रस चूसे और इनमें पत्तियां पर सुरूंद सफ़ेद धब्बा बन जाए जिसका बाद में भूरा रंग हो जाए। इनमें पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जगी है बा किसान भाइयों बुरी तरह प्रभावित रहे। नियंत्रण करने खातर आप करना है कि इथियान 50 cc 0.6 ml या फिर फास्फोमिडान 85 SL 0.4 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना के जून के दूसरे सप्ताह में अपने छिड़क देना चाहिए। अब बात करें किसान भाइयों कुसमान टकूल की सब्जियां में लागन वाला प्रमुख रोग और बंग नियंत्रण की, तो सारों पहला बात करें तुलसीता रोग की। इन रोगों ग्रसित बेला जगी है बांगी पत्तियां ऊपरी सतह पर पीला धब्बा के अपने दिखाई देने लग जाए और नीचे की सतह पर कवक की वृद्धि दिखाई देवे और उग्र अवस्था में रोग ग्रसित पत्तियां किए के जड़ जाए। इनका नियंत्रण खातर मैन को जेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में गोल बना के अपन छिड़काव करना चाहिए और जरूरी होने पर छिड़काव ने किया 15 दिन बाद अपन दोहराता रहना चाहिए। बात करें किसान भाइयों झुलसा रोग की, तो इन रोग के प्रकोप पत्तियां पर भूरा रंग का छल्लेदार झाड़ियां जगी है वह बन जावे और इनका नियंत्रण करने खातर मैन को जेब या जाइनेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के अपन छिड़क देना चाहिए और आवश्यकता अनुसार छिड़काव ने 15 दिन के अंतराल पर किए गए अपन दोहराते रहना चाहिए। अब बात करें किसान भाइयों श्याम वर्ण रोग की, इन रोग के प्रकोप फल और पत्तियां पर गहरा भूरा ले गए काला रंग का धब्बा बन जाए और रोग ग्रसित भाग मुरझा के सूखन लग जाए और फल सख्त हो जाए। इनका नियंत्रण खातर अपन है मैन को जेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी को घोल बना के जो है अपने छिड़काव करना चाहिए। छाछिया रोग की बात करें तो रोग ग्रसित बेला पर सफ़ेद चूर्णी धब्बा अपने दिखने लग जाए, रोग ग्रसित पत्तियां और फलों की बढ़वार रुक जाए और बाद में वह सूख जाए। इनका नियंत्रण खातर अपन है कैरेथियन LC 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना के 15 दिन अंतराल में अपना छिड़काव करना चाहिए। और बात करें विषाणु रोग की, तो किसान भाइयों कुसमान टकूल की सब्जी में 2 प्रकार का विषाणु रोग पाया जावे। पहला तो है कुकुम्बर मोजेक वायरस, दूसरा है वाटरमेलन वायरस। विषाणु रोग किसान भाइयों मोइलाओं संचालित हुए और रोग को आक्रमण होने पर पत्तियां की लंबाई चौड़ाई कम हो जाए और रोग ग्रसित पौधा या बेलांग गज का फल है वह बद्धे रंगा और बेडोला कारगा हो जाए। इनका नियंत्रण खातर किया गया रोग का लक्षण दिखाई देता ही पौधे ने क्या उखाड़ के अपन बाढ़ देना चाहिए। तो किसान भाइयों आज को टाइम इतो ही, देव आ गया, राम राम सा राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेत खलिहान में जानकारी, कुसमान टकूल की सब्जियों की उन्नत खेती। हम आकाशवाणी के काटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन का 1 बजने वाला है। अब हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे।
2: कर आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की अपनी 2 दिन की यात्रा के बाद नॉर्वे के लिए रवाना हो गए। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति देंगे। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की कवायद में ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रही। भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना की व्यापक रूपरेखा का उद्देश्य अगले 5 सालों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इस यात्रा में प्रधानमंत्री श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया गया। ये स्वीडन का किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है।

0: कांग्रेस नेता वी डी सतीशन ने आज केरलम के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में हुए समारोह में उनके साथ मंत्रिपरिषद ने भी शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने मुख्यमंत्री और कैबिनेट को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पार्टी ने 14 मई को श्री सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। राज्य विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में आज विधानसभा के नए लोगों का विमोचन किया गया। विधानसभा परिसर में आयोजित समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने लोगों की लॉन्चिंग की, साथ ही विधानसभा के चारों द्वारों के नामकरण की पट्टिकाओं का अनावरण किया गया। इन प्रवेश द्वारों को राजस्थानी संस्कृति के अनुसार नए नाम दिए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इस नवाचार की पहल की। गौरतलब है कि डिजिटल पेपरलेस व्यवस्था, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक दीर्घाओं, डिजिटल संग्रहालय सहित अन्य नवाचारों से राजस्थान विधानसभा को देश में अनूठी पहचान मिली है। हाड़ौती अंचल के बुनकरों की हस्तकला कोटा डोरिया की वैश्विक पहचान मजबूत करने के प्रयास तेज किए जा रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और जिला प्रशासन के साझा प्रयासों से कैथून कस्बे के बुनकरों के हुनर को संवारने की कवायद शुरू की गई है। हाल ही में केंद्रीय सचिव संजय जाजू के दौरे ने इस मुहिम को नई गति दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस विरासत को सहेजने और इसके आधुनिकीकरण के लिए स्थानीय कॉमन फैसिलिटी सेंटर को सशक्त किया जा रहा है।
1: इस मुहिम का सबसे खूबसूरत पहलू है एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक। पूर्वोत्तर का प्रसिद्ध एरी सिल्क अब कैथून के पीटलुम पर कोटा डोरिया के धागों के साथ बुना जाएगा। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शुद्धता की गारंटी के लिए यहाँ पंच गौरव अभियान के तहत जरी टेस्टिंग मशीन भी लगाई जा रही है। इससे बिचौलियों का खेल खत्म होगा और स्थानीय बुनकरों को उनके हुनर का सही वैश्विक मूल्य मिलेगा। यकीनन पूर्वोत्तर के सिल्क और हाड़ौती के हुनर का यह मेल कोटा डोरिया को सात समंदर पार लेकर जाएगा। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा।
0: प्रदेश में दिन के साथ अब रातें भी काफी तपने लगी है। कल 45.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बाड़मेर प्रदेश में सबसे गर्म शहर रहा। इसके अलावा बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी, चित्तौड़गढ़, कोटा और श्रीगंगानगर सहित कुछ अन्य शहरों में तापमान 44 डिग्री से ऊपर मापा गया। उधर चित्तौड़गढ़ और हनुमानगढ़ में रात का पारा 33.2 डिग्री पहुंचने से गर्म रातों का दौर शुरू हो गया। कोटा में भी रात का पारा 32 डिग्री सेल्सियस उछल गया। राजधानी जयपुर में भी लगातार तीसरे दिन तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। यहां दिन का पारा 42.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के 19 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला आज शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच हैदराबाद के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। रैंकिंग में सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे और चेन्नई सुपर किंग्स पांचवें स्थान पर है। वहीं कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही दिल्ली कैपिटल्स ने प्ले ऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदें बरकरार रखी हैं। दिल्ली में खेले गए मैच में कल 194 रन के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 20वें ओवर में 5 विकेट पर 197 रन बनाकर मैच जीत लिया। इस जीत के साथ ही दिल्ली कैपिटल्स तालिका में 8वें से 7वें स्थान पर पहुंच गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 1:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत। पेशकश है मधुलता पुरोहित की।

कार्यक्रम महिला जगत सुनने वाली सभी बहनों और सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। अच्छी अच्छी बातों और कुछ सुरीले गीतों के साथ हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो सखी मधुलता पुरोहित। तो कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम की शुरुआत उसी शायराना अंदाज के साथ कि अब इख्तियार में मौजे ना ये रवानी है, मैं बह रहा हूं कि मेरा वजूद पानी है। वो एक दिन जो तुझे सोचने में गुजरा था, तमाम उम्र उसी दिन की तर्जुमानी है।

इस खूबसूरत से गीत के बाद अब एक खूबसूरत सी बात कि हमें अक्सर दूसरों से ये शिकायत रहती है हम महिलाओं को कि हमें वो प्यार नहीं मिलता, हमें वो केयर नहीं मिलती, हमारी परवाह कोई नहीं करता, हमारा ख्याल कोई उतना नहीं रखता जितना हम दूसरों का रखती हैं। लेकिन हम खुद अपने आप को सबसे बाद में रखती हैं, खुद का ख्याल ही नहीं रखती, तो फिर दूसरों से इसकी उम्मीद हम कैसे कर सकती हैं? हमें लगता है कि जैसे हम खुद के लिए कुछ करेंगी तो हम स्वार्थी हो जाएंगी। अपना ख्याल भी कोई रखता है? लेकिन बहनों, खुद से प्यार करना स्वार्थी होना बिल्कुल नहीं है, बल्कि जब हम खुद से प्यार करती हैं तो हम अगर खुद को पसंद करती हैं तो दूसरे लोग भी ऐसा ही करेंगे, उनकी सोच भी वैसी ही बनेगी, बाकी सब लोग भी हमारी केयर करेंगे, वो भी हमारा ध्यान रखेंगे। लेकिन सबसे पहले करना क्या है, हमें अपने आप का ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, इसके साथ ही हमें अपनी रुचियों के लिए भी समय निकालना है। अगर आप ऐसा करती हैं तो आप खुश रहती हैं। अगर आप खुद से प्यार करेंगी तभी तो आप अपने अपनों का ख्याल रख पाएंगी, उन्हें भी प्यार कर पाएंगी, है ना? अगला गीत सुनवाते हैं आपको, लेकिन इस बात के साथ कि मेरे अजीज जरा एतबार कर लेता, मैं एक जस्त में दरिया को पार कर लेता, और मैं जिंदगी के खराबे में खो गया वरना, मैं अपने आप से मिलता तो प्यार कर लेता।

सखियो, हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारी बात ध्यान से सुनें और हमारे साथ अच्छा महसूस करें। लेकिन ऐसा तब होता है जब हमारा व्यक्तित्व अच्छा हो, हमारा व्यक्तित्व कुछ खास हो। जी हाँ, हमारा व्यक्तित्व जो है वो एक ऐसा गुण होता है बहनों, जो

बिना कहे भी बहुत कुछ कह जाता है। होते हैं ना कई लोग कि उनकी उपस्थिति मात्र ही काफी होती है अपना प्रभाव छोड़ने के लिए, आसपास के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। वो जहां भी होते हैं अपना एक अलग प्रभाव छोड़ते हैं, यानी उनका ओरा या उनकी ऊर्जा कुछ खास होती है, यानी उनकी पर्सनैलिटी असरदार होती है। लेकिन पर्सनैलिटी को अच्छा क्या बनाता है? वो हमारी कद काठी यानी शारीरिक बनावट भी हो सकती है, हमारी वेशभूषा भी हो सकती है। जब कोई देखने में अच्छा लगे, सुंदर लगे, अच्छा ड्रेसिंग सेंस भी रखता हो, तो अक्सर हम कह देते हैं कि फलाने की पर्सनैलिटी अच्छी है। और बहनों, कुछ हद तक ये बात ठीक भी है, लेकिन जहां तक संपूर्ण व्यक्तित्व की बात है, वो सिर्फ बाहरी सजावट नहीं बल्कि हमारा व्यवहार, हमारा बोलने का ढंग और भी बहुत सी बातें हैं जो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। हम जानेंगे, लेकिन पहले सुनेंगे एक और खूबसूरत गीत।

हाँ तो बहनों, हम गीत से पहले बात कर रहे थे हमारी पर्सनैलिटी की और उसे निखारने की, क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो होता है उसका बहुत

महत्व होता है, और इसके लिए आजकल क्लासें भी लगती हैं जहां तरीके बताए जाते हैं कि कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे हमें दूसरे लोगों से बात करनी है, कैसे रिएक्ट करना है, और इन सब की प्रैक्टिस भी करवाई जाती है बाकायदा कि कैसे हमारा व्यक्तित्व प्रभावशाली लग सके। और इसके लिए बहनों मोटी फीस भी लगती है, लेकिन हमें किसी क्लास या प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं है। अगर हम चाहें तो दूसरों को देख के जो अच्छी बातें हैं उन्हें अपने व्यवहार में उतार सकती हैं और उनसे प्रेरणा ले सकती हैं, क्योंकि हमारी सफलता में, समाज में और रिश्तों को बेहतर बनाने में हर जगह हमारा अच्छा व्यक्तित्व जो है वो काम आता है। मैंने हम सब में कुछ खूबियां होती हैं तो कुछ कमज़ोरियां भी होती हैं, तो कमज़ोरियों को दूर करना और खूबियों को निखारना ही व्यक्तित्व का विकास होता है। अब जैसे

रिश्तों को बेहतर बनाने में हर जगह हमारा अच्छा व्यक्तित्व जो है वो काम आता है। बहनों, हम सब में कुछ खूबियां होती हैं तो कुछ कमजोरियां भी होती हैं, तो कमजोरियों को दूर करना और खूबियों को निखारना ही व्यक्तित्व का विकास होता है। अब जैसे बोलने के तरीके पर ही हम जाएं, तो मीठी और सम्मानजनक भाषा का प्रयोग अगर हम करें तो वो सबको अच्छा लगता है। और सिर्फ बोलना ही नहीं, हमें सुनने का भी सलीका होना चाहिए बहनों। दूसरों की बात को भी हमें ध्यान से सुनना चाहिए और उसे महत्व देना चाहिए। अगले को लगना चाहिए कि हाँ, मेरी बात भी सुनी जा रही है। इससे हम उसके मन में अपने प्रति सम्मान पैदा कर सकते हैं। और बहनों, मुस्कुराता हुआ चेहरा दूसरों को अपनापन देता है, इसलिए चेहरे पर हर समय गंभीरता की जगह हल्की मुस्कान होनी चाहिए। अहंकार इंसान को छोटा बनाता है और विनम्रता उसे बड़ा बना देती है, इसलिए चाहे वो कोई भी हो, छोटा या बड़ा, गरीब या अमीर, सबसे अच्छा व्यवहार करें। और बहनों, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहने से हमारे अंदर आत्मविश्वास बना रहता है, इसलिए नई नई जानकारियां हमेशा लेती रहें, अच्छे लोगों की बातें सुनें, अच्छी किताबें पढ़ने की आदत डालें। और बहनों, व्यक्तित्व जो है वो एक दिन में नहीं बदलता है, छोटी छोटी अच्छी आदतों से धीरे धीरे निखरता है। अब जैसे पौधों को रोज पानी चाहिए होता है, वैसे ही व्यक्तित्व को भी रोज अच्छे विचार और अच्छे व्यवहार की जरूरत होती है। इसी बात के साथ आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना।

में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर, कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा।

सखियो, पहाड़ों की ठंडी हवा, झरनों की मधुर आवाज, मंदिरों की घंटियां और प्रकृति की अद्भुत सुंदरता, सचमुच दिल को सुकून देने वाली जगह, जिसे प्यार से देवभूमि भी कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। जी हाँ सखियों, उत्तराखंड एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां हर किसी के लिए कुछ ना कुछ जरूर है। यहां घूमना और सैर करना हम सबका एक सपना होता है, क्योंकि यहां की खूबसूरती किसी स्वर्ग से कम नहीं। इसीलिए ये जगह पर्यटकों की पहली पसंद हमेशा बनी रहती है। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ वैदिक संस्कृति के कुछ अति महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान हैं। उत्तराखंड के लगभग हर कोने में किसी न किसी देवी और देवता का मंदिर मिल जाता है। ये भूमि प्राचीन समय से देवी देवताओं, ऋषि मुनियों, तपस्या और तीर्थ स्थलों से जुड़ी रही है। बहनों, भारत के सबसे प्रमुख धार्मिक नगरों में से एक हरिद्वार में हर वर्ष लाखों पर्यटक आते हैं, वो भी उत्तराखंड में ही स्थित है। और बहनों, हरिद्वार के पास ही ऋषिकेश भी है, जिसे विश्व की योग राजधानी के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा केदारनाथ मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे प्रसिद्ध चार धाम भी यही हैं। और गंगा और यमुना

जैसी पवित्र नदियों का उद्गम स्थल भी यहीं से है। हम सैर कर रहे हैं उत्तराखंड की, लेकिन पहले सुनवाते हैं आपको एक और गीत और फिर वापस चलेंगे उत्तराखंड।

सखियों, बरखा बहार के छाने में तो अभी थोड़ा समय लगेगा। अपने यहाँ तो अभी जो सूर्य देवता हैं वो अपना प्रचंड रूप दिखा रहे हैं, अपने प्रचंड रूप के दर्शन हमें करवा रहे हैं, और इसीलिए हम आपको गर्मी से राहत देने के लिए घुमा रहे हैं उत्तराखंड। जी हाँ बहनों, उत्तराखंड में मंदिरों के अलावा कई खूबसूरत हिल स्टेशन भी हैं जहां हम छुट्टियां मनाने जा सकते हैं। झीलों का शहर नैनीताल अपनी सुंदर झीलों और ठंडी वादियों के लिए मशहूर है। और मसूरी, मसूरी को तो पहाड़ों की रानी कहा जाता है। ये हिल स्टेशन हिमालय के देवदार और ओक के पेड़ों के बीच बसा है, और यहाँ का मौसम बड़ा ही सुहाना होता है और नज़ारे बेहद खूबसूरत। नैनीताल, मसूरी, देहरादून, कोसानी और रानीखेत जैसे पर्यटन स्थल भी यहाँ स्थित हैं। उत्तराखंड वन्य जीव पर्यटन प्रेमियों के बीच जिम कार्बेट के अनूठे वन्य जीवों के लिए भी जाना जाता है। बहनों, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के प्रमुख बाघ अभयारण्यों में से एक है, जहां रॉयल बंगाल टाइगर्स की संख्या जो है वो सबसे अधिक है। इसके अलावा ये अनेक दुर्लभ और अनूठे पशु पक्षी प्रजातियों का घर भी है। और बहनों, यहाँ की प्रसिद्ध फूलों की घाटी अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता से पर्यटकों को जैसे मंत्रमुग्ध कर देती है। यहाँ की ताज़ा हवा में घुली जंगली फूलों की सुगंध मन को मोह लेती है, और यहाँ 300 से भी अधिक विभिन्न प्रकार के फूल पाए जाते हैं। यहाँ के घास के मैदान गुलाबी, नीले, पीले और बैंगनी फूलों से ढके रहते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है ये घाटी। सखियों, उत्तराखंड रोमांच की भी भूमि है। यहाँ कई रोमांचक खेल, रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग और हाइकिंग भी पर्यटकों को रोमांचित करते हैं। और बहनों, अगर हम बात करें यहाँ बोली जाने वाली भाषा की, तो यहाँ मुख्य रूप से कुमाऊनी और गढ़वाली लोग रहते हैं, और कुमाऊनी, गढ़वाली और हिंदी यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं। मार्च से जून तक यहाँ घूमने का सबसे उचित समय है। सर्दियों में भी आप वहाँ जा सकते हैं। अगर मन कभी थोड़ा आराम मांगे, शांति मांगे, तो उत्तराखंड की सैर ज़रूर कीजिए। यहाँ की हवा में सुकून है, लोगों की मुस्कान में अपनापन, और प्रकृति के हर दृश्य में जैसे ईश्वर की उपस्थिति।

0: और सखियों, अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है बहनों कार्यक्रम महिला जगत में, और आज आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो सखी मधुलता पुरोहित। और सखियों, अब बात करते हैं कि गर्मी में बालों की देखभाल कैसे करें, क्योंकि गर्मी के मौसम में तेज धूप, पसीना, धूल और हवा बालों को रूखा, बेजान और कमज़ोर बना सकती है। ऐसे में बालों की थोड़ी एक्स्ट्रा केयर बहुत ज़रूरी हो जाती है। आसान और घरेलू तरीकों से भी हम अपने बालों को स्वस्थ और चमकदार रख सकती हैं। तो सबसे पहले बहनों, हमें क्या करना है कि बालों को साफ रखना है, बालों की सफाई पर हमें बहुत ध्यान देना है, क्योंकि इस मौसम में पसीना आता है, तो पसीने की वजह से धूल और तेल जो है वो हमारी स्कैल्प के ऊपर जमा हो जाता है। तो इसलिए सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में 2 से 3 बार हल्के माइल्ड शैम्पू से बालों को धोना चाहिए। बहुत ज़्यादा केमिकल वाले जो शैम्पू होते हैं उनसे हमेशा हमें बचना चाहिए। और बहनों, शैम्पू के बाद हमें कंडीशनर ज़रूर करना चाहिए, इससे हमारे बाल नरम और मुलायम बने रहते हैं। और इसके अलावा बहनों, हमें तकिए के जो कवर होते हैं उन्हें भी समय समय पर बदलते रहना चाहिए, क्योंकि उसमें भी जो गंदगी है वो जमा हो जाती है, चाहे वो दिखने में नहीं आती लेकिन अंदर ही अंदर थोड़ा वो गंदे हो जाते हैं, जो बालों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। और बहनों, हम गर्मियों में तेल लगाना छोड़ देते हैं, तो तेल लगाना हमें छोड़ना नहीं है। बाल जब भी आप धोएं, शैम्पू करने से 1-2 घंटे पहले हल्के हाथ से किसी भी अच्छे ऑयल से मसाज ज़रूर करनी है। और बहनों, धूप से बालों को बचाना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसके लिए जब भी बाहर निकलें तो स्कार्फ, दुपट्टा या टोपी पहन लें, क्योंकि धूप से बाल रूखे हो जाते हैं। और बहनों, हमेशा खुले बाल छोड़ने की बजाय हमें थोड़ा हल्के से बालों को बांध कर रखना चाहिए। आप हल्की पोनीटेल भी बना सकती हैं, ढीला जूड़ा भी बना कर रख सकती हैं। और जब भी पानी से बालों को धोएं तो एक बात का ध्यान रखें कि पानी साफ होना चाहिए और नॉर्मल टेम्परेचर वाला होना चाहिए। बहुत अधिक गर्म पानी से बाल ना धोएं, खूब पानी पिएं, क्योंकि पानी की कमी का असर भी बालों पर दिखता है। हेयर ड्रायर और स्ट्रेटनर का कम से कम इस्तेमाल करें और प्राकृतिक तरीके से बालों को सूखने दें। और बहनों, गीले बालों को रगड़ना नहीं होता है, उससे बाल डैमेज होते हैं। और बहनों, तनाव से हमेशा दूर रहना है, योग और प्राणायाम करते रहना है। इसके अलावा हम घर पे बने हुए मास्क भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे दही और मेथी का पैक लगा सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हैं, एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। दही, केला, शहद और तेल को मिलाकर भी पैक बनाकर हम बालों को लगा सकते हैं। इसके अलावा बहनों, खाने पीने का भी हमें पूरा ध्यान रखना है, जैसे हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज, दालें और फल हमें अपने भोजन में ज़रूर शामिल करना है, क्योंकि पोषण अंदर से मिलता है हमारे बालों को। और अब सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: क्यों?
1: इसलिए कि भौरा तुम्हारी हसीना उड़ाए,
0: बिखरा के जुल्फे चमन में न जाना।

0: इसलिए कि दुनिया से रस्में वफा मिट न जाए।
1: सखियो आप सुनिए ये गीत और दीजिए अपनी सखी मधुलता पुरोहित को आज्ञा। नमस्कार।

0: adoption of the metro over private vehicles. Delhi Metro Rail Corporation said the decision has been taken, keeping in view the significant role of public transport in ensuring energy efficiency, economic viability and environmental sustainability in the prevailing circumstances. US President Donald Trump has warned Iran the clock is ticking as talks to bring the war to an end have stalled. The remarks come as Washington and Tehran sit locked in a test of wills, waiting to see who blinks first to end the stalemate in the war in the region. In a social media post, President Trump said time is running out and called upon Tehran to move quickly towards an agreement. Meanwhile, Iranian media has reported that the U.S. failed to make any concrete concessions in its response to Tehran's latest proposals to end the conflict. In IPL cricket, hosts Chennai Super Kings will take on Sunrisers Hyderabad at M.H. Chidambaram Stadium. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. In the latest standings, Sunrisers Hyderabad are currently placed third with 14 points from 12 matches, having won 7 matches so far and remain firmly in the playoff race. Chennai Super Kings are fifth with 12 points from as many matches, having registered 6 wins this season. India finished the Asian Weightlifting Championships 2026 in Gandhinagar with 10 medals, including 1 silver and 9 bronze, marking a big improvement from the previous edition in Chiang Shan, where India returned without a medal. Commonwealth Games bronze medalist Lovepreet Singh delivered India's best performance on the final day by finishing fifth in the men's 110 kg+ category. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heat wave to severe heat wave conditions over the plains of northwest India and central India during many days of the week. According to IMD, heat wave conditions are likely to prevail over Uttar Pradesh till Saturday. Rajasthan, Punjab, Haryana, Chandigarh and Delhi will also experience similar conditions. The weather agency predicted gradual rise in maximum temperatures by 3 to 5 degrees Celsius over northwest parts of the country. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi arrives in Oslo to hold bilateral talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre this evening. Prime Minister Modi says his Sweden visit adds new momentum to bilateral relations as both countries agree to double trade in next 5 years. Congress leader V.D. Satheeshan takes oath as Keralam Chief Minister along with 20 cabinet ministers. West Bengal government approves 7th pay commission for state government employees. Union Home Minister Amit Shah flags off 400 emergency response vehicles in Raipur district of Chhattisgarh. And in IPL cricket, hosts Chennai Super Kings to take on Sunrisers Hyderabad this evening. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से आपसी संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ओस्लो में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
2: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच

0: व्यापार का मूल्य 19 अरब डॉलर है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये यात्रा महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा AI गलियारे की शुरूआत से लेकर अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उनके स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का ये कदम भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना द्वारा निर्देशित है।
2: इस यात्रा के दौरान 6 प्रमुख उपलब्धियां सामने आईं। पहली उपलब्धि रही भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को अपनाना, जो व्यापार, नवाचार, जलवायु कार्रवाई, रक्षा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना। इसके तहत ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत की गई और स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी AI कॉरिडोर यानी CTAC का विस्तार किया गया। तीसरी उपलब्धि रही एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने पर सहमति। ये केंद्र AI, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर कार्य करेगा। चौथी बड़ी उपलब्धि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय करना रही। पांचवी उपलब्धि रही भारत स्वीडन SME और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का विकास। छठी महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नई पहचान देना रही। इसके तहत टैगोर स्वीडन लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 की ऐतिहासिक स्वीडन यात्रा की शताब्दी को समर्पित है। इन पहलों के अलावा दोनों देशों ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिट यानी LEADIT के तीसरे चरण की घोषणा करी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
3: वडशेरी दामोदर मेनोन सतीशन എന്ന ഞാൻ നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തയും।
1: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने UDF सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई कैबिनेट में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चिनिथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता PK कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने VD सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में केरलम की नई सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्ड, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी।

0: इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी। राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया है। राज्य की महिलाओं के लिए पहली जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 3,000 रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे। एक ऐतिहासिक फैसले में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। ग्रुप बी पदों के लिए ये सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने दो प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिसमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से वसंत कुंज तक के पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
1: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और भी तेजी से फैलें। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज मेरा भारत मेरा योगदान में मेट्रो मंडे अभियान के तहत मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने सभी दिल्लीवासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।
2: हम सरकार की ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा। हमारे शहर में पॉल्यूशन से लेकर के हर समस्या का इसका समाधान मिलेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
3: आपातकालीन सेवा डायल 112 अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल

0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एजेंसी ने इस मामले में आज सुबह दीपक सिंगला के दिल्ली और गोवा में छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। यह हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री

0: मौत हो गई। वैन में दो महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इस सप्ताह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शनिवार तक उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीत लिखा है मजरू ने और संगीत सलील चौधरी का है। फिल्म का नाम है माया।

तुमसे नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वहीं मेरा दिल, तुमसे नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वहीं मेरा दिल, झुके जहाँ पलके तेरी, खुले जहाँ जुल्फों

आइए श्रोता वो अब सुने शैलेंद्र का लिखा गीत, आवाज दी है लता मंगेशकर ने, फिल्म का नाम है मधुमती।

आइए श्रोताओ अब सुने मुकेश और लता मंगेशकर को। रचना शैलेंद्र की है और धुन तैयार की है शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम है आशिक।

आइए श्रोताओं अब सुने गीता दत्त के स्वर में फिल्म श्रीमती 420 का गीत।

आइए श्रोताओं अब सुने बम्बई का बाबू फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले के स्वर में।

श्रोताओ, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए सुने बादशाह फिल्म का गीत लता मंगेशकर, हेमंत कुमार और साथियों के स्वर में।

आइए श्रोताओं अब सुने कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है जब याद किसी की आती है। आवाज महेंद्र कपूर की है, रचना राजा मेहदी अली खान की, और इस गीत को संगीतबद्ध किया है मदन मोहन ने। आइए सुने।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बजे हैं। अब हमारे दिल्ली केंद्र से उर्दू सर्विस के कार्यक्रम अनुप्रसारित की जाएंगी।

आदाब, ये आकाशवाणी है। आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR, डी डी फ्रीडिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। मैं हूं आपकी मेज़बान आसिया मैमुना, और अब पेश है उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात में नश होने वाले प्रोग्रामों की तफसील। अब से कुछ देर बाद 3:05 पर आप सुनेंगे उर्दू खबरें। 3:15 पर पेश होगा प्रोग्राम मेरी।

वॉटसन, 3:30 पर प्रोग्राम पेश होगा कहकशां, जिसमें आप फिल्म कुर्बानी को सुनेंगे। 4 बजे फिल्मी नगमों का प्रोग्राम पेश किया जाएगा। 4:50 पर खबरें नश्र होंगी। 9:15 पर उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस की नशरियात शुरू होंगी, जिसमें आप 9:20 पर सुनेंगे एक फनकार। 9:45 पर आप सुनेंगे खबरें। 9:55 पर हेल्थ टिप्स सुनेंगे और 10 बजे मार्केट मंत्र पेश होगा। 10:30 पर प्रोग्राम तामिले इरशाद नशर किया जाएगा। 11 बजे खबरें बरे सगीर से पेश की जाएंगी। 11:10 पर तामिले इरशाद और 11:30 पर सुर्खियों में प्रोग्राम आप सुन सकेंगे। 11:45 पर आपके सामने पेश होंगी कवालियाँ। 12 बजे आलमी खबरें नशर होंगी। 12:10 पर क्लासिकी मौसीकी का प्रोग्राम पेश किया जाएगा और 12:30 पर प्रोग्राम आखिर शब नशर होगा। ये थी आज की फहरिस्त, प्रोग्रामों की नशर होने वाली फहरिस्त, और अब से कुछ देर बाद नशर होंगी उर्दू खबरें।

ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद अम्मार से खबरें सुनिए। वजीर अजम मोदी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो पहुंच गए हैं, जहां वो नॉर्वे के अपने हमनसब योनास गैर स्टोरे के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। वजीर अजम ने कहा है कि स्वीडन के उनके दौरे से बाहमी ताल्लुकात को नई रफ्तार मिलेगी। दोनों मुल्कों ने अगले 5 साल में दो तरफा तजारत दोगुना करने से इतफाक किया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह दिफाई और भारत बहरुल राबतों को फरोग देने के लिए वियतनाम और जनूबी कोरिया के दौरे पर रवाना हो गए हैं। वजीर सेहत जगत प्रकाश नड्डा आज जनेवा में शुरू होने वाली 79वीं आलमी सेहत असम्बली में हिफ्जान सेहत के मुस्तकबिल के बारे में आलमी मुजाकरात में शिरकत करेंगे। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम मेजबान चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी स्वीडन का 2 दिन का दौरा मुकम्मल करने के बाद अब नॉर्वे की राजधानी ओस्लो पहुंच गए हैं। उनके इस दौरे में भारत और नॉर्वे के दरमियान बाहमी बातचीत होगी, साथ ही तीसरी भारत नॉर्डिक सरबराह मीटिंग में भी वो शिरकत करेंगे। जनाब मोदी के इस दौरे से नॉर्डिक मुल्कों के साथ भारत के ताल्लुकात को तकवीत मिलेगी। पिछले 43 बरस में भारत के किसी भी वजीर आजम का नॉर्वे का ये पहला दौरा है। जनाब मोदी आज नॉर्वे के शाह हराल्ड पंजुम और मलका सोंजा से मुलाकात करेंगे और नॉर्वे के वजीर आजम योनास गहर स्टोरे के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। वो भारत नॉर्वे कारोबारी और तहकीकी समिट से भी खिताब करेंगे। इस दौरे में माहौलियात के लिए साजगार टेक्नोलॉजी और समंदरी मईशत जैसे शोबों पर खसूसी तवज्जो मरकूज की जाएगी। इसके अलावा तजारत और सरमाकारी के मौके को भी फरोग हासिल होने की तवक्को है। कल वजीर आजम तीसरी भारत नॉर्डिक सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगे। हाल ही में नाफिज किए गए तजारती और इकतसादी शराकत दारी माहदे के तनाजुर में तवक्को की जा रही है कि यह सरबराह कॉन्फ्रेंस रुकन मुल्कों के साथ इकतसादी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने में मददगार साबित होगी। सरेदस्त भारत और 5 नॉर्डिक मुल्कों के दरमियान दो तरफा तजारत $19 अरब मालियत की है। इससे कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि स्वीडन

कि उनके दौरे में ऐसे कई अहम नतायज सामने आए जिनसे बाहमी ताल्लुकात को नई रफ्तार मिलेगी। उन्होंने कहा कि बाहमी ताल्लुकात को कलीदी साझेदारी की सतह तक पहुंचाने से लेकर मुश्तरका इख्तराई साझेदारी के दूसरे मरहले के आगाज़ और भारत स्वीडन टेक्नोलॉजी और मसनू जहानत कॉरिडोर से लेकर अगले 5 साल में दो तरफा तजारत को दोगुना करने का बड़ा मकसद तय करना उनके दौरे के खास निकात रहे और बातचीत काफ़ी मुफीद साबित हुई। जनाब मोदी ने स्वीडन के आवाम, वहां की सरकार और वजीर आजम उल्फ क्रिस्टर्सन का गर्मजोशी और दोस्ती के लिए शुक्रिया अदा किया। हमारे नामनिगार ने बताया है कि बाहमी ताल्लुकात को कलीदी साझेदारी की सतह पर पहुंचाने में 2026 से 2030 तक के भारत स्वीडन मुश्तरक अमली मंसूबे का अहम रोल रहा। जामे खाके का मकसद अगले 5 साल में दो तरफा इकतसादी लेन देन को दोगुना करना और मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत इश्तराक को मजीद मुस्तहकम बनाना है। वजीर आजम ने मोदी ने कहा है कि भारत आज सरमायाकारी इख्तिरा और मैन्युफैक्चरिंग के लिए दुनिया के सबसे पुरकशिश मुल्कों में से एक है। जनाब मोदी स्वीडन के अपने 2 दिन के दौरे में गोतनबर्ग में सनअत से मुतालिक यूरोपीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि मुल्क में सभी कंपनियों के लिए अच्छे मौके दस्तियाब हैं। साथ ही उन्होंने यकीन दिलाया कि आने वाले बरसों में भारत के सरकर्दा प्रोजेक्टों का हिस्सा बनने के लिए उनके वास्ते एक इदारा जाती निज़ाम समेत मुख्तलिफ इकदाम भी किया सकते हैं। अपने खिताब में जनाब मोदी ने भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आज़ाद तजारत के तारीखी समझौते के मुज़ाकरात कामयाबी के साथ मुकम्मल होने समेत भारत यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात में तेजी आने का खैर मकदम किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज वियतनाम और जनूबी कोरिया के दौरे पर रवाना हो गए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि इस दौरे से इन दोनों मुल्कों के साथ भारत के राबतों के दायरे में मजीद वसअत आएगी। जनाब सिंह ने कहा कि इस दौरे में कलीदी फौजी इश्तराक को फरोग देने, दिफाई सनअती साझेदारी को मुस्तहकम बनाने और भारत बहरुल काहिर खित्ते में बहरी तालमेल को बढ़ावा देने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा 79वें आलमी सेहत असम्बली में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। ये 6 रोज़ा प्रोग्राम आज जनेवा में शुरू हो रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब नड्डा ने कहा कि इस साल का मौजू आलमी सेहत की असर नौ तश्कील एक मुश्तरका जिम्मेदारी आलमी सतह पर सेहत से मुतालिक चैलेंजों को दूर करने के लिए इज्तिमाही अमल की अहमियत को उजागर करता है। मगरबी बंगाल में शुभिंदु अधिकारी की ज़ेर क़्यादत बीजेपी सरकार ने एक अहम फैसला करते हुए रियासती सरकार की मुलाजमत में आने वाले उम्मीदवारों के लिए उम्र की हद में इजाफा कर दिया है। ग्रुप ए असामियों में भर्ती के लिए उम्र की हद अब 41 साल तय की गई है, जबकि ग्रुप बी के ओहदों के लिए इसे बढ़ाकर 44 साल कर दिया गया है। ग्रुप सी और ग्रुप डी असामियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्र अब 45 साल होगी। सरकार ने ये वजाहत की है कि जहां कहीं उम्र की बालाई हद पहले ही नाफिज है वहां मौजूदा जाब्ते बरकरार रहेंगे। केरलम में कांग्रेस के सरकर्दा लीडर वी डी सतीशन की सरबराही में नई यूडीएफ वजारत को आज तिरुवनंतपुरम में हलफ दिलाया गया। रियासत के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने नए वजीर को ओहदे और हर राजदारी का हलफ दिलाया। साबिक अपोजिशन लीडर और केरलम प्रदेश कांग्रेस कमेटी केपीसीसी के साबिक सदर रमेश चिन्नीथाला, केपीसीसी के मौजूदा सदर सनी जोसेफ, केपीसीसी के साबिक सदर के मुरलीधरन और आईयूएमएल के लीडर पी के कुनालीकुट्टी नई वजारत में सरकर्दा रहनुमाओं में शामिल हैं। मजमूई तौर पर 21 अरकान को हलफ दिलाया गया। वजीर आजम ने मोदी ने केरलम के वजीर आला के तौर पर हलफ लेने पर वी डी सतीशन को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि मरकजी सरकार आवाम की उमंगों की तकमील में केरलम की नई सरकार की हर मुमकिन मदद को यकीनी बनाएगी। भारत ने मुत्तहिद अरब अमारात के बराका न्यूक्लियाई मरकज को निशाना बनाकर किए गए हमले पर गहरी तश्वीश का इजहार किया है। एक बयान में वजारत खारजा ने कहा है कि इस तरह की कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल हैं और कशीदगी के खतरनाक फैलाव की नुमाइंदगी करती हैं। नई दिल्ली ने सब्र तहमुल की अपील करते हुए बातचीत और सिफारतकारी की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया है। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में उस वक्त एक बार फिर इजाफा हो गया जब ईरान की जानब से मुज़ाकरात की बहाली से मुतल वाशिंगटन की शरायत मुस्तरद की।

0: जाने के बाद अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को ताज़ा वार्निंग जारी कर दी। मगरबी एशिया में महीनों से जारी बेचैनी के दौरान ईरान के यूरेनियम ज़खीरे, पाबंदियों में नरमी और जंग में हुए नुकसान की भरपाई जैसे मामलों पर मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर ट्रंप ने ईरान से कहा है कि वो समझौते को मुमकिन बनाने के लिए तेज़ी से काम करे क्योंकि वक्त निकलता जा रहा है। चीन के ग्वांगशी खित्ते में आज सुबह 5.2 शिद्दत का जलजला आने से 2 अफराद हलाक हो गए। जलजले के बाइस कई इमारतें गिर गईं और हजारों अफराद को अपने घरों से महफूज मकामात पर मुंतकिल होना पड़ा। टेनिस में आलमी नंबर 1 यानिक सिनर ने इटालियन ओपन का खिताब जीत लिया है। सिनर ने फाइनल में नॉर्वे के कैस्पर रूड को 6-4 और 6-4 से शिकस्त दी। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम मेजबान चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो पहुंच गए हैं, जहां वो नॉर्वे के अपने हमनसब योनास गहर स्टोरे के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। वजीर आजम ने कहा है कि स्वीडन के उनके दौरे से बाहमी ताल्लुकात को नई रफ्तार मिलेगी। दोनों मुल्कों ने अगले 5 साल में दो तरफा तिजारत दोगुना करने से इत्तेफाक किया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह दिफाई और भारत बैरुलकाहिल राबतों को फरोग देने के लिए वियतनाम और जनूबी कोरिया के दौरे पर रवाना हो गए हैं। मरकजी वजीर सेहत जगत प्रकाश नड्डा आज जनेवा में शुरू होने वाली 79वीं आलमी सेहत असम्बली में हिफ्जान सेहत के मुस्तकबिल के बारे में आलमी मुजाकरात में शिरकत करेंगे। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई में मेज़बान चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: आदाब सामई, ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। अभी आपने सुनी उर्दू खबरें। 3:15 हो चुके हैं और अब पेश है प्रोग्राम मेरी पसंद। मैं हूं आपकी मेजबान आसिया ममनूना। लीजिए पहला नगमा इस प्रोग्राम का, पेश है

ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन नया डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। सामईन 3:30 बज चुके हैं और अब पेश होगा प्रोग्राम कहकशां, जिसमें आप सुनेंगे फिल्म कुर्बानी की कहानी और नगमे।

राजेश यानी अदाकार फिरोज खान को तिजोरियां तोड़ने में कमाल हासिल था। रोजाना शाम को तफरी के लिए वो एक क्लब में जाता था जहां शीला यानी अदाकारा जीनत अमान सैकड़ों मद्दाहों के दरमियान घिरी अपने दिल फरेब रक्स और सहर अंगेज आवाज से उनका दिल बहलाती थी। लेकिन राजेश को ये महसूस होता गोया शीला का ये गीत महज उसी के लिए था।

ने धंधे से नफरत हो गई। वजह सिर्फ ये थी कि उसके सरदार ने एक दफा अपने एक साथी को महज इसलिए गोली से मरवा दिया कि वो पुलिस के सामने जुबान न खोल सके। अमर शहजोर तो था ही, मगर दिल का उतना ही नर्म। उसकी बीवी मर चुकी थी। उसकी तन्हा जिंदगी में अगर कुछ हुस्न बाकी था तो वो उसकी बीवी की इकलौती निशानी उसकी बेटी टीना थी, जिसे वो दिलो जान से ज्यादा प्यार करता था। अमर की मुलाकात शीला से उन दिनों हुई जब राजेश जेल में था, और फिर ये मुलाकात गुर्बत में बदलती चली गई।

दूसरी जानिब अमर यानी अदाकार विनोद खन्ना एक मशहूर स्मगलर राका यानी अदाकार अमरीश पुरी के लिए काम करता था। वो बेहद निडर होने के साथ साथ हसास भी था। एक दिन उसे

0: ये पंचों ने कर रही थी। बहुत प्यार करती है तुमसे, तुम्हारे प्यार में इतना खो गई है कि इसे याद नहीं कि बाप नाम की भी कोई चीज है। तकदीर वाली है।
1: इसमें तकदीर की क्या बात है?
0: कहते हैं किसी का प्यार तकदीर के आसमान में चार चांद लगा देता है। चाहत इंसान का नसीब संवार देती है।

0: अमर और शीला की मुलाकातों से बेखबर राजेश जेल की चहरदीवारी में मेहनत मशक्कत करता रहता और जब थकन से चूर हो जाता तो अपनी आइंदा जिंदगी के सपने देखने लगता। जब वो जेल से रिहाई के बाद शीला के साथ मोहब्बत और शराफत की जिंदगी बसर करेगा। लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। जेल में राजेश की मुलाकात विक्रम यानी अदाकार शक्ति कपूर से हुई, जो राजकुमारी ज्वाला यानी अरुणा ईरानी का भाई था। दरअसल विक्रम को राजा ने ही अपने जाल में फंसाकर जेल भिजवाया था। ये वही राका था जिसने चालाकी से विक्रम और उसकी बहन ज्वाला के कई करोड़ रुपए की मालियत के हीरे हड़प कर लिए थे। इसलिए इन भाई बहन ने कसम खाई थी कि वो राका से इस सितम का बदला लेकर ही रहेंगे। क्योंकि राजेश तिजोरियां खोलने में माहिर था, इसलिए विक्रम जानता था कि राजेश ही उसके काम का आदमी है। और फिर एक दिन विक्रम ने राजेश को जबरदस्ती उठवा लिया।
1: आप इसे जानते हैं?
2: हाँ, ये एक बार मुझसे आठानी की शर्त हाथ चुका है।
1: आठानी की? ये तो अरबों रुपयों का मालिक है।
2: मेरी नजरों में जिस आदमी की जितनी कीमत होती है, मैं उसके साथ उतनी ही शर्त लगाता हूँ।
1: खूब परखा आपने, ये है इसी काबिल। लेकिन इसकी तिजोरी में 1 करोड़ रुपए के जेवरात बंद हैं, जिन पर हमारा हक है। सुना है आपकी उंगलियों में जादू है, ताले आपकी उंगलियों के इशारों पे नाचने लगते हैं और दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं।
2: आप चाहती हैं कि मैं अपनी उंगलियों का जादू दिखाकर इस तिजोरी के दरवाजे खोल दूं?
1: जी
3: दोस्त, ये रहे 50,000 रुपए, एडवांस के तौर पर रख लो। काम खत्म होने पर 5 लाख और।
1: कितनी जल्दी हो सके हमारा ये काम कर दीजिए।
2: बहुत जल्दी में है आप लोग, मैं अभी भी बाहर निकला हूं। ये एडवांस अपने पास रखिए, दोबारा मुलाकात होगी फिर बात।

0: दोस्त इसे रखिए अपने पास, जब तक ये एडवांस आपके पास रहेगा आप हमें और हम आपको याद रखेंगे।
1: राजेश ये रकम लेकर शीला के पास पहुंचा।
2: कौन थे वो लोग?
0: कौन?
2: वही जो जबरदस्ती तुम्हें अपने साथ ले गए थे।
0: अरे वो उन्हें मुझसे कुछ काम था।
2: क्या चाहते थे वो तुमसे?
0: चाहते क्या थे, मिलना चाहते थे और क्या मिलके वापस आ गया।
2: राजेश तू रहा उनसे, वो लोग मुझे खतरनाक मालूम होते हैं।
0: हुआ करें खतरनाक, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे।
2: मुझे डर लग रहा है कि तुम फिर उसी रास्ते पर वापस तो नहीं जा रहे हो।
0: मैं कहीं वापस नहीं जा रहा हूं शीला, यही हूं तुम्हारे पास, यकीन करो।
2: अरे इतने सारे पैसे कहां से आए?
0: पैसे कहां से आए इस बात की फिक्र मत करो, तुम इस बात की फिक्र करो कि इसे खर्च कैसे करो।
2: मगर तुम लाए कहां से?
0: अरे यार तुम आम खाओ ना, पेड़ गिनने से क्या मतलब है तुम्हें।
2: राजेश तुम्हें पैसे से ज्यादा प्यार है या शीला से?
0: ये भी कोई पूछने की बात है?

0: ये क्या किया तुमने?
1: वही जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। मैंने सोचा था कि इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हें अकल आ गई है, लेकिन अब मालूम हुआ कि तुम कभी सुधर नहीं सकते। चोरी तुम्हारी नस नस में बस चुकी है राजेश।
0: हाँ मैं चोर हूँ, लेकिन किसी गरीब की जेब में हाथ नहीं डालता। मैं उनके वहां चोरी करता हूँ जो सिर्फ पैसे की पूजा करना जानते हैं, उसका इस्तेमाल करना नहीं जानते।
1: और ये हक तुम्हें किसने दिया?
0: उन लोगों ने जिन्होंने लाखों इंसानों का हक मार कर ये दौलत जमा की है। शीला तुम समझती क्यों नहीं, मैं चोरी अपने जेबें भरने के लिए नहीं करता हूँ। मैं सारी दुनिया की दौलत तुम्हारे कदों में डाल देना चाहता हूँ। बुरा क्या है अच्छा क्या है मैं नहीं जानता, और न ही मुझे इस बात की परवाह है। लेकिन जब मैं तुम्हें क्लब में नाचते गाते देखता हूँ तो मुझे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है।
1: तो क्या चाहते थे तुम? कि मैं सड़कों पर भीख मांगती फिरती, लोगों के आगे हाथ फैलाती फिरती? 3.5 साल की तन्हाई और अकेलापन जानते हो क्या होता है? अगर जानते होते तो आज फिर ये काम नहीं करते। राजेश, अब मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि जो रास्ता तुम इख्तियार कर चुके हो उसमें मेरे लिए कोई जगह नहीं है।
2: राजेश को इतनी बड़ी रकम खोने का जरा भी सदमा नहीं हुआ, क्योंकि उसे दौलत से ज्यादा शीला से प्यार था।

एक मौके पर राजेश न चाहते हुए भी विक्रम से लड़ने पर मजबूर हो गया। ये टकराव अमर की जान बचाने की खातिर हुआ। दरअसल राजेश और अमर दोनों ही मुजरिमाना जिंदगी से आजीज आ चुके थे और इज्जत की जिंदगी बसर करने का तहैया कर चुके थे। ख्यालात की ये यकसानियत उन्हें एक दूसरे के और करीब ले आई और फिर दोनों गहरे दोस्त बन गए।

दूसरी तरफ विक्रम, जो एक बार अमर के हाथों बुरी तरह शिकस्त खा चुका था, अमर से इंतकाम लेने की आग में झुलस रहा था। एक दिन मौका पाकर विक्रम के आदमी अमर को उठाकर अपने अड्डे पर ले आए। विक्रम ने अमर को रस्सियों से जकड़कर उस पर बेतहाशा कोड़े बरसाए।

0: याद आया, मैंने कहा था हमारी तुम्हारी एक मुलाकात और होगी और वो तुम्हारे लिए आखिरी होगी।
1: जिंदगी की परवाह वो लोग करते हैं जिन्हें मौत से डर लगता हो। मैंने जब से होश संभाला है खिलौनों की जगह मौत से खेलता आया हूं।
0: लेकिन मैं तुम्हें मौत नहीं दूंगा, जिंदा रखूंगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि वो जिंदगी मौत से बदतर।

0: इस तरह राजेश अमर को विक्रम और उसके आदमियों के चुंगुल से निकाल लाया। मगर विक्रम को अपनी शिकस्त पर बेहद गुस्सा था। वो मौके की तलाश में रहा और एक दिन उसे मौका मिल ही गया। उसने अमर की बेटी टीना को अगवा करवा लिया। जब अमर को इल्म हुआ तो वो दीवानावार विक्रम के घर पहुंचा।
1: विक्रम, मेरी बच्ची कहाँ है? मेरे पास है, करीब आओ ले जाओ।

0: हरकतें से गुलियों से
1: और आगे आने दे बहन, इसकी मौत का तमाशा नजदीक से देखेंगे।
2: अमर की बेटी टीना के अगवा के बारे में जब शीला ने राजेश को बताया तो वो भी विक्रम के घर पहुंच गए।
3: ये लोग चाहते हैं ना मैं इनका काम करूं, इनके लिए चोरी करूं, मैं करूंगा।
4: मैं कुछ चोरी नहीं करेगा।
3: मेरे पास एक प्लान है, मुझे एक मिनट की मोहलत दे दोस्त, सिर्फ एक मिनट की। मैं टीना को अभी ले आता हूँ।
2: दरअसल ये विक्रम की दोहरी चाल थी, एक तो अमर को नीचा दिखाना और दूसरे राजेश से सौदा करना। विक्रम अपनी इस चाल में कामयाब हो ही गया। उसने इस शर्त पर अमर और टीना को छोड़ दिया कि राजेश राका की तिजोरी तोड़कर उसमें छिपे हुए हीरे विक्रम के हवाले कर देगा। राजेश ने शर्त तो मान ली, लेकिन उसने अमर के साथ मिलकर ऐसा मंसूबा तैयार किया कि दौलत भी हाथ आ जाए और वो विक्रम और ज्वाला के चुंगुल से आजाद भी हो जाए। उधर विक्रम और ज्वाला का मंसूबा भी कुछ कम न था।
1: क्यों आए हो? तुम्हारी मौत का परवाना लेकर आए हैं।
5: यही अल्फाज मैं पहले भी सुन चुका हूं। शायद उस जेल की चक्की को भूल चुके हो तुम। इंतकाम का भूत अभी तक नहीं उतरा।
6: वो मेरे भाई का इंतकाम था, लेकिन एक औरत का इंतकाम तुमने नहीं देखा। औरत जब इंतकाम लेती है तो उसकी आग में सब कुछ जलकर खाक हो जाता है।

0: देखिए प्लान तो इसने गजब का बनाया है, लेकिन बेचारे की किस्मत में इसका फल नहीं है।
1: राका के जवाहरात लाते ही इसको 5 लाख मिलने की बजाय 5 गुनिया

0: के सीने में भर देना।
1: वैसे प्लान हमारा भी बुरा नहीं।
0: हेलो पुलिस।
2: यस।
0: हाँ देखिए, मेरे सामने की बिल्डिंग में डाका पड़ रहा है।
2: कहाँ?
0: सेवन फ्लोर पे। बिल्डिंग का नाम है रिवेरा नारिमन पॉइंट।
2: आप अपना नाम बताइए, बहुत जरूरी है।
0: हाँ हाँ, मैं समझ गया, लेकिन मुझे बीच में मत डालिए। मैंने खबर दी है, बस इतना काफी है।
2: हेलो हेलो हेलो,
3: पुलिस को फोन किया।
0: हाँ।
3: माला माल हो गया, इत्मीनान नहीं मिलेगा दोस्त। पुलिस को यकीन हो जाना चाहिए कि मेरा इस बड़ी चोरी से कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए मेरे यहाँ पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। अब साल डेढ़ साल की तो बात है। देख पुलिस आ रही है। सुन, चोर से मिलने का कोड याद है ना?
0: हाँ। ईश्वर का दूसरा नाम दोस्ती है। मैं शीला से क्या कहूंगा?

0: Now, Inspector. Ma'am.
1: IPC Section 379 reads into Section 511 attempted robbery. Chori karte waqt pakde jane ki saza. Ek saal. 1 year.
0: और अगर मेरे पुराने रिकॉर्ड पे जज साहब की नजर पड़ी तो शायद 6 महीने और यानी 1.5 साल.
2: राइट.
0: फिर सोच क्या रहे इंस्पेक्टर? लगाइए हथकड़ी.
1: चीचा गालिब का एक शेर याद आ रहा है, सुनिएगा.
0: इरशाद.
1: बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है.
0: क्या मतलब?
1: मतलब साफ है, तुम और इतनी मामूली सी चोरी में इतनी आसानी से पकड़े जाओ, बात जरा घटिया सी लगती है.
2: राका के घर चोरी हुई, उसकी तिजोरी से 1 करोड़ के हीरे गायब है.
0: उससे मेरा क्या लेना देना है?
2: उसी से तुम्हारा लेना देना है. ये सब दिखावे का पोस्टर है, दिखावे का.
0: इंस्पेक्टर, तुम कभी साबित नहीं कर सकोगे कि उस चोरी में मेरा हाथ है.
1: तुम ठीक कहते हो, इतनी बड़ी चोरी के इल्जाम में तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता. अलबत्ता इस खून के इल्जाम में जरूर कर सकता हूँ.
2: नहीं इंस्पेक्टर, मैंने खून नहीं किया.
1: शट अप.
2: मैं कहता हूँ मैंने खून नहीं किया.
1: जस्ट शट अप एंड लिसन टू मी क्वाइटली बॉय. तुम्हारा सारा रॉबरी का प्लान मेरी समझ में आ रहा है. तुमने और तुम्हारे जिगरी दोस्त ने मिलकर ये डबल चोरी का प्लान बनाया था. तुम राका के घर में चोरी करोगे, उसकी तिजोरी से जेवरात निकालकर अपने दोस्त के हवाले करोगे, तो उसके बाद तुम्हारा दोस्त हिंदुस्तान से हमेशा के लिए फरार हो जाएगा. तुम यहाँ इस दफ्तर में एक मामूली सी चोरी करते हुए पकड़े जाओगे. ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 1.5 साल की सजा लगेगी और उसके बाद तुम और तुम्हारा दोस्त राका की दौलत से ऐश करोगे. तुमने पुलिस को धोखा देने की कोशिश की, तुम्हारे दोस्त ने तुमको धोखा दे दिया, ये खून कर दिया और यहाँ से भाग गया.
2: ये झूठ है,
1: ये सच है.
0: मेरा दोस्त ऐसा नहीं कर सकता, मेरा दोस्त ऐसा नहीं कर सकता.
1: तुम्हारे दोस्त ने ऐसा ही किया है. तुम्हारी दौलत, तुम्हारी माशूका को लेकर यहाँ से फरार हो गया है. तुम्हारे हिस्से में आई है जेल की सलाखें और फांसी का फंदा, सिर्फ फांसी का फंदा. राजेश,
0: मेरा दोस्त ऐसा नहीं कर सकता.
1: राजेश, डोंट बी एन इडियट. नामुमकिन कोशिश मत करो राजेश, जिद मत करो. तुम यहाँ से भाग नहीं सकते.
0: जब तक मैं अमर को मौत की नहीं सुला दूं, तुम मुझे पकड़ नहीं सकोगे इंस्पेक्टर.
1: ऑफिसर, डाउन द स्टेप, गेट डाउन द ब्लडी स्टेप.
3: इंस्पेक्टर खान को चकमा देकर राजेश गुस्से से भरा सीधा अमर के पास पहुंचा.
0: मुझे जिंदा देखकर ताजुब हो रहा है ना?
4: क्या बात कर रहा है यार, जब तक दुनिया जिंदा है भगवान तुझे जिंदा रखे. तेरी जिंदगी पे ताजुब कैसा?
0: ये सब शीला को सुनाने के लिए कह रहा है.
4: क्या पकता है, तू नशे में तो नहीं है?
0: नशा तो अब उतरेगा. दोस्ती का, प्यार का, इंसानियत का.
5: क्या हो गया है तुम्हें राजेश?
0: यह आदमी मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ाकर यहाँ गया था.
4: फांसी?
0: हाँ फांसी. तू तो यही समझता होगा ना कि कानून ने मेरे लिए अभी तक सजाए मौत का ऐलान भी कर दिया होगा.
5: सजाए मौत?
0: एक खून हुआ है शीला, जिसके खत्म का इल्जाम मुझ पर ठोसा गया है.
4: कसूर? किसका कसूर?
0: अपने आप से पूछ.
4: नहीं राजेश, मैंने किसी का खून नहीं किया.
0: तो फिर वो लाश कहां से आ गई? बोल, खून तूने किया और उसके छींटे मेरे दामन पर रंग दिए ताकि मैं फांसी के तख्ते पर.

0: और तू सारी दौलत के साथ शीला को अपनाकर जिंदगी भर आयश करता रहे।
1: राजेश
0: कमीने, गद्दारी करने की क्या जरूरत थी? अपनी जिंदगी और खुशियों के 1.5 साल तो वैसे भी कुर्बान कर चुका था। दौलत चाहिए थी ना, एक बार मुंह से कैसे तू देखता? शीला का हाथ चाहिए था तो मैं तेरी दोस्ती के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान करके खुद अलग हो गया होता।
1: बकवास बंद करना, ही तो मेरा हाथ उठ जाएगा।
0: उठा के देख सोचता क्या है,
1: मर्द का बच्चा है तो ये रिवॉल्वर फेंक कर बात कर।
2: और फिर जब राजेश को पता चला कि राघा का असल कातिल कौन है तो उसे अमर के साथ अपने सलूक पर नदामत हुई।
3: अमर, मैंने तेरी दोस्ती को गाली दी है, तेरा दिल बहुत दुखाया है।
4: हाँ यार, दिल तो तूने वाकई दुखाया।
3: ले अमर, मार दे मुझे, मुझे जीने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं।
4: दुनिया में एक ही तो दोस्त मिला है, तुझे मार दूंगा तो खुद कैसे जीऊंगा।
3: अमर,
2: राजेश और अमर के दरमियान गलतफहमियां दूर हो गईं और फिर शुरू हुई एक जबरदस्त जंग। एक तरफ थे राजेश और अमर, दो गहरे दोस्त, और दूसरी तरफ विक्रम, ज्वाला और उनके खूंखार साथी।

मैंने कहा था ना, साथ में मर के दिखाओ। अब वो वक्त आ गया है। पहले तुम, क्योंकि तुमने हमको धोखा दिया।

वाह, क्या दोस्ती है, क्या दोस्त के लिए कुर्बानी का जज्बा है। नहीं अमर,

ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। सामेईन, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम कहकशां, जिसमें फिल्म कुर्बानी की कहानी और नगमे पेश किए गए थे। सामेईन, 4 बज चुके हैं और अब पेश है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम।

0: ये गुलशन फूल कलियां बहार वादियां ये मौसम खेत हरियाली पहाड़ बर्फ ये कायनात कुछ भी नहीं
1: कुछ भी नहीं
0: कुछ भी नहीं गरन में वो नहीं
1: वो है कौन
2: कप्तान साहब उस लड़की का कोई नाम तो होगा
0: नाम

सर्विस की नशरियात सामईन, अभी आप सुन रहे थे चंद फिल्मी नगमे। आपसे कुछ देर बाद 4:50 पर खबरें नशर होंगी। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR DD फ्रिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात।

कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि मुल्क में सभी कंपनियों के लिए अच्छे मौके दस्तियाब हैं। साथ ही उन्होंने ये यकीन दिलाया कि आने वाले बरसों में भारत के सरकर्ता प्रोजेक्टों का हिस्सा बनने के लिए उनके वास्ते एक इदारा जाती निज़ाम समेत मुख्तलिफ इकदाम भी किए जा सकते हैं। अपने खिताब में जनाब मोदी ने भारत और यूरोप यूनियन के दरमियान आज़ाद तजारत के तारीखी समझौते के मुज़ाकरात कामयाबी के साथ मुकम्मल होने समेत भारत यूरोप यूनियन ताल्लुकात में तेज़ी आने का खैर मकदम किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने मुत्तहदा अरब अमारात के बरखा न्यूक्लियाई मरकज़ को निशाना बनाकर किए गए हमले पर गहरी तश्वीश का इजहार किया है। एक बयान में वजारत खारजा ने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल हैं, कशीदे खतरनाक फैलाव की नुमाइंदगी करती हैं। नई दिल्ली में सब्र तहमुल की अपील करते हुए बातचीत और सिफारतकारी की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया है। इससे पहले कल मुत्तहदा अरब अमारात के अड्डाफरा के बरका न्यूक्लियाई मरकज़ के अहाते में ड्रोन हमला किया गया, जिससे मरकज़ की अंदरूनी हदूद के बाहर इलेक्ट्रिकल जनरेटर में आग लग गई। अबू धाबी हुकाम ने तस्दीक की कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, तापकारी का इखराज नहीं हुआ। अक़वाम मुत्तहदा के न्यूक्लियाई निगरानी के इदारे बैनुल अक़वामी न्यूक्लियाई तवानाई एजेंसी ने कहा है कि वाक़े के बाद प्लांट के 4 रिएक्टरों में से एक मामूली तौर पर स्विच होकर इमरजेंसी डीजल पावर पर चला गया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज रायपुर में अगले सिलसिले की 400 डायल 112 गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर वजीर आला विष्णुदेव साई, रियासती असेंबली के स्पीकर रमन सिंह और नायब वजीर आला विजय शर्मा भी मौजूद थे। अब तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में डायल 112 की खिदमत दस्तियाब थी। प्रोग्राम के बाद जनाब शाह बस्तर के लिए रवाना हो गए, जहाँ वो नीटानगर गांव में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के कैंप के अहाते में कायम सरकर्दा खिदमात के मरकज़ का इफ्तिताह करेंगे। ये मरकज़ दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को सरकार और डिजिटल खिदमात तक आसानी से रसाई हासिल करने में मदद फराहम करेगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज वियतनाम और जनूबी कोरिया के दौरे पर रवाना हो गए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि इस दौरे से इन दोनों मुल्कों के साथ भारत के राबतों के दायरे में मजीद वसअत आएगी। जनाब सिंह ने कहा कि इस दौरे में कलीदी फौजी इश्तराक को फ़रोग देने, दिफाई सनदी साझेदारी को मुस्तहकम बनाने और भारत बहरुल खत्ते में बहरी तालमेल को बढ़ावा देने पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा 79वीं आलमी सेहत असम्बली में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए हैं। ये 6 रोज़ा तकरीब आज जिनेवा में शुरू हो रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब नड्डा ने कहा कि इस साल का मौजू आलमी सेहत की असरन व तश्कील है, एक मुश्तरक जिम्मेदारी आलमी सतह पर सेहत से मुतालिक चैलेंजों को दूर करने के इज्तिमाई अमल की अहमियत को उजागर करता है। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में उस वक्त तक एक बार फिर इजाफा हो गया जब ईरान की जानिब से मुज़ाकरात की बहाली से मुतालिक वाशिंगटन की शरायत मुस्तरद किए जाने के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को ताज़ा वार्निंग जारी कर दी। मगरबी एशिया में महीनों से जारी बेचैनी के दौरान ईरान के यूरेनियम ज़खीरे, पाबंदियों में नरमी, जंग में हुए नुकसान की भरपाई जैसे मामलों पर मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने ईरान से कहा है कि वो समझौते को मुमकिन बनाने के लिए तेज़ी से काम करे, क्योंकि वक्त निकलता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले में आज सुबह एक सड़क हादसे में कम से कम 9 अफराद की मौत हो गई। मालूम है कि एक तेज़ रफ्तार ट्रक सामने से आने वाली एक गाड़ी से टकरा गया। इस गाड़ी में 2 खवातीन समेत 10 अफराद सवार कर रहे थे। यह हादसा सदर मकाम से कोई 40 किलोमीटर पीलीभीत बस्ती शाहरा पर आदिलपुर गांव के नज़दीक पेश आया। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। ताज़ा तरीन पॉइंट्स टेबल में सनराइजर हैदराबाद फिलहाल 12 मैचों में 14 पॉइंट्स के साथ तीसरे मकाम पर है। उसने अब तक 7 मैचों में जीत हासिल की और प्ले ऑफ में अपनी जगह बनाने के लिए मजबूत दावेदार है। आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो पहुंच गए हैं, जहां वह नॉर्वे के अपने हमनसब योनास गहर स्टोर के साथ दोतरफा बातचीत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्विट्जरलैंड के उनके दौरे से बाहमी ताल्लुक

श्रोतो, गीत अभी आपने सुना जिसे हमने डर फिल्म से लिया। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत शिव हरि का था। कार्यक्रम में बात करते हैं राजस्थान के प्रसिद्ध रीति रिवाजों की। जी हां श्रोताओं, रीति रिवाज जो हमें अपने ग्रामीण एरिया में ले जाते हैं, हमारे गांव के रीति रिवाजों में ले जाते हैं, यही है कुछ राजस्थान के रीति रिवाज। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के रीति रिवाजों की। राजस्थान अपनी समृद्ध संस्कृति और मेहमान नवाजी के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ के रीति रिवाज जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न संस्कारों, मेलों और त्योहारों के माध्यम से मनाए जाते हैं। इनमें प्रमुख रीति रिवाजों की अगर हम बात करें तो इसमें आता है जन्म संबंधी रीति रिवाज, जिसे आठवां पूजन खोदला भी कहते हैं। महिला के गर्भवती होने पर सातवें या आठवें महीने में इष्ट देव की पूजा की जाती है। इसके बाद कुआं पूजन, जिसे जलवा पूजन भी कहा जाता है, बच्चे के जन्म के कुछ दिनों बाद, कुछ दिनों या सवा महीने के बाद मां और शिशु कुएं या पनघट पर जाकर जल और देवता की पूजा करते हैं। जड़ूला अथवा मुंडन, बच्चे के जन्म के बाद पहली बार बाल उतारे जाने की रस्म को जड़ूला कहा जाता है। और अब बात करते हैं विवाह संबंधी कुछ रीति रिवाजों की। पीली चिट्ठी या कहीं लग्न पत्रिका सगाई के बाद विवाह की तारीख तय करके लड़के के पिता को नारियल और पीली चिट्ठी निमंत्रण भेजता है। मायरा या भात विवाह के अवसर पर मामा अपनी बहन और उसके बच्चों के लिए कपड़े, जेवर और उपहार लेकर आते हैं। तोरण की अगर हम बात करें तो बारात पहुंचने पर दूल्हे द्वारा घर के मुख्य द्वार पर बंधी लकड़ी या तोरण को तलवार से छूने की रस्म को भी करते हैं, जिसे विजय का प्रतीक भी कहा जाता है। बिनोली या निकासी, विवाह से कुछ दिन पहले दूल्हे का घोड़ी पर बैठकर गांव या शहर में भ्रमण करना और संगीत समारोह आयोजित करना। जुआ जुई, विवाह के बाद दूल्हा दुल्हन को एक कड़ाही में पानी भरकर अंगूठी खोजने का खेल खिलाया जाता है, जो आपसी प्रेम को बढ़ाता है। आणो, गोना या मुखला, विवाह के समय यदि कन्या छोटी होती है तो वयस्क होने पर उसे दूसरी बार ससुराल भेजने की रस्म को

गोना या मुकलावा कहा जाता है। मेहंदी और पीठी दस्तूर विवाह के शुभ अवसर पर महिलाओं द्वारा गीत गाकर दुल्हा दुल्हन को हल्दी लगाना, ये भी एक विशेष प्रकार की रस्म है। अतिथिता या पावणा, राजस्थान में अतिथि देवभव की परंपरा का पूरी निष्ठा से पालन किया जाता है। राजस्थानी लोक संस्कृति पहनावे जैसे महिलाओं का घाघरा ओढ़नी और पुरुषों का साफा और पारंपरिक लोक नृत्यों जैसे घूमर और कालबेलिया, इन नृत्यों में इन रीति रिवाजों की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। बातचीत श्रोताओं हम और भी करेंगे, आइए सुने ये गीत।

0: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: संदेश से पहले गीत आपने सुना, फिल्म का नाम था हम साथ साथ हैं, आवाजी थी हरिहरन, प्रतिमा राव, घनश्याम वासवानी और साथियों की। गीत रविंद्र रावल का था और संगीत राम लक्ष्मण का। श्रोताओं, हमने बात की राजस्थान के रीति रिवाजों की और अब कुछ बात करते हैं बढ़ती महंगाई और बढ़ता संकट विषय पर। साथियों, वैश्विक भू राजनीतिक तनाव और मिडल ईस्ट संकट के कारण भारत में महंगाई तेजी से बढ़ रही है। थोक महंगाई 8.3% के ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है और पेट्रोल, डीजल और CNG की कीमतों में भारी बढ़ोतरी से आम जनता के घरेलू बजट पर गंभीर आर्थिक संकट मंडरा रहा है। महंगाई के बढ़ते संकट के मुख्य कारण हम अगर बात करें तो कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति में बाधा, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव और हॉर्मुज जलडमरूपाध्याय की नाकेबंदी से वैश्विक ऊर्जा सप्लाई चरमरा गई है। कमजोर होता रुपया, उर्वरक की किल्लत,

श्रोतो, इससे आम जनता पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। ईंधन और परिवहन लागत बढ़ने से केवल वाहन चलाना ही महंगा नहीं हुआ, बल्कि इसका सीधा असर सब्जी, दूध, राशन और रोजमर्रा की हर वस्तु पर पड़ रहा है। मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों की क्रय शक्ति काफी कम हो गई है। वर्तमान कदम और समाधान की बात करें तो संकट की इस घड़ी में सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाए हैं, जिसमें उपयोग में संयम की अपील। जी हां श्रोताओं, सरकार ने लोगों से अपील की है कि विदेश यात्राएं सीमित करें, अनावश्यक सोना न खरीदें और पेट्रोल डीजल जैसे संसाधनों का संयम से इस्तेमाल करें। कृषि में विकल्प केमिकल फर्टिलाइजर्स पर निर्भरता कम करने और विकल्प खोजने पर जोर दिया जा रहा है। ईंधन, गैस और खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर पड़ रहे दबाव के प्रभाव और प्रधानमंत्री द्वारा की गई अपील की अगर हम बात करें तो इस विषय पर हमें काफी कुछ ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। श्रोताओ, महंगाई मुद्रास्फीति में मध्य वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य पदार्थों की कीमतों में उछाल, कच्चे तेल और एलपीजी एलएनजी की बढ़ती लागत और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान है। फरवरी 2026 तक खाद्य मुद्रास्फीति बढ़कर 3.35 हो गई है, जबकि कीमती धातुओं सोना चांदी की महंगाई दर भी उच्च स्तर पर बनी हुई है। महंगाई के बढ़ने के मुख्य कारण खाद्य पदार्थों के दाम, ईंधन और ऊर्जा की लागत, आपूर्ति श्रृंखला में बाधा, जलवायु परिवर्तन, मांग में बढ़ोतरी, उत्पादन लागत में वृद्धि, मुद्रा की आपूर्ति। श्रोताओं, आम जन पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा है। इस महंगाई की दोहरी मार से रसोई का बजट बिगड़ रहा है। साबुन, बिस्कुट और पैक किए गए खाने पीने के सामान की कीमतें भी बढ़ रही हैं, जिससे आमदनी की क्रय शक्ति कम हो रही है।

गीत सुने लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म का नाम दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। गीत आनंद बख्शी का, संगीत जतिन ललित का।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओ, बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की। जी हाँ श्रोताओ, ग्लोबल वार्मिंग का हिंदी में अगर हम बात करें तो मतलब होगा, ग्लोबल वार्मिंग का हिंदी अर्थ भूमंडलीय उष्मीकरण या विश्वव्यापी तापमान वृद्धि। इसका सीधा सा अर्थ है, मानवीय गतिविधियों और प्रदूषण के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में लगातार हो रही वृद्धि। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, धरती के वातावरण के तापमान में लगातार हो रही विश्वव्यापी बढ़ोतरी को भूमंडलीय उष्मीकरण कहा जाता है। हमारी धरती सूर्य की किरणों से ऊष्मा प्राप्त करती है। ये किरणें वायुमंडल से गुजरती हुई धरती की सतह से टकराती है और फिर वहीं से परिवर्तित होकर पुनः लौट जाती है।

श्रोताओ, मानवीय गतिविधियों के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में हो रही निरंतर वृद्धि है। जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक उपयोग और वनों की कटाई से उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल के में एक कंबल की तरह कार्य करती हैं, जो सूर्य की गर्मी को अंतरिक्ष में जाने से रोककर तापमान बढ़ाती है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख कारणों की अगर हम बात करें तो जीवाश्म ईंधन का जलना, ऊर्जा के लिए कोयला

0: पेड़ को सोखते हैं, लेकिन जंगलों में कटने से यह गैस वायुमंडल में जमा होकर गर्मी बढ़ाती है। कृषि और उद्योग भी इसका एक कारण है। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव अगर हम देखें तो तापमान में वृद्धि, ग्लेशियरों का पिघलना, मौसम चक्र में बदलाव, कहीं सूखा तो कहीं अत्यधिक बारिश जैसे चरम मौसम की घटनाएं बढ़ रही हैं। समाधान की अगर हम बात करें तो नवीनीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, वनीकरण, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है, बिजली और ईंधन की बचत करना, पवन ऊर्जा जैसे विकल्पों को अपनाना। श्रोतो, पृथ्वी के वायुमंडल के गर्म होने से उसमें पानी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मौसम के पैटर्न में बदलाव आता है और अधिक भीषण वर्षा होने लगती है। साथ ही गर्म हवा के कारण शुष्क मौसम की में पृथ्वी की सतह से अधिक नमी वाष्पित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक बार और तीव्र सूखा और लू चलने लगती है। निष्कर्ष में अगर हम बात करें तो संसार में आज कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव नहीं है, जहां वर्तमान में प्रत्येक देश तकनीकी विकास कर रहा है, वहीं पृथ्वी पर पर्यावरण के तापमान वृद्धि से मानव जीवन पर खतरा बढ़ रहा है। वर्तमान समय औद्योगिक विकास, नगरीयकरण, यातायात के साधनों में घरेलू अपशिष्टों से ग्लोबल वार्मिंग के विषय में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की मात्रा में कमी लाकर ही ग्लोबल वार्मिंग जैसी भीषण समस्या को रोका जा सकता है। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं को मिलकर प्रयास करना होगा और सामूहिक तौर पर कड़े कदम उठाने होंगे और इस असंतुलनकारी विकास को रोककर हमें संतुलित विकास करना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों को इसके दुष्परिणाम से बचाया जा सके। अगर अभी से नहीं रोका गया तो आने वाले समय में एक ये बड़ी समस्या बहुत बड़ा विकराल रूप ले लेगी, जिसमें निपटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसका अंतिम समाधान संतुलित व सतत विकास ही है।
1: तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
2: आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं इंद्रनील।
1: केस नहीं लड़ सकती। नाउ प्लीज गो फ्रॉम हियर।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: संदेश से पहले अभी आपने गीत सुना। फिल्म का नाम था मैं ऐसा ही हूं। आवाजें थी शान और सुनिधि चौहान की। गीत समीर का था और संगीत हिमेश रेशमिया का। साथियों, बात करते हैं प्राकृतिक आपदाओं से बचाव। जी हां, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए सबसे प्रभावी तरीका पूर्व तैयारी, आपदा के दौरान सही निर्णय लेना और सटीक चेतावनी प्रणालियों का पालन करना है। आपदाओं के आधार पर विशिष्ट रणनीतियां अपनाकर जान माल के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। सामान्य तैयारियों की अगर हम बात करें तो आपातकालीन किट, एक बैग हमेशा तैयार रखें जिसमें सूखा भोजन, पीने का पानी, टॉर्च, अतिरिक्त बैटरी, प्राथमिक चिकित्सा का सामान और जरूरी दस्तावेज शामिल हों। चेतावनी तंत्र

की अगर हम बात करें तो स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग द्वारा जारी की जाने वाली चेतावनियों पर हमेशा नजर रखें। अपने परिवार के साथ आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर जाने और संपर्क करने की एक स्पष्ट योजना बनाएं। विभिन्न आपदाओं के दौरान बचाव की हम बात करें तो अगर भूकंप की कोई कारण है, भूकंप भी कोई कारण है, तो उस अवस्था में आता है झुके, ढके और पकड़ें। भूकंप के झटके महसूस होते ही किसी मजबूत मेज या फर्नीचर के नीचे छुप जाएं और उसके पैर को कसकर पकड़ लें। खुले स्थान पर रहें। यदि आप घर के अंदर हैं तो खिड़कियों, भारी अलमारियों और कांच की वस्तुओं से दूर रहें। यदि बाहर हैं तो इमारतों, बिजली के खंभों और पेड़ों से खुले मैदान में चले जाएं। बाढ़ के समय में ऊंचे स्थानों पर जाएं। भारी बारिश या बाढ़ की चेतावनी मिलने पर तुरंत निचले इलाकों को छोड़कर सुरक्षित या ऊंचे स्थानों पर शरण लें। पानी के बहाव से बचें। बाढ़ के बहते पानी या जल भराव वाले नालों से न गुजरें। पैर फिसलने या गहराई का अंदाजा न होने से बड़ा हादसा हो सकता है। आकाशीय बिजली की अगर हम बात करें तो पेड़ के नीचे न छुपें। जी हां, बिजली कड़कने पर कभी भी खुले मैदान में या पेड़ के नीचे शरण न लें। सुरक्षित आश्रय, पक्की छत वाले घर या वाहन के अंदर बैठना सबसे सुरक्षित होता है। चक्रवात या तूफान की हम बात करें तो खिड़कियां बंद रखें। तेज हवाएं चलने पर घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दें। यदि घर कमजोर है तो किसी पक्के सुरक्षित आश्रय स्थल में चले जाएं। बिजली के उपकरणों से दूर रहें। तूफान के दौरान बिजली के तारों और उपकरणों को बंद कर दें। क्षति की जांच, आपदा थमने के बाद अपने घर की दीवारों और छतों में आई दरारों को देखें। क्षतिग्रस्त मकानों में बिल्कुल न जाएं। बिजली और गैस, अगर घर में गैस की महक आ रही हो तो कोई स्पार्किंग, पानी का रिसाव दिख रहा हो तो मुख्य स्विच और गैस वाल्व तुरंत बंद कर दें। ये सब आपदा की बाद की सावधानियां हैं। अफवाहों से बचें। केवल आधिकारिक और प्रमाणित सरकारी संदेशों पर ही विश्वास करें। आपदाएं प्राकृतिक या मानवकृत दोनों प्रकार की हो सकती हैं, परंतु हर समय संकट आपदा भी नहीं होती। आपदाओं और विशेषकर प्राकृतिक आपदाओं पर नियंत्रण मुश्किल है। इसका बेहतर उपाय इनके निवारण की तैयारियां करना है। इसलिए इनकी हमेशा तैयारी रखें। आपदा से पहले आपदा के बारे में आंकड़े और सूचना एकत्र करना, आपदा संभावी क्षेत्रों का मानचित्र तैयार करना और लोगों को इसके बारे में जानकारी देना, इसके अलावा संभावित क्षेत्रों में आपदा योजना बनाना, तैयारियां रखना और बचाव का उपाय करना, ये था आपदा से पहले और आपदा के समय युद्ध स्तर पर बचाव और राहत कार्य, जैसे आपदाग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को निकालना, आश्रय स्थल निर्माण, राहत कैंप, जल, भोजन और दवाई की आपूर्ति। आपदा के पश्चात की अगर हम बात करें तो प्रभावित लोगों का बचाव और पुनर्वास, भविष्य में आपदाओं से निपटने के लिए क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना। भारत जैसे देश में जहां 2/3 क्षेत्र और जनसंख्या आपदा सुबेत है, इन उपायों का विशेष महत्व है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना इस दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाए गए सकारात्मक कदम का ये उदाहरण है।

बादशाह फिल्म का गीत अभी आपने सुना। अलका याग्निक और अभिजीत की आवाजों में गीत समीर का था और संगीत अनु मलिक का। कार्यक्रम में आइए अब सुने सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति को। फिल्म का नाम है दीवानगी।

और लीजिए अब कार्यक्रम के अंत में सुनिए सोनू निगम को, फिल्म का नाम नाजायज, गीत राहत इंदौरी का और संगीत अनु मलिक का।

यो श्रोता भी यो वाणी कार्यक्रम सुन रहे थे मीडिया 5 326.7 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। अब से कुछ ही देर बाद 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सराय की। हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे 6:30 पर। जिले की चिट्ठी 6:40 पर। 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे, जिसे हम अपने जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे। चौपाल में आज आप सुनेंगे 7 बजे विभिन्न विषयों पर जानकारी, सामाजिक सद्भाव में कमी के कारण, गर्मियों के दिनों में पशुओं व मुर्गियों की देखभाल, माइड भाषा का मान सम्मान कैसे बढ़ाएं। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे कृषि संबंधी जानकारियों के अलावा लोकगीत और लोक भजन। फिल्म संगीत सुनिएगा 7:45 पर एक ही फिल्म से। ये कार्यक्रम होगा रात 8 बजे। स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:30 पर, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। खेल जगत आप सुनेंगे रात 10 बजे। ये कार्यक्रम हम अपने जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे। फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात 10:30 पर। पब्लिक स्पीक ये कार्यक्रम होगा रात 10 बजे। क्षमा करें, कृपया इसे पुनः सुन लें। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:30 पर, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।

मीडियम वेव 326.0 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रही हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सिराई की।

ऑल इंडिया रेडियो दी विदेश प्रसारण सेवा दा सिराइकी प्रोग्राम है। मैं हरजीत कौर तुहाडे कीते अज दा प्रोग्राम घेन के हाजिर हाँ, कुछ बाता कुछ गीत। अज असा तुहाडे नाल बहु गल्लां भी करेनियां हन ते बहु वधिया गीत भी तुहाकू सुनवेंदे हाँ। सुनन आलियो, दुनिया विच एक बहु प्यारा रिश्ता है पिता पुत्र दा। जड़न घर विच पुत्र पैदा होंदा है ता माता पिता बहु खुशियां पाए मनावदे हन, वला उसको पाल पोस के वड्डा करेंदे हन। वला ओ भावे परदेसां विच वेंदे वसेंदे जां मां प्यो को ना पुछेंदे हन, पर मां प्यो पुत्र को किवें भूल जावन, इसे भाव को दर्शेंदा मैं तुहाकू एक गीत सुनवेंदी पई हां। गावन वाले हन AS कंग।

तुहाको पसंद आया होसी। कलाकार हन A.S. कंग। सराय की भैणों भरावो, जिंदगी विच कई रिश्ते इहो जहे होंदे हिन जिन्हां दा कोई ना ही नहीं। पंजाबी दा एक ड्रामा है रिश्तियां दा की रखिए ना। असल विच जड़न किसी नाल प्यार थींदा है ना, ता समझ ही कोने आंदा कि ये रिश्ते की वण वंजन। छुहेर सचेंदी है कि उस दा प्यार बस उस नाल थी गया, प्यार कीता नहीं वेंदा, वो उसको बहु प्यार करेंदी है, पर ये समझ को नहीं आंदा कि उसको के कह के बुलावे। इसको देते हुए मेको एक बहु प्यारा गीत चेते आंदा पिया है कि कह के बुलावा तैनू के तू मेरा की लगना। गावन विच बहु कलाकारी नाल पेश कीता है सर्वजीत ने। चस घिनो इस गीत दी।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सराय की मीडियम वेव 326.72 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी सूरतकार की एक कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में छबस कर 30 मिनट पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, छबस कर 40 मिनट पर जिले की चिट्ठी, छबस कर 45 मिनट पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे जिसे हम अपने जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और नॉर्वे को बातचीत के जरिए शांति प्रयासों का समर्थन करने वाला बताया। केंद्रीय वाणिज्य

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और नॉर्वे को बातचीत के जरिए शांति प्रयासों का समर्थन करने वाला बताया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, इस साल देश का कुल निर्यात 863 अरब डॉलर तक पहुंचा। राज्य में भीषण गर्मी का दौर जारी, आयुष मंत्रालय ने हेल्थ एडवाइजरी जारी की। और विश्व संग्रहालय दिवस पर प्रदेश भर में विभिन्न आयोजन।

0: समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे हमेशा से बातचीत और कूटनीति के जरिए शांति प्रयासों के समर्थक रहे हैं। श्री मोदी ने आज नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनस गाहर स्टोरे के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। दोनों देशों की ओर से जारी एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कहा गया कि यूक्रेन और पश्चिमी एशिया सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के बीच सैन्य कार्रवाई किसी भी समस्या का समाधान नहीं है।
1: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
0: वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच पर्यावरण और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए इसरो और नॉर्वे स्पेस एजेंसी के बीच एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को समाप्त करने की साझा प्रतिबद्धता जताई। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था और निर्यात में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। श्री गोयल ने कहा कि इस साल देश का कुल निर्यात लगभग 863 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो पिछले साल की तुलना में करीब 5% अधिक है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए भारत ने सामूहिक रूप से $1 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय मंत्री ने विश्वास जताया कि देश का व्यापारिक समुदाय वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी मजबूती से आगे बढ़ रहा है।
2: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है, पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
0: कोटा के जेके लोन अस्पताल में प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने और मौत के मामले में चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि इस मामले में शुरुआती तौर पर उपकरणों में संक्रमण या दवाइयों में गड़बड़ी की आशंका है। श्री खींवसर ने आज जयपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि चिकित्सा उपकरणों और दवाओं के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट 23 मई तक आने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि एम्स की टीम ने भी अस्पताल का दौरा कर जानकारी ली है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि इस अस्पताल पर आमजन का भरोसा है और प्राथमिक जाँच के आधार पर शुरुआती कदम उठाए गए हैं।
3: जो मेरा जो सोचना है कि इतनी जल्दी उनकी 8 घंटे 7 घंटे में गंभीर हालत होना और उसके 6-7 घंटे में डेथ होने का मतलब है कि कुछ चीज ब्लड स्ट्रीम के अंदर गई है। अब उसमें ये भी हो सकता है कि इंजेक्टेबल तो दवाई भी की गोली से भी ऐसा रिएक्शन नहीं होता है। अब इसके अंदर ये भी हो सकता है आईवी फ्लूइड जैसे मान लो है अच्छी कंपनी का सब कुछ सही है, स्टोरेज उसकी सही नहीं हो, दैट कुड बी वन रीजन इसका।
0: राजस्थान विधानसभा की स्थापना के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में आज विधानसभा के नए

0: प्रतीक चिन्ह का विमोचन किया गया। विधानसभा परिसर में आयोजित विशेष समारोह में राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने इस नए लोगो का लॉन्च किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि यह लोगो राजस्थान के जनमानस की सोच का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने बताया कि इस प्रतीक चिन्ह में राज्य पुष्प रोहिड़ा, खेजड़ी वृक्ष और विधान भवन की छवियों को शामिल किया गया है, जो प्रदेश की सांस्कृतिक जीवंतता को दर्शाता है। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि आज विधानसभा के चारों ऐतिहासिक द्वारों के नामकरण की पट्टिकाओं का भी अनावरण किया गया। इन प्रवेश द्वारों को राजस्थानी संस्कृति के अनुरूप नए नाम दिए गए हैं।
1: चौरे द्वार और तीसरा है सुशासन द्वार और चौथा है कर्तव्य द्वार। ये अध्यक्ष आने वाला शक्ति द्वार, जहाँ पे विधायिका की असली शक्ति जनता है, जहाँ से जनता आती है उसको हमने शक्ति द्वार रखा है, और जहाँ से अधिकारी आते हैं वो संकल्प द्वार, ताकि उनके कार्यकाल का जनता को राहत देने का संकल्प करें, और जहाँ से माननीय विधायक आते हैं उनको सुशासन द्वार रखा है, और जहाँ से विशिष्ट व्यक्ति आते हैं वो शौर्य द्वार। इस प्रकार पांच द्वारे जो अंदर है उसका नाम हमने उसको रखा है।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पिछले 24 घंटों के दौरान 5 स्थानों पर छापेमारी की है। इस कार्रवाई में जांच एजेंसी ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। सीबीआई की जांच में परीक्षा से पहले लीक हुए रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रश्न पत्रों के मुख्य स्रोत का भी पता चल गया है। एजेंसी ने इस मामले में महाराष्ट्र के लातूर से आरसीसी कोचिंग संस्थान के संचालक प्रोफेसर शिवराज मोंटेगांवकर को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक जयपुर, दिल्ली और लातूर सहित देश के विभिन्न हिस्सों से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गौरतलब है कि इस महीने की 3 तारीख को हुई ये परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पर जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश भर से आए आम लोगों की समस्याओं को सुना और अनेक मामलों पर मौके पर ही निस्तारण किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जनसुनवाई में आए सभी मामलों के निस्तारण की नियमित रूप से मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि सरकार अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में भीषण गर्मी का दौर बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के 19 जिलों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। चित्तौड़गढ़ और पिलानी 46.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ सबसे गर्म स्थान रहे। तेज गर्मी के कारण आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आगामी एक सप्ताह तक राज्य के अधिकांश भागों में मौसम पूरी तरह गर्म बना रहेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों और दक्षिण पूर्वी इलाकों में कहीं कहीं हीटवेव की आशंका है।
2: अगले एक सप्ताह के दौरान राजस्थान के सभी भागों में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। वहीं आगामी दिनों में तेज धूल भरी हवाओं का प्रभाव भी राज्य के कुछ भागों में देखने को मिलेगा। इस दौरान विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग, वहीं शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में भी आगामी 4-5 दिन तेज हवाएं प्रभावी होंगी। तापमान की बात करें तो ज्यादातर इलाकों में फिलहाल तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पश्चिमी राजस्थान सीमावर्ती क्षेत्रों में होगा। वहीं ज्यादातर शेष जो पूर्वी राजस्थान के हिस्से हैं इनमें तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा।
0: आयुष मंत्रालय ने भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए आज एक हेल्थ एडवाइजरी जारी की है। इसमें बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और खुले में काम करने वाले मजदूरों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। एडवाइजरी में तापघात, चक्कर आने, तेज सिरदर्द और बेहोशी जैसे लक्षणों को मेडिकल इमरजेंसी माना गया है। ऐसी स्थिति होने पर तुरंत 108 या 102 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने की सलाह दी गई है। लू से बचाव के लिए मंत्रालय ने पर्याप्त पानी पीने और धूप से

बचने को कहा है। इसके साथ ही शरीर को ठंडा रखने के लिए छाछ, नारियल पानी, नींबू पानी, तरबूज और खीरे जैसे पारंपरिक चीजों के सेवन की सिफारिश की गई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में डेढ़ महीने की नहरबंदी के बाद आज 10,800 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। सिंचाई विभाग के अनुसार 1 अप्रैल को नहरबंदी लागू की गई थी। इस दौरान नहर की सिल्ट सफाई, टूटी पटड़ियों की मरम्मत, रेगुलेटरों के रखरखाव और अन्य तकनीकी काम किए गए। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अगले 48 घंटों में यह पानी टेल क्षेत्र तक पहुंच जाएगा। इससे सूरतगढ़, रावला, घड़साना और अनूपगढ़ क्षेत्र के हजारों किसानों को खरीफ की फसलों की बुआई के लिए पानी मिल सकेगा। ऐसे में अब किसान नरमा, ग्वार और अन्य फसलों की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं नागौर और डीडवाना कुचामन जिले में नहरबंदी का अंतिम चरण चल रहा है। एक सप्ताह तक नहरबंदी के प्रभाव से पेयजल आवक में कमी को देखते हुए स्थानीय भूजल स्रोतों से पीने के पानी की सुचारू व्यवस्था की जा रही है। विश्व संग्रहालय दिवस के अवसर पर आज प्रदेश भर के राजकीय संग्रहालयों, स्मारकों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर और अजमेर सहित विभिन्न स्थानों पर पर्यटकों का तिलक लगाकर और पुष्प वर्षा कर पारंपरिक स्वागत किया जा रहा है। इस मौके पर देशी विदेशी पर्यटकों और आम जन के लिए सभी संग्रहालयों और स्मारकों में प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। इधर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर के अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि संग्रहालयों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़कर पर्यटन को और अधिक बढ़ावा दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और पर्यटन के लिए लगातार काम कर रही है। जैसलमेर के दिथार हेरिटेज म्यूजियम और पाली के राजकीय बांगड़ म्यूजियम में भी आज सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण विषय पर विचार संगोष्ठियां रखी गई। इन संगोष्ठियों का उद्देश्य विद्यार्थियों और युवाओं में इतिहास और संग्रहालयों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और नॉर्वे को बातचीत के जरिए शांति प्रयासों का समर्थन करने वाला बताया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, इस साल देश का कुल निर्यात 863 अरब डॉलर तक पहुंचा। राज्य में भीषण गर्मी का दौर जारी, आयुष मंत्रालय ने हेल्थ एडवाइजरी जारी की। और विश्व संग्रहालय दिवस पर प्रदेश भर में विभिन्न आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से बूंदी जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। बूंदी जिले की चिट्ठी में हम आप तक पहुंचाएंगे प्रशासनिक, सामाजिक गतिविधियों और स्थानीय आयोजनों से जुड़ी खबरें। चिट्ठी में बात करेंगे ग्राम रथ अभियान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, लू और तापघात से बचाव के लिए किए जा रहे उपायों और जनगणना 2027 की। साथ ही होंगे और भी कई समाचार। चिट्ठी में सबसे पहले बात पीएम सूर्यघर योजना से ऊर्जा आत्मनिर्भर बनते बूंदी की। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जिले में जन आंदोलन का रूप लेती जा रही है। 15 फरवरी 2024 से शुरू हुई इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत लोगों के घरों की छतों पर सोलर पैनल स्थापित किए जाते हैं और उन्हें 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाती है। जिले में अब तक 1,134 घरों पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। इससे रोजाना 23,667 यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जो ऊर्जा आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में बड़ा कदम है। साथ ही 1,000 से अधिक उपभोक्ताओं को अब तक 8 करोड़ 5 लाख से अधिक की सब्सिडी केंद्र सरकार की ओर से दी जा चुकी है। ये योजना बिजली उत्पादन और ऊर्जा आत्मनिर्भरता के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक बचत की दिशा में भी मील का पत्थर साबित हो रही है। चिट्ठी में अब बात अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन अभियान की। जिले भर में आयुर्वेद विभाग और प्रशासन की ओर से योग जागरूकता गतिविधियां चलाई जा रही हैं। आयुर्वेद विभाग के पीएमओ और पंच कर्म विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुशवाहा के निर्देशन में बूंदी और सथूर में हाल ही में योग कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुए इस कार्यक्रम में योग सत्र रखे गए। इनमें विद्यार्थियों को विभिन्न योगाभ्यास करवाए गए। योग

0: गुरु दीपक गुर्जर ने बताया कि योग केवल शारीरिक क्रिया नहीं है बल्कि ये जीवन शैली को सकारात्मक दिशा देने वाली भारतीय पद्धति है। जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में बीते दिनों ग्राम रथ अभियान की धूम रही। अभियान के तहत एलईडी वैन के जरिए ग्रामीणों को जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही स्थानीय लोक कलाकारों ने रोचक अंदाज में प्रस्तुतियां देकर लोगों को योजनाओं के फायदों और आवेदन प्रक्रिया को सरल भाषा में समझाया। इस पहल से ग्रामीणों में जागरूकता बढ़ी है। एलईडी वैन के माध्यम से 13 विभागों की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया गया। साथ ही संध्या चौपाल का भी आयोजन हुआ। जनगणना 2027 की प्रक्रिया के तहत 1 मई से स्वगणना की शुरुआत हुई। इस मौके पर स्वगणना प्रपत्र भरने के बाद जिला कलेक्टर ने लोगों से इस महाअभियान में बढ़ चढ़कर भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। अब 16 मई से प्रगणक घर घर जाकर आंकड़े जुटा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मौके पर बूंदी में जागरूकता कार्यक्रम हुआ। श्रम विभाग और विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ये कार्यक्रम रखा गया। इसमें शहर के विभिन्न चौखटियों पर जाकर श्रमिकों से बातचीत की गई और उन्हें श्रमिक अधिकारों तथा सरकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। जिला श्रम कल्याण अधिकारी अंकिता महर्षि ने श्रमिकों को पंजीयन प्रक्रिया के बारे में बताया। साथ ही ई श्रम पंजीयन और प्रधानमंत्री मानधन योजना के फायदों से भी अवगत कराया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से श्रमिकों को श्रम कानूनों की जानकारी दी गई। साथ ही अधिकारों के हनन होने पर कानूनी मदद लेने के तरीकों के बारे में भी बताया गया। जिले के हर कोने में हस्तलिखित ग्रंथों की खोज के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिले में समृद्ध प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण और सर्वेक्षण से जुड़े ज्ञान भारतम मिशन का काम शुरू हो गया है। इसके लिए डॉक्टर अनिता यादव को नोडल अधिकारी बनाया गया है। डॉक्टर यादव ने जिले के इतिहासकारों, शोधकर्ताओं और पुस्तकालय संचालकों से अपील की है कि वे पुराने हस्तलिखित ग्रंथों की जानकारी प्रशासन से साझा करें। उन्होंने बताया कि पांडुलिपि की जानकारी मिलने पर प्रशासन की ओर से नियुक्त सर्वेयर संबंधित स्थान पर जाकर पूरा विवरण प्राप्त करेंगे। इस ब्यौरे को ज्ञान भारतम मिशन के ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के मौके पर बूंदी में विशेष कार्यक्रम रखा गया। माय भारत केंद्र पर हुए इस कार्यक्रम में युवाओं को नई तकनीक के साथ सामंजस्य रखते हुए काम करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके साथ ही बूंदी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और नॉर्वे ने बातचीत रे जरिए शांति री कोशिशां री हिमायत करण वाला बताया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कहो भारत रा सामान री दिसावर माय बिक्री 863 अरब डॉलर ताई पूगी। राज्य माय जबरदस्त गर्मी रो दौर, आयुष मंत्रालय हेल्थ एडवाइजरी जारी कीनी। और विश्व संग्रहालय दिवस रे मौके आज प्रदेश भर में न्यारा न्यारा कार्यक्रम राखी चिया। समाचारों सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि भारत और नॉर्वे हमेशा बातचीत और कूटनीति रे जरिए शांति री कोशिशां री हिमायत कीनी है। श्री मोदी आज नॉर्वे रा प्रधानमंत्री जोनस गहर स्टोरे सागे खबरनवीसा सागे बातचीत कर रहा है। दोनों देशों री ओर जारी भेड़ा प्रेस बयान में कही जियो कि यूक्रेन और आतुनी एशिया समेत दुनिया रा न्यारा न्यारा हलका में चल रहा झगड़ा टंटा बीच है, फौजी कार्रवाई किनी समस्या रो हल नहीं है।
2: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
1: बातचीत रे दौरान दोनों देशों बीच पर्यावरण और साफ ऊर्जा हलका माय ग्रीन स्ट्रेटजिक भागीदारी ने आगे बढ़ावण माथे ही सहमति बनी। इन्हें तेत अंतरिक्ष हलका माय मदद सारू इसरो और नॉर्वे स्पेस एजेंसी बीच एक करार

0: वह बतायो कि इन दौरान सरहदी हलका और लंकाऊ उगनी हलका माए कठे कठे लू बाजण रे शंका है।
1: अगले एक सप्ताह के दौरान राजस्थान के सभी भागों में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। वहीं आगामी दिनों में तेज धूल भरी हवाओं का प्रभाव भी राज्य के कुछ भागों में देखने को मिलेगा। इस दौरान विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर बीकानेर संभाग, वहीं शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में भी आगामी 4-5 दिन तेज हवाएं प्रभावी होंगी। तापमान की बात करें तो ज्यादातर इलाकों में फिलहाल तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पश्चिमी राजस्थान सीमावर्ती क्षेत्रों में होगा। वहीं ज्यादातर शेष जो पूर्वी राजस्थान के हिस्से हैं इनमें तापमान 42।
0: इबीच आयुष मंत्रालय जोरदार गर्मी और लू रा कोप न ध्यान रखता थका हेल्थ एडवाइजरी जारी कीनी है। इनमाए बच्चा बुजुर्गा आस वाली लुगाइया और खुला माए काम करने वाला मजूरा ने खास तौर सावचेती रखने बाबत कही जियो है। एडवाइजरी माए चक्कर आवण, माथा माए जोरदार दर्द वेवण और बेहोशी वेवण री सूरत माए तुरंत 108 या 102 हेल्पलाइन माथे संपर्क करने री राय दी जी है। ईसा गई लू बचाव सारू बराबर पानी पीवन और तावड़ा बचबारी राय दी रीजी है। ईसा गई शरीर न ठंडो राखण सारू छाछ, नारियल रो पानी, नींबू री शिकंजी, तरबूज और खीरा सरीखी चीजा काम लेवन बाबती कही चियो है। आज विश्व संग्रहालय दिवस मनाई चियो। ई मौके प्रदेश भर रा सरकारी संग्रहालय और स्मारका माए न्यारा न्यारा कार्यक्रम राखी चिया। जयपुर और अजमेर समेत न्यारी न्यारी ठोड़ा सैलानिया रो तिलक लगार और फूलान री बारिश कर और स्वागत करी चियो। ई मौके देसी परदेसी सैलानिया और जनता ने सगला संग्रहालय और स्मारका माए मुफ्त प्रवेश दियो चियो। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जयपुर रा अल्बर्ट हॉल म्यूजियम माए लगाई जी प्रदर्शनी ने निरखी। ये मौके वे कहो कि संग्रहालय माए नुआ सुविधा मुहैया करार सैर सपाटा ने बधावो दियो जा सके है। वे कहो कि राज्य सरकार सांस्कृतिक विरासत ने बचावन और सैर सपाटा ने बधावो देवन सारू लगातार काम कर रही है।
2: सभी से यही निवेदन करूंगी आज वर्ल्ड म्यूजियम डे पर कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने जितने भी हमारे ऐतिहासिक ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं, साइट्स हैं, हमारा हेरिटेज है, इसको जाके देखें और सोशल मीडिया में भी पोस्ट करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक भी विजिट करें उन जगहों को और इनको समझें, इनको जानें। ये हमारा इतिहास है, हमारा कल्चर है, हमारा हेरिटेज है, ये बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। इसको जानना, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो यही मैसेज सबको देना चाहूंगी कि ये आज के दिन भी करें और लगातार इस चीज को करें।
0: जैसलमेर रा दिथार हेरिटेज म्यूजियम और पाली रा सरकारी बांगड़ म्यूजियम माए सांस्कृतिक धरोहरा ने बचावन रा मुद्दा माथे विचार गोष्ठियां राखी ची। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जयपुर माए वारा रहवास माथा जनसुनवाई कीनी व जनतारी समस्यावां सुन और कई परेशानियां रो मौके निपटारो करायो। ये मौके वे कहो कि सरकार समाज रा हर एक पात्र जना ताई सरकारी योजनावां रो फायदो पुगावणो तय कीनो है। इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं जुड़ी नहरा माए 1.5 महीना पाछे आज 10,800 क्यूसेक पानी छोड़ी जियो, जो आवता 48 घंटा माए नहर रा आखरी हलका ताई पूग जावेला। इनु सूरतगढ़, रावला, घड़साना और अनूपगढ़ हलका रा किसाना ने साखा री बुआई सारू पानी मिल सकेला। सिंचाई विभाग रे मुजब 1 अप्रैल नु लागू करी जी नहरबंदी रे दौरान नहर री सिल्ट सफाई, टूटी पटड़ियां री मरम्मत, रेगुलेटरां रा रख रखाव और दूजा जरूरी काम करी चिया। दूजिकानी नागौर और डीडवाना कुचामन जिला माए नहरबंदी रो आखिरी दौर चाल रियो है, जो 1 सप्ताह ताई चालेला। आखिर माए खास समाचार एक कर फेरु सुन ली रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और नॉर्वे ने बातचीत रे जरिए शांति री कोशिशां री हिमायत करण वाला बताया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कहो भारत रा सामान री दिसावर माए बिक्री 863 अरब डॉलर ताई पूगी। राज्य माए जबरदस्त गर्मी रो दौर, आयुष मंत्रालय हेल्थ एडवाइजरी जारी कीनी। और विश्व संग्रहालय दिवस रे मौके आज प्रदेश भर माए न्यारा न्यारा कार्यक्रम राखी चिया। इसागे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 326.79 मीटर।

अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 7 बज चुके हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम चौपाल।

कार्यक्रम सुनने आ सगला परिवार ने वेद भाई की घनी घनी राम राम, मोकली मोकली राम राम। भाई आज आपां बात करा अपने समाज में बढ़ती एक गंभीर समस्या के बारे में, यानी कि सामाजिक सद्भाव में कमी के बारे में। भाई वो सामाजिक सद्भाव जो को है वो किसी देश और समाज की सारों बड़ी ताकत हुए, और आ लोगों के बीच में प्रेम, भाईचारा, सहयोग और आपसी सम्मान की भावना न की है कि वो दर्शावे। पर क्या है कि आज के टाइम में आज की भावना है पर धीरे धीरे कमज़ोर होती दिखाई देने लग रही है। पहले आप देखता कि सारा मोहल्ला कट्ठा हो गए त्यौहार मनाता, पर अब आपने यह बातें की एक कमी देखने मिले, और अपने समाज में जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधार पर भेदभाव जो है वो बढ़तो ही आपने देखने लग रहा है, और छोटी छोटी बातों पर विवाद और तनाव पैदा होने लग रहा है, और जो कि सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाह है और गलत सूचनाएं भी लोगों के बीच में किए कि नफरत बढ़ाने को काम जो को है वो करने लग रही है। और विशेषज्ञों को मानना है कि अशिक्षा, बेरोजगारी, आर्थिक समानता, राजनीतिक स्वार्थ, ऐसा तत्व है, ऐसा सामाजिक सद्भाव में कमी का कारण बन लग रहा है। और लोग जो है अब एक दूसरे की भावना और संस्कृतियों को सम्मान कम करने लग गया, जो कहूँ किएगा अपने बीच की जो की दूरियाँ हैं वह बढ़ने लग रही है। पर क्या है कि कई सामाजिक संगठन और युवा जो का है वह भाईचारा और एकता को संदेश फैलाने को प्रयास भी करे, स्कूल कॉलेजों में भी नैतिक शिक्षा और सामाजिक मूल्यों पर किए गए जोर दी जाए, पर जो की स्थिति है वह पूरी तरह निराशाजनक को नहीं। देश में जो का सामाजिक संस्था है वह लोगों के बीच में प्रेम, शांति और एकता को संदेश फैलाने वाला काम करे, और न्या न्यारा समुदाय का लोग मिल गए सांस्कृतिक कार्यक्रम, रक्तदान शिविर, सामाजिक कार्य में भाग लेने लग रहे हैं, जिसका सकारात्मक किए के संदेश है। और विशेषज्ञ बांगो कहना है कि सामाजिक सद्भाव बनाए रखने खातर अपन ने सारा धर्मों और संस्कृतियों को सम्मान करना चाहिए, और अफवाह और गलत सूचनाओं अपन बचना चाहिए, शिक्षा और नैतिक मूल्यों ने किए के बढ़ावा देना चाहिए, और समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित अपन करना चाहिए, और युवा ने भाईचारा, राष्ट्रीय एकता को संदेश अपन देना चाहिए। और भाइयों, सामाजिक सद्भाव किसी भी राष्ट्र की सारों बड़ी ताकत हुए, जे समाज में प्रेम, सहयोग और विश्वास बने रहेगा जद ही देश प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ सकेगा। इन खातर अपनों सारांगो कर्तव्य है कि आपसी मतभेद भुला गए, एकता और भाईचारा की आपा मजबूत करा। तो भाइयों, बात चीत आपा और कर सियाँ, पर अब टेम है एक लोक भजन सुनन गो, तो थाना सुनावा सुभाष कटारिया को गायडो ओ लोक भजन।

भाइयों आप सुने ओ लोक भजन, और अब टेम है थाने सुनाण को एक भेंट वार्ता। नरमा कपास की फसल में गुलाबी लट और रस चूसन वाला कीड़ाओं बचाव, और वार्ताकार उमेश कुमार हूँ, वेद प्रकाश वर्मा की बातचीत।

0: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री उमेश कुमार। आप विषय विशेषज्ञ हैं पोल संरक्षण में कृषि विज्ञान केंद्र संगरिया में। आज आपसे जानेंगे नरमा कपास की फसल में गुलाबी लट और रस चूसने वाले कीड़ों के बारे में। तो उमेश कुमार जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: उमेश कुमार जी। हम आपसे जानना चाहते हैं कि नरमा कपास की फसल में गुलाबी लट और रस चूसने वाले कीड़े क्या होते हैं और ये फसल को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं।
1: नरमा कपास की फसल में लगभग 1150 प्रकार के कीटों का प्रकोप देखा गया है, जिसमें से इस क्षेत्र में विशेष तौर से जो पिछले 4-5 साल में प्रकोप देखा जाता है उसमें रस चूसने वाले कीड़े जैसे सफेद मक्खी, थ्रिप्स, हरा तेला ये मुख्य हैं, और इसके अलावा गुलाबी लट का भी प्रकोप देखने में मिला है। तो ये कीट एक बहुत ही अलग तरह का कीट है, जिसमें गुलाबी लट की क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा। गुलाबी लट एक लेपिडोप्टेरा वर्ग का कीट है, जिसमें विशेष तौर से ये मोनोफेगस पेस्ट है। मोनोफेगस पेस्ट वो होता है जो केवल और केवल नरमे और कपास की फसल को ही नुकसान पहुंचाएगा, इसके अलावा दूसरी किसी भी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाता। और दूसरी इसकी गुलाबी लट की विशेषता है कि ये जब तक फसल में टिंडे और फूलगुडियां नहीं बनती हैं जब तक कोई नुकसान नहीं कर पाता, लेकिन इसका प्रकोप होने से पहले हमें जब फसल में नुकसान करे उससे पहले ही हमें नियंत्रण के उपाय करने चाहिए, ये भी हमें ध्यान में रखना है। जिसमें विशेष तौर से जैसे अब किसानों के पास जो बंसटियों के ढेर पड़े हैं उनको हमें ध्यान में रखते हुए सुरक्षित रखना है। इनको सबसे पहले हमें अच्छी तरह से झड़का के इसके जो टिंडे सिकरी पुराने लगे हुए हैं उनको झड़का के अलग निकाल लें और उनको या तो मिट्टी में दबाएं या उनको जला के ख़त्म करें, क्योंकि इसके गुलाबी लट के जो प्यूपा अवस्था है वो उसी में छुपी हुई है, और जैसे ही ये मार्च के बाद में धीरे धीरे निकलना प्यूपा से वयस्क निकलना चालू हो जाता है।
0: जी उमेश कुमार जी, तो आप ये बताएं कि गुलाबी लट के प्रकोप की जो अपने किसान भाई हैं वो शुरुआती पहचान कैसे करें।
1: गुलाबी लट के लिए इसका जो वयस्क है वो गहरे स्लेटी चमकीले रंग के सोने जैसे झाइयों युक्त होता है और ये बहुत ही फुर्तीला कीट है। ये अंडे हमेशा या तो फूलगुड्डी पर या टिंडे पर देता है। जब तक फूलगुड्डी और टिंडा नहीं बनता है फसल में तब तक ये नुकसान नहीं कर पाता, लेकिन अगर हम किसान भाई जैसे ये जो बंसटियों के ढेर पड़े हैं गांव में या खेतों में उनको एक साथ लोडर की सहायता से या झड़का के उल्ट देंगे तो वो इस तापमान के कारण से एक साथ वयस्क निकल जाएगा, और जब वयस्क निकलेगा और उसको खेत में जाने पर टिंडा या फूलगुड्डी नहीं दिखाई देगा तो वो अंडा नहीं दे पाएगा, और इस प्रकार से वो एक तरह से सुसाइडल इमरजेंस कहते हैं इसे, आत्मघाती उद्भव, जिससे ये अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहला तो उपाय किसान भाइयों को मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि इन बंसटियों के ढेर को पलटाई करें और साथ में इनको झाड़ के और जो सिकरी है उनको अलग निकाल के या तो मिट्टी में गहरी मिट्टी दबा दें या इनको जला के ख़त्म करें, जिससे आगे इसका फैलाव कम से कम हो।
0: जी उमेश कुमार जी, अब ये बताइए कि कौन से मौसम में और किन परिस्थितियों में यह कीट ज़्यादा फैलता है।
1: ये मुख्य रूप से जब बारिश का मौसम होता है, किसान भाई स्प्रे नहीं कर पाते हैं, उस अवस्थाओं में ज़्यादा नुकसान करने की संभावनाएं होती हैं, तो उस समय हमें स्प्रे का भी ध्यान रखना है। दूसरी, मैं किसान भाई जब बिजाई के बाद में पहला पानी लगाते हैं उस समय विलीकरण का विशेष तौर से ध्यान रखें, जैसे लाइन से लाइन की दूरी 3 फुट पर और पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर पर कम से कम होनी चाहिए। इससे अगर नज़दीक पौधा लगाएंगे तो पौधे आपस में ऐसे मिल जाएंगे कि उसमें स्प्रे भी सही तरीके से नहीं हो पाएगा।
0: जी उमेश कुमार जी, अब आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि गुलाबी लट से सबसे ज़्यादा नुकसान फसल के किस चरण में होता है।
1: जब फूलगुड़ियाँ और टिंडे बनते हैं उस समय विशेष तौर से जैसे अगस्त और सितंबर का महीना सबसे खतरनाक होता है गुलाबी लट का प्रकोप होने के लिए, लेकिन किसान भाइयों को मैं ये पुनः निवेदन करूंगा कि अभी से अगर ये बंसटियों का सही प्रबंधन कर लेंगे तो इसका फैलाव कम से कम होगा, और इसको जब खेत में पहली बात बंसटियों का प्रबंधन, दूसरा 45 से 50 दिन बाद में खेत में हमें फेरोमोन ट्रैप लगाने हैं, जिसमें 2 फेरोमोन ट्रैप प्रति बीघा के हिसाब से लगा के हमारे को ये ध्यान रखना है कि इस फेरोमोन ट्रैप में अगर आपको 5 से 8 नर व्यस्क

0: प्रति दिन लगातार 3 दिन तक आता है, तो उस समय स्प्रे करें। या जैसे रोजेट फूल बोलते हैं, इसका जो फूल है वो गुलाब के फूल की तरह प्रभावित में जहाँ अंडा दिया हुआ है गुलाबी लटका, वहाँ से फूल ऊपर से बंद हो जाता है और गुलाब के फूल की तरह बन जाता है। तो उस तरह के फूल हमें खेत में दिखाई देते हैं, तो हमें स्प्रे की ज़रूरत पड़ती है। और जब जैसे 10% फूल रोजेट फूल हमें खेत में दिखाई देते हैं उस समय, या तीसरा इसका जांच करने का तरीका है, खेत में से घूम के हमें 20 टिंडे इकट्ठे करने हैं रेंडमली, और उनमें से अगर 2 टिंडों में भी हमें लट दिखाई देती है तो स्प्रे की आवश्यकता होती है।
1: जी उमेश कुमार जी, अब आप ये बताइए कि इस कीट की रोकथाम के लिए खेत की तैयारी करते समय किसान भाइयों को क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए?
0: खेत की तैयारी करते समय हमें एक तो सबसे पहला काम तो है सरकार द्वारा अनुमोदित किस्मों का ही चयन करके बुआई करनी चाहिए। आज के दिन कई दूसरी किस्में भी आ जाती हैं जिनको सरकार के द्वारा सिफारिश नहीं की गई है, उन किस्मों के बजाय हमें अनुमोदित किस्मों का ही चुनाव करना चाहिए। दूसरा, जब शुरुआत की अवस्था में हमें 30 दिन के बाद में विशेष तौर से ये ध्यान रखना है कि खेत में फेरोमोन ट्रैप का साथ में, इसके अलावा जब भी हमारे फूल गुडियों को देखते हैं तो नुकसान दिखाई देता है, उसके बाद में शुरू के 60 दिन तक हमें नीम के तेल का 300 से 1500 PPM प्रति लीटर 5 ml पानी के हिसाब से इसको काम में लेना है, और साथ में 1 ग्राम आपका जो कपड़े धोने का पाउडर है उसको मिक्स करके अच्छी तरह से घोल बना के पहला स्प्रे किसान भाई रस चूसने वाले कीड़ों के लिए और साथ में इसके लिए भी पहला स्प्रे इसी का करें, न कि किसी रासायनिक दवा का करें।
1: उमेश कुमार जी, अब आप ये बताइए कि बीज का चयन और बुआई का सही समय ये गुलाबी लट के नियंत्रण में कितने महत्वपूर्ण होते हैं?
0: ये मैं बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। गुलाबी लट का प्रकोप को कम करने के लिए हमें 20 मई के बाद में नरमक की बुआई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लेट तक बुआई करेंगे तो एक तो रस चूसने वाले कीड़े बढ़ेंगे, साथ में हमारे खेत में लेट तक गुलाबी लट का प्रकोप बढ़ता रहेगा। तो सबसे पहला हमें 20 मई के बाद में बिजाई इस क्षेत्र में, विशेष तौर से गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में नहीं करनी चाहिए।
1: जी, क्या फसल चक्र अपनाने से गुलाबी लट का प्रकोप अपने कम कर सकते हैं?
0: हाँ, फसल चक्र से भी काफ़ी मात्रा में कम किया जा सकता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ये एक एकल फसली कीट है। एकल फसली कीट वो होता है जो मोनोफेगस पेस्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये केवल और केवल नरमे कपास की फसल को नुकसान पहुंचाता है। अगर हम दूसरी साल वहाँ नरमे कपास की बिजाई नहीं करते हैं तो उस क्षेत्र में वो कीड़े का प्रकोप नहीं होता है।
1: जी उमेश कुमार जी, आप अब ये बताइए कि जैविक तरीके से गुलाबी लट नियंत्रण के कौन-कौन से उपाय किसान भाई अपने जो हैं वो अपना सकते हैं?
0: जैविक तरीके में सबसे पहला तो जैसे मैंने बताया नीम तेल 300 से 1500 PPM के बीच में बाज़ार में आता है, इसकी 5 ml मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से और 1 ग्राम कपड़े धोने का पाउडर मिला के स्प्रे करना। दूसरा आता है इसके लिए एक कीट भी आता है, मित्र कीट भी आता है, जिसे ट्राइकोग्रामा बोलते हैं। इसका भी हम 60,000 प्रति बीघा के हिसाब से छोड़ के, और इससे भी काफ़ी हद तक इसके अंडों को नियंत्रित किया जा सकता है।
1: जी उमेश कुमार जी, आप ये बताइए कि लगातार एक ही दवा के प्रयोग से क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है?
0: ये भी आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है। किसान भाई कई बार क्या करते हैं कि जिस कीटनाशक दवा का हम प्रयोग कर रहे हैं और अगर उसको अब उसको किसान को लगता है कि अच्छा रिजल्ट मिला है, तो किसान क्या करता है, उसी दवा का प्रयोग दोबारा करता है या तीसरी बार भी वो ही करता है। तो उससे क्या होता है, इस कीड़े में एक रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो जाता है और धीरे धीरे इस उस कीटनाशक का इस कीड़े के प्रति प्रभाव कम होता जाता है। तो ये हमें किसान भाइयों को कभी भी नहीं करना चाहिए कि फसल में एक बार किसी कीटनाशक का प्रयोग करने के बाद में दोबारा उसको रिपीट नहीं करना चाहिए, जिससे हमारा ये लंबे समय तक कीटनाशकों का प्रभाव कीड़ों पर कायम रह सके।
1: जी, अब आप हमें ये बताइए कि किसान भाई दवा छिड़काव करते समय कौन कौन सी सुरक्षा सावधानियों को अपनाए?
0: सबसे पहले तो दवा का छिड़काव करते समय किसान भाइयों को खुद की सुरक्षा के लिए मास्क, चश्मे, ग्लव्स और एप्रेन वगैरह

0: पहन के अपना बचाव करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर पर इतना नुकसान कर देते हैं, जलन पैदा कर देते हैं, दूसरे रोग पैदा कर देते हैं, श्वास की समस्या पैदा कर देते हैं। तो ये खुद की सुरक्षा के लिए, दूसरा दोपहर में कभी भी कीटनाशक का छिड़काव नहीं करना चाहिए सुबह शाम। इसके अलावा कीटनाशक का छिड़काव करते समय हमारे जितना महंगा कीटनाशक बाज़ार से लाते हैं उतना ही इम्पोर्टेंट है उसका छिड़काव का। अगर हम छिड़काव में अगर लापरवाही करते हैं तो हमारे कीटनाशक का सही रिजल्ट भी नहीं मिल पाता। इसके लिए हमें अच्छी तरह से जो यंत्र है, जैसे स्प्रे पंप है, उसको नोजल सही रखनी चाहिए, बारीक फुहारा बनना चाहिए। इसके साथ साथ विशेष तौर से एक स्पीड भी बराबर रखनी चाहिए, ये नहीं हो कि कहीं ज़्यादा स्प्रे हो गया, कहीं कम पानी गिरा है। और तीसरी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम किसान भाई को देखते हैं कि कई किसान भाई ट्यूबवेल का पानी काम में लेते हैं, और जिसकी ईसी 4 से लेके 10 तक होती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, तो उस तरह का पानी हमें कभी भी काम में नहीं लेना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नहर का पानी का ही उपयोग करें।
1: जी उमेश कुमार जी, अब आप हमें ये बताएं कि गुलाबी लट से प्रभावित टिंडों की पहचान किसान भाई कैसे करे, और क्या खेत में गिरी हुई कपास या टिंडों को हटाना ज़रूरी है? और साथ में आप ये भी बताएं कि इस वर्ष गुलाबी लट के प्रकोप की स्थिति कैसे देखने को मिल रही है?
0: अभी जो हमने देखा है, सबसे पहला कि जहाँ बनसट्टियों के ढेर हैं वहाँ फेरामोन ट्रैप लगा के देखे गए हैं, जिसमें इसके वयस्क निकल के और नर वयस्क इकट्ठे हो रहे हैं, तो प्रकोप तो होगा। लेकिन किसान भाई अगर समय पर इसके सलाह मान के और इन बनसट्टियों के ढेर का सही नियंत्रण कर लेता है तो ये काफ़ी हद तक बच सकता है। दूसरा, गुलाबी लट के टिंडों की पहचान, प्रभावित टिंडों की पहचान के लिए अगर हम टिंडे को अंदर से काट के देखेंगे तो अंदर से गुलाबी लट मिलेगी, या गला हुआ मिलेगा, या बारीक, बहुत ही बारीक छेद उसके ऊपर दिखाई देगा, लेकिन वो बंद होगा। तो ये इसकी पहचान है। दूसरी, फूल को पहचानने के लिए हम अगर फूल को देखेंगे तो ऊपर से गुलाब के फूल की तरह अलग ही आपको खेत में पहचान होगी, जिसे रोजेट फ्लावर के नाम से जाना जाता है।
1: जी उमेश कुमार जी, अब आप हमारे किसानों को ये बताइए कि कम खर्च में इस लट का प्रभावी नियंत्रण और इसके क्या उपाय हो सकते हैं?
0: कम खर्च में एक तो सही समय पर सही पेस्टिसाइड अगर हम करते हैं और खेत की निगरानी नियमित रूप से करेंगे, जैसे फिरामोन ट्रैप है आपका, ईटीएल का, आर्थिक नुकसान स्तर का ध्यान रखेंगे, तो उससे हम काफ़ी हद तक इस फसल को भी बचा सकते हैं और खर्चा भी कम होगा।
1: जी बिल्कुल उमेश कुमार जी, और अब आप ये बताएं कि सरकार और कृषि विभाग की ओर से किसान भाइयों को क्या सहायता या सलाह दी जा रही है?
0: सरकार के द्वारा किसानों को समय समय पर इसकी एडवाइजरी जारी की जा रही है, साथ में इस तरह के प्रोजेक्टों के माध्यम से, जैसे हनुमानगढ़ जिले और गंगानगर जिले में AI स्मार्ट ट्रैप, फेरामोन ट्रैप आई है आजकल, जिससे किसानों को सूचना दी जाएगी कि अब गुलाबी लट का प्रकोप बढ़ रहा है, अब घट रहा है, और ऑफ सीजन में भी, उसमें जब हमारे खेत में नरमा कपास नहीं था तो उसकी गुलाबी लट के वयस्कों की संख्या को ध्यान में रख के इस प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है।
1: जी उमेश कुमार जी, अब आप किसान भाइयों के लिए क्या संदेश आपका रहेगा कि वे नरमा कपास की फसल को सुरक्षित रख सकें?
0: किसान भाइयों को मेरा यही संदेश है कि एक तो स्प्रे करते समय सावधानियां रखें, दूसरा विशेष तौर से हमें समय पर खेतों का निरीक्षण करना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि जिससे हम काफ़ी हद तक हमारा खर्चा भी बचा सकते हैं और फसल भी अच्छी ले सकते हैं।
1: तो उमेश कुमार जी, आज आपने नरमा कपास की फसल में गुलाबी लट और रस चूसने वाले कीड़ों से फसल के बचाव के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: भाइयों, आप भेंट वार्ता सुनी, नरमा कपास की फसल में गुलाबी लट व रस चूसने वाले कीटों से बचाव। वार्ताकार हा उमेश कुमार और आऊं बात करी वेद प्रकाश वर्मा। तो भाइयों, अब टाइम है एक और लोक वजन सुन गो, तो थाना सुनावा मुखराम अर साथियांगो गायडो ओ लोक वजन।

किसान भाइयों, गर्मी का जो मौसम है वो अपना खातिर ही नहीं बल्कि पशु और पक्षियां खातिर भी किया गया बहुत ही कठिन हो जावे। और तेज़ धूप, गर्म हवा और बढ़ेड़ो तापमान जो को है वो पशुओं के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डाले। जय मौसम में सही देखभाल पशुओं ने नहीं करा।

किसान भाइयों, गर्मी का जो मौसम है वो अपना खातिर ही नहीं बल्कि पशु और पक्षियां खातिर भी किया गया बहुत ही कठिन हो जावे, और तेज़ धूप, गर्म हवा और बढ़ेड़ो तापमान जो को है वो पशुओं के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डाले। जई मौसम में सही देखभाल अपा पशुओं की नहीं करांगा तो पशुओं में कमजोरी, बीमारी, दूध उत्पादन में कमी, मुर्गियों में अंडा उत्पादन घटन वर्गी समस्या आने की संभावना किए के बनी रहे। गर्मियों के दिनों में किए के पशुओं ने सारों ज़्यादा जरूरी साफ पानी और संतुलित आहार और ठंडा वातावरण की जरूरत हो, और बढ़ती गर्मी के कारण किए किसान भाइयों पशुओं के शरीर में पानी की कमी हो जाए, जखों किए के वह जल्दी थक जाए और कई बार किए के वह बीमार भी पड़ जाए। और पशुपालक भाई जगह है बनना चाहिए कि भाई आपके पशुओं ने दिन में कई बार साफ और ठंडो पानी पियावे, और पशुओं के रहने वाली जगह यानी शेड में किए गए पर्याप्त छियाँ और हवा को प्रबंधन जो को है वो आपने रखना चाहिए, और जड़ते संभव हो सके शेड की छत पर घास फूस या टीन के ऊपर पानी को छिड़काव अपन करना चाहिए, जीव किए गए तापमान जो को है आप कम कर सका। और गर्मी के दिनों में पशुओं ने हीट स्ट्रोक, बुखार और डिहाइड्रेशन वर्गी समस्या आवे, और पशुओं ने दोपहर की तेज़ धूप को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। सागी बंग शरीर पर टेमो टेम पानी को छिड़काव करना भी किए के लाभदायक रहे। गर्मियों के दिनों में पशुओं के भोजन पर भी अपन विशेष ध्यान देना चाहिए, सूखे चारे की बजाय हरे चारों अपन ने ज़्यादा देना लाभदायक रहे, और पशुओं ने खनिज मिश्रण और नमक की सही मात्रा देनी चाहिए, जिकों किए के बंग शरीर में पोषक तत्वों की कमी ना हो पावे। और सागे भाइयों सुबह और शाम के टाइम पशुओं ने किए चारों देनों ज़्यादा सही रहे, क्योंकि इन टाइम तापमान कम हुए और पशु किए के आराम भोजन किए कर पावे। और अब बात करें किसान भाइयों सागे मुर्गी पालन की, तो गर्मियों में किए के मुर्गियों पर भी तापमान को गहरा प्रभाव पड़े, ज़्यादा गर्मी के कारण मुर्गियाँ तनाव में आ जाए और बंगी खाने की जी क्षमता है वह कम हो जाए और अंडा उत्पादन घटन लाग जाए। तो जगह अपना मुर्गी पालक भाई है बनना चाहिए कि वह मुर्गी रखने वाले स्थान में पर्याप्त हवा और रोशनी की व्यवस्था रखे, और मुर्गी रखने वाली जगह पर ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा भीड़ गर्मी और बढ़ जाए। साफ और ठंडो पानी हर टाइम अपना उपलब्ध रखना चाहिए, और गर्मियों के दिनों में मुर्गियों ने किया कि दिन में लेके शाम तक साफ भोजन देना चाहिए, और पानी में किए गए विटामिन और ग्लूकोज मिला के देणु मुर्गियों ने ऊर्जा मिले और वे सही रहे। और मुर्गी रखने वाली जगह पर टेमो टेम पानी को छिड़काव करना किया तापमान आप कम कर सका। बीमार मुर्गियों ने हाथों हाथी अपने न्यारी कर देनी चाहिए, जकों किया कि संक्रमण दूसरी मुर्गियों में नहीं फैले। सागी साफ सफाई को अपने किए गए विशेष ध्यान जो है वो रखना चाहिए। तो भाइयों पशु और पक्षी अपने किसान भाइयों की सारों बड़ी पूंजी हुए, और बाकी सही देखभाल न केवल उत्पादन बढ़ावे बल्कि पशुपालक भाइयों की आय में भी वृद्धि करे। गर्मियों में थोड़ी सी सावधानी और सही व्यवस्थाओं आप पशुओं और मुर्गियों के स्वास्थ्य ने आप सुरक्षित कर सका। तो किसान भाइयों बातचीत आप और कर सियाँ, पर अब टाइम है एक और लोक भजन सुनने को। तो थाना सुनावा सुहास कटारिया को गायडो ओ लोक भजन।

सगी स्कूल और सामाजिक कार्यक्रमों में भी किए गए मर्ड भाषा ने अपन स्थान देनो चाहिए। भाषण, कविता, लोकगीत, नाटक ए मर्ड भाषा में आयोजित किया जाना चाहिए, जो कि एक युवा पीढ़ी यूँ जुड़ सके। और आपा देखा कि आजकल सोशल मीडिया को दौर है जे युवा मर्ड भाषा में वीडियो, गीत, कहानियाँ और संदेश जे सोशल मीडिया पर साझा करे, तो आ भाषा दुनिया के हर कोने तई पहुँच सकेगी। और अपन वो समझना चाहिए कि किसी भाषा को सम्मान जद ही बढ़े जब आप खुद भी हूँ गर्व किए गए बिना बोलना। और कई जगह है अपना साथी है वह सोचे कि केवल अंग्रेजी और बड़ी भाषा बोलना ही आधुनिकता है, जबकि आपकी मातृभाषा हूँ प्रेम करनो तो आपने सारों बड़ी पहचान है। गांव की चौपाल हुए, पारिवारिक समारोह हुए, लोक मेला, हर जगह मर्ड भाषा को अपन उपयोग बढ़ाना चाहिए। लोक कलाकार और साहित्यकार ने प्रोत्साहन दे के भी आप अपनी भाषा ने नई पहचान जिकी है बा भाइयों देश का। तो ई बाता चीता का सागे अब थाने सुनावा एक और भजन, गायडो है मुखराम परिहार और पार्टी को। तो सुनो सा ओ लोक भजन।

ग्रामीण श्रोता अभी चौपाल कार्यक्रम सुन रहे थे मीडियम वेव 326.72 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी सूरत का की कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुने फिल्म संगीत।

श्रोतो, बाजीगर फिल्म का गीत सुनिए, आवाज विनोद राठौड़ की, गीत रानी मलिक का और संगीत अनु मलिक का।

शुतव अंजाम फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत को स्वर दिया था अभिजीत ने, संगीत आनंद मिलिंद का था और गीत लिखा था समीर ने। आइए अब सुने जतिन ललित के संगीत निर्देशन में

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं।

ही हैं, एक ही फिल्म से। श्रुतो आज की फिल्म है वीर जरा। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र शर्मा। स्वीकार करें प्यार भरा नमस्कार। श्रुतो, मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वो सरहदों की मोहताज नहीं होती। कुछ ऐसी ही खूबसूरत कहानी लेकर आई थी फिल्म वीर जारा। प्यार, इंतजार, जज्बात और अपनेपन से सजे इसके गीत आज भी दिलों को छू जाते हैं। वीर जारा फिल्म जिसके गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। प्यार, इंतजार, अपनापन और मिट्टी की खुशबू से सजे इस कहानी ने लाखों दिलों को छुआ। इसके संगीत में मोहब्बत की नरमी भी है और जज्बातों की गहराई भी। साल 2004 में आई फिल्म वीर जरा सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि दो दिलों और दो मुल्कों के जज्बातों की कहानी थी। इस फिल्म में शाहरुख खान, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी ने अपने शानदार अभिनय से इसे यादगार बना दिया। फिल्म के गीतों और संगीत ने लोगों के दिलों में एक अलग ही जगह बनाई, जिसे महान संगीतकार मदन मोहन की धुनों से सजाया गया। प्यार, इंतजार, अपनापन और देशभक्ति के रंगों से सजी इस फिल्म के गीत आज भी उतने ही ताजा लगते हैं। तो आइए सुनते हैं फिल्म वीर जारा के बेहद खूबसूरत और सदाबहार नगमे। इंतजार अगर मोहब्बत से हो तो हर पल उम्मीद बन जाता है। ये गीत उसी एहसास को खूबसूरती से बयां करता है। सुनिए दिल को छू देने वाला नगमा, मैं यहां हूं।

श्रोताओं, फिल्म वीर ज़ारा की खास बात यह थी कि इसमें सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि अपने देश और मिट्टी से जुड़ी भावनाओं को भी बेहद खूबसूरती से दिखाया गया। शाहरुख खान और प्रीति जिंटा पर फिल्माया गया ये गीत भारत की संस्कृति, रिश्तों और अपनेपन की मिठास को बखूबी बयान करता है। इसके बोल सुनते ही दिल अपने गांव, अपनी मिट्टी और अपने लोगों की यादों से भर उठता है।

तो वीर जारा फिल्म में कई ऐसे पल हैं जहां प्यार सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक एहसास बनकर सामने आता है। शाहरुख खान और प्रीति जिंटा पर फिल्माया गया अगला गीत प्रकृति की खूबसूरती और दिल के जज्बातों को बहुत ही मधुर अंदाज में पेश करता है। इस गीत का संगीत और बोल दोनों ही श्रोताओं को एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। सुनिए फिल्म वीर जारा का ये बेहद रोमांटिक नगमा।

साथियों, वीर ज़ारा फिल्म की सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी भावनाएं थी, और यही वजह है कि रिलीज के इतने साल बाद भी ये फिल्म लोगों के दिलों में जिंदा है। फिल्म का संगीत महान संगीतकार मदन मोहन की अमर धुनों पर आधारित था, जिन्हें नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया। अगला गीत प्यार के उन खूबसूरत लम्हों की बात करता है जो भले ही छोटे हों लेकिन पूरी जिंदगी याद रह जाते हैं। सुनिए दिल को छू लेने वाला ये गीत।

श्रोतो, वीर ज़ारा फिल्म के संगीत की एक और खास बात ये थी कि इसमें हर रंग का एहसास देखने को मिला। प्यार, दर्द, अपनापन और सूफियाना रूहानियत भी। महान संगीतकार मदन मोहन की धुनों से सजी इस फिल्म की कव्वाली ने श्रोताओं के दिलों पर अलग ही असर छोड़ा। दमदार आवाज, सूफी रंग और गहरी भावनाओं से भरपूर ये प्रस्तुति आज भी उतनी ही पसंद की जाती है। तो आइए पूरे जोश और एहतराम के साथ सुनते हैं फिल्म वीर ज़ारा की ये शानदार कव्वाली।

तो दोस्तों ये थे वीर ज़ारा फिल्म के वो सदाबहार गीत जिन्होंने मोहब्बत जज्बात और रिश्तों की खूबसूरती को सुरों में पिरो दिया। इन नगमों ने हमें कभी मुस्कान दी, कभी भावुक किया और कभी अपनेपन का एहसास दिलाया। यही वजह है कि सालों बाद भी वीर ज़ारा का संगीत लोगों के दिलों में उसी प्यार से बसता है। उम्मीद है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ दीजिए अनुमति अपने दोस्त राजेंद्र शर्मा को, फिर मुलाकात होगी कुछ और खूबसूरत गीतों और यादगार बातों के साथ। नमस्कार।

इस गीत के साथ ही एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज की फिल्म थी वीर ज़ारा। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम थोड़ी ही देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

CASA रग्बी सेवन्स प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। महिला टीम चौथे स्थान पर रही। हॉकी इंडिया ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा की। सलीम टेटे को सौंपी टीम की कमान। और मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 प्रतियोगिता कल से शुरू।

0: तो आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं आईपीएल के रोमांचक मुकाबलों के साथ, जहां आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 11वें ओवर में 3 विकेट खोकर 91 रन बना लिए थे। चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। अगर अंक तालिका की बात की जाए तो तीसरे स्थान पर है इस समय हैदराबाद की टीम और वो चाहेगी कि और करीब पहुंचा जाए पहले और दूसरे स्थान के, जबकि चेन्नई की नज़र है कि पांचवें से छलांग लगाई जाए और चौथे स्थान पे अपना कब्जा बनाया जाए। इससे पहले लीग में कल 2 मुकाबले खेले गए, जहां दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया, जबकि दिन के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में प्रवेश किया।
1: आईपीएल के 62वें मुकाबले में कल दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स पर 5 विकेट से जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 193 रन बनाए। विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने 40 गेंदों में 53, कप्तान रियान पराग ने ताबड़तोड़ 26 गेंदों में 51 रन बनाए, जबकि वैभव सूर्यवंशी ने 219 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 21 गेंदों में 46 रन का योगदान दिया। दिल्ली की ओर से मिचेल स्टार्क को 4, वहीं लुंगी एनगिडी और माधव तिवारी को 2-2 सफलताएं हाथ लगी। जवाब में दिल्ली की टीम की शुरुआत शानदार रही। पहले विकेट के लिए अभिषेक पोरेल और केएल राहुल ने 105 रन की साझेदारी की। अभिषेक ने 51, वहीं केएल राहुल ने 56 रनों का योगदान दिया। अंत में कप्तान अक्षर पटेल ने 18 गेंदों में 34 रनों की तेज पारी खेली। आशुतोष शर्मा ने 5 गेंदों में 18 रन बनाकर टीम को दिलाई। दिल्ली ने 4 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य को हासिल कर लिया और अपने प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को बरकरार रखा है। वहीं कल खेले गए एक और मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही आरसीबी प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है और पंजाब के लिए ये लगातार 6वीं हार है। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स के।
0: पंजाब की 6ठी हार और रोज बढ़ता उसकी जीत का इंतजार। प्लेऑफ में पहुंचने की दौड़ आईपीएल का सबसे रोमांचक हिस्सा होती है, अगर कहा जाए तो 11वें खिलाड़ी की तरह काम करती है। प्लेऑफ पे चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस समय विशेष मौजूद हैं हमारे सहयोगी। विशेष, प्लेऑफ जो है आईपीएल को रोमांचक बनाने में सबसे बड़ा किरदार निभाता है। इस 4 सीटर गाड़ी की पहली सीट पे कल आरसीबी बैठ गई है। कौन से 3 यात्री हैं जो सबसे आसानी से इस गाड़ी में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं अभी आपको?
2: शक्ति, जैसा आपने बताया कि आरसीबी पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है, गुजरात टाइटंस अभी दूसरे स्थान पर मौजूद है और वो 16 अंकों को प्राप्त कर चुकी है। अगर वो एक जीत सुनिश्चित करते हैं तो उनकी जगह लगभग तय हो जाएगी प्लेऑफ्स के लिए। वहीं अगर हम एसआरएच की बात करें तो आज उनका मुकाबला चल रहा है और वो 14 अंक पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। एक जीत उनको सुनिश्चित करनी ही होगी और अगर वो दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज करते हैं तो उससे उनको दूसरे नतीजों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
0: जी बिल्कुल, और कोई भी टीम नहीं चाहेगी कि अपने प्लेऑफ के सफर के लिए दूसरी टीमों के नतीजों पर निर्भर होना पड़े, लेकिन हमने देखा है कि एक ट्रेंड है आईपीएल का विशेष कि कुछ टीमें धीमे दरवाजे से आती हैं, चुपके से आती हैं और प्लेऑफ में जगह पाती हैं। कुछ टीमें अभी भी ऐसी दौड़ में हैं, 6ठे 7वें स्थान पर हैं लेकिन संभावनाएं खत्म नहीं हुई हैं। ऐसी कौन टीमें हैं जिनके लिए अभी भी संभावनाएं, विकल्प और समीकरण प्लेऑफ का रास्ता दिखाते हुए नजर आ रहे हैं?
2: देखिए, अगर समीकरण की बात करें तो पंजाब किंग्स के लिए अभी भी दरवाजे खुले हुए हैं। वहीं अगर दिल्ली भी देखी जाए तो उनके पास भी एक पॉइंट का जो एडवांटेज है वो भी बहुत ही बेहतरीन है। केकेआर भी रेस में बनी हुई है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स वो अपनी स्थिति पूर्णतः मजबूत कर सकते हैं अपने बचे हुए दोनों मुकाबले जीतकर। लेकिन अगर उन दोनों में से किसी को भी एक एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा तो हमें इस आईपीएल में देखने को मिल सकता है कि टीमें 14 या 15 अंकों के साथ क्वालिफाई करेंगी। इस स्थिति में पंजाब के लिए मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण है जो वो अंतिम मुकाबला खेलने वाले हैं।
0: जी बिल्कुल, तो अंतिम मुकाबलों तक ये लाइन चलेगी और शायद आखिरी दिन जाके कहीं तय हो पाए कि हमारे 4 प्लेऑफ के खिलाड़ी कौन होंगे। और अब आईपीएल से चलते हैं टेनिस के कोर्ट की तरफ, जहां पे कुछ और इतिहास बनते और बिगड़ते नजर आए। यानिक सिन्हा ने इटालियन ओपन टेनिस पुरुष सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। वे 1976 में एंड्रियानो पनाटा के बाद इस खिताब को जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी बन गए।

0: सिनर ने फाइनल मुकाबले में कैस्पर रूड को 6-4, 6-4 से हराकर लगातार छठा एटीपी मास्टर्स 1000 टाइटल जीता। इस सत्र में सिनर ने पेरिस मास्टर्स, इंडियन वेल्स मास्टर्स, मियामी ओपन, मोंटे कार्लो मास्टर्स, मैड्रिड ओपन और इटालियन ओपन जैसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब जीतकर इतिहास रचा है। 1 घंटे 44 मिनट तक चले खिताबी मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करके नोवाक जोकोविच के बाद सिनर एटीपी इतिहास में करियर गोल्डन मास्टर्स पूरा करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। सिनर ने अब सभी एटीपी मास्टर्स 1000 टाइटल जीत लिए हैं। जोकोविच ने 2018 में सिनसिनाटी जीतने के बाद ये कामयाबी हासिल की थी। मैदान में दर्शकों की भारी समर्थन के बीच सिनर ने धीमी शुरुआत से वापसी करते हुए अपना 10वां मास्टर्स 1000 खिताब और रोम में पहला टाइटल जीता। शुरुआत में कैस्पर रूड ने आक्रामक खेल दिखाया, लेकिन लगातार सटीक शॉट्स लगाकर सिनर ने फाइनल मैच का रुख पलटा और ये यादगार जीत हासिल की। इससे पहले एलेना स्वेटोलिना ने महिलाओं का सिंगल्स खिताब जीता था। एलेना ने फाइनल मुकाबले में कोको गफ को 6-4, 6-7 और 6-2 से हराकर खिताबी मुकाबला अपने नाम किया। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो जब भी कभी हम टेनिस खिलाड़ियों का जिक्र करते थे तो रोजर फेडर और राफेल नडाल की वो बैटल्स याद आती थी, और आज ये युवा खिलाड़ी इटली से निकल करके उसी तहरिस्त में अपना नाम दर्ज कराते हुए नजर आ रहा है। और अब टेनिस के बाद इसी गेंद को ले चलते हैं रग्बी के मैदान की तरफ, जहां उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित CASA रग्बी सेवन्स में भारत की सीनियर पुरुष टीम ने रजत पदक अपने नाम किया, जबकि सीनियर महिला टीम चौथे स्थान पर रही। पुरुष टीम ने लगातार अपने शुरुआत के चारों मैच जीते, जहां भारत ने उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया और पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की। हालांकि फाइनल मुकाबले में उसे श्रीलंका से हार का सामना करना पड़ा, जबकि सीनियर महिला टीम ने पहले दिन उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के खिलाफ हार का सामना किया था। इसके बाद किर्गिस्तान और मंगोलिया के खिलाफ शानदार जीत के साथ इस टीम ने वापसी की और चौथे स्थान के साथ इस प्रतियोगिता से लौट रही है भारतीय महिला रग्बी टीम। और महिलाओं की बात चली है तो अब बात करते हैं महिला हॉकी की, जहां हॉकी इंडिया ने आज आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाली श्रृंखला में 4 मुकाबले होंगे, जो कि 26 मई से खेले जाएंगे। पहला मुकाबला 26 मई, दूसरा 27 को होना है, तीसरा मैच 29 मई को, जबकि अंतिम मुकाबला 30 मई को खेला जाना है। और इस सीरीज के सभी मुकाबले जो हैं वो पर्थ हॉकी स्टेडियम में होने हैं ऑस्ट्रेलिया के। और अगर देखा जाए सलीम टेटे को टीम का कप्तान बनाया गया है, यहाँ पे अनुभवी खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीत चुकी हैं, लेकिन यहाँ से महिला टीम की जो सबसे अधिक नज़र होगी वो एशियन गेम्स के लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने पर होगी। और अब बात करते हैं बैडमिंटन की, जहां मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन कल से शुरू होने जा रहा है। आइए जानते हैं भारत को इस प्रतियोगिता में अपने किन किन बैडमिंटन खिलाड़ियों से इस शानदार सुपर 500 टूर्नामेंट में एक शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी।
2: पुरुषों के सिंगल्स मुकाबले में भारत और फ्रांस के बीच एक नई जंग का इंतजार है और भारतीय शटलर्स अपनी हालिया थॉमस कप सेमीफाइनल हार का बदला लेने की कोशिश करेंगे। इस महीने की शुरुआत में डेनमार्क के हॉर्सेंस में थॉमस कप सेमीफाइनल में फ्रांस से 0-3 से हारने के बाद भारत ने कांस्य पदक जीता था। भारत तीनों सिंगल्स मैच हार गया था। भारतीय स्टार शटलर लक्ष्य इंडोनेशिया के मोह जकी उबैदिल्ला के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। वहीं तरुण मन्नेपल्ली फ्रांस के टोमा जूनियर पोपोव से भिड़ेंगे। किरण जॉर्ज 7वीं वरीयता प्राप्त एलेक्स लानियार का सामना करेंगे और HS प्रणॉय का मुकाबला क्रिस्टो पोपोव से होगा। S शंकर मुथुसामी सुब्रमण्यम को क्वालिफाइंग राउंड से गुजरना होगा। पुरुष डबल्स में हरिहरन अमसा कारुनन और MR अर्जुन का 7वीं वरीयता प्राप्त फ्रांसीसी जोड़ी क्रिस्टो पोपोव और टोमा जूनियर पोपोव से सामना होगा। भारतीय महिला सिंगल्स खिलाड़ियों में तन्वी शर्मा का मुकाबला थाईलैंड की पिचामोन ओपर नेपुत से होगा। उन्नति हुड्डा का सामना चीन की हान कियानशी से होगा। मालविका बंसोड़ जर्मनी की यवोन ली से भिड़ेंगी और अनमोल खरब का मुकाबला डेनमार्क की लाइन होजार्क कर्जसफेल्ड से होगा। रक्षिता श्री संतोष राम और ईशारानी बरुआ भी चुनौती पेश करेंगी। देविका सिहा क्वालिफायर में हिस्सा लेंगी। वहीं महिला डबल्स में अश्विनी भट्ट और शिखा गौतम तथा रुता पर्णा पांडा और श्वेता पर्णा पांडा की जोड़ी भारत की ओर से चुनौती रखेगी, जबकि मिक्स्ड डबल्स में आशित सूर्या और अमृता प्रमुतेश तथा रोहन कपूर और रुत्विका शिवानी गड्डे भारतीय दल का हिस्सा हैं। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो कहा जा सकता है कि उबर कप के ब्रॉन्ज मेडल की चमक और धारदार करने के लिए

0: और शानदार और चमकदार करने का एक मौका भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए इंतजार कर रहा है, और थोड़ी सी कसक जो गोल्ड ना आ पाने की थाईलैंड ओपन में थी वो भी शायद यहां पर कुआलालंपुर में मिटती हुई नजर आएगी। और अब कार्यक्रम में बात करते हैं भारतीय युवा मुक्केबाजों के प्रदर्शन की, जो उन्होंने ताशकंद में अपने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जहां भारतीय मुक्केबाजों की युवा पीढ़ी की चमक बॉक्सिंग रिंग से निकलकर विश्व पटल पर चमकती हुई नजर आई। भारत ने कुल 44 पदक जीते इस दौरान, और इन्हीं पदकों में से एक स्वर्ण पदक विजेता हंसिका हैं। हंसिका इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं और जो हमें बताएंगी कि इस प्रतियोगिता के दौरान उनका अनुभव कैसा रहा। हंसिका, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे हम स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम की तरफ से, और आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह का देश का मान बढ़ाया। हंसिका, देश के बाहर जाना और इतना शानदार प्रदर्शन करना, आप सभी श्रोताओं को बताइए कि ये पूरी प्रतियोगिता का अनुभव आपके लिए किस तरह का रहा?
1: मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, एंड मैंने पहली बार खेला तो उसके अकॉर्डिंग मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि दूसरी कंट्री में जाना, एरोप्लेन में बैठना, और ये टोटली एक नया एक्सपीरियंस है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, एक नया एक्सपीरियंस कह सकते हैं। हंसिका, बहुत लोगों को आपसे उम्मीद थी घर परिवार से लेकर की आपकी अकेडमी तक, तो स्वाभाविक है बहुत दबाव रहा होगा, तो आपने आखिर इस दबाव को किस प्रकार हैंडल किया है पूरी प्रतियोगिता में?
1: मेरे जो कोचेस थे वो हमेशा मेरे को मोटिवेट करते थे इस चीज के लिए कि मतलब कि डायलॉग था एक कि अब तुम फौजी की बेटी हारना, मतलब मेरे पापा ऐसी आर्मी में है, तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन मेरे को देते रहते थे इस वजह से।
0: जी बिल्कुल, आपके लिए
1: मतलब डीमोटिवेशन फील नहीं हुआ मेरे मैच में, थोड़ी बहुत नर्वसनेस हुई थी जो कि रिंग में उतरने के बाद मेरी खत्म हो गई थी बेसिकली।
0: जी बिल्कुल, आपके रिंग में उतरने के बाद आपके प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों में वो नर्वसनेस नजर आई हमें। अब ये भी बताइए कि इस उपलब्धि के बाद अब आपका अगला टारगेट क्या होने वाला है हंसिका?
1: मुझे आगे और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और जूनियर में मेरे को कोशिश करनी है कि मैं उसमें भी नेशनल में गोल्ड लाऊं, एशियन में इंडिया को रिप्रेजेंट करूं और गोल्ड लेके आऊं।
0: जी बिल्कुल, बहुत सारी उपलब्धियां आपका इंतजार कर रही हैं। हंसिका के पिता प्रमोद अत्री भी हमसे जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, हंसिका ने हमें बताया कि वो फौजी की बेटी हैं और हर तरह का दबाव जो है वो झेल सकती हैं, तो आप हमको ये बताइए कि हंसिका इस उपलब्धि से आप कितना खुश हैं और भविष्य में इस युवा बॉक्सर को आप किस मंच पे देखना चाहते हैं?
2: सुपर प्राउड है, और पूरे क्षेत्र में, पूरे गांव में और जो आसपास डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में हम अपने घर आए थे, इतना अच्छा जो है लोगों ने वेलकम किया है यहाँ पे कि हम आपको कुछ शब्द नहीं है हमारे पास। पूरे मतलब कई हजार लोगों की जो भीड़ वहाँ से तप्पल पहुँची लेने के लिए, ढोल डीजे बाजे लेकर के, बैनर लेकर के, तो मतलब इन चीज के लिए कुछ बोलना तो मेरे लिए तो शब्द भी जो है कम है। पूरे क्षेत्रीय जनता का बहुत बहुत आभार है, है सर, इतना प्राउड फील हो रहा है कि पूछो मत, है नहीं सर। हमें ये उम्मीद है कि सर ये आगे ऐसे ही देश का नाम रोशन करती रहे और आगे चल के ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड लेके आए सर।
0: जी बिल्कुल, ओलंपिक में गोल्ड मेडल की उम्मीद है, और हम भी यही शुभकामनाएं देंगे कि ये खिलाड़ी भविष्य में ऐसे ही नए कीर्तिमान स्थापित करे और देश के लिए स्वर्ण पदक लेकर के आए बॉक्सिंग में। और हंसिका के कोच से भी हमने बात की, जिन्होंने बताया, जितेंद्र टोकस ने, कि किस तरह से खिलाड़ी जो है अपने आयु वर्ग से बड़े खिलाड़ियों के साथ लड़ती रही है, जीतती रही है, तो देश को एक मजबूत खिलाड़ी मिलने जा रहा है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल के मैदान की तमाम खबरों के साथ, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की, द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोग गठित किए, और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनास गोरस्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था लेकर हरित शिपिंग तक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की क्षमता, गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे की प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
1: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
0: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था में अपने साझा विश्वास और संवाद तथा कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। गृहमंत्री ने कहा कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह सम्मान मोदी के सशक्त नेतृत्व और विश्वभर में भारत के बढ़ते सम्मान को दर्शाता है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये सम्मान वसुधैव कुटुंबकम के चिरस्थायी सिद्धांतों के माध्यम से वैश्विक सद्भाव को मजबूत करने के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन के उनके यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये पहल महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 और 20 तारीख को इटली में होंगे। यह दौरा 5 देशों की यात्रा का अंतिम चरण है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ

0: प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्ष में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि यही आत्मनिर्भर भारत की सच्ची पहचान होगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
2: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
1: भारत में परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग सहयोग के उभरते अवसरों के बारे में उच्च स्तरीय अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल ने आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल के इस दौरे में अमरीकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, व्यावसायिक हितधारक और नागरिक परमाणु ऊर्जा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी में भारत अमरीका सहयोग से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत और अमरीका के बीच आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत भारत के दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश में तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
3: कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
1: इस बीच सरकार ने YouTube के उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल 9 दिन का तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि देश में लगभग 60 दिन के कच्चे तेल का भंडार है और

शोधन क्षमता भी पर्याप्त है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए दो जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर अत्याचारों पर गठित आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नाशिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 स्थानों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है, ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। में छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गोलस्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo. Agreed to elevate bilateral ties in green strategic partnership focusing on clean energy and blue economy. Prime Minister Modi awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by King Harald V. Government targets $1 trillion exports this year. Union Minister Jitendra Singh holds talks with US industry delegation on nuclear energy and private investment opportunities in India. West Bengal government sets up 2 inquiry commissions to probe corruption and atrocities against women. And amid extreme heat conditions, Ministry of Ayush issues advisory to prevent heat-related illnesses. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi's first ever

श्रोताओं, सुगम संगीत कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में आज कलाकार हैं चंदन दास।

0: चंदन दास की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी सूरतकढ़ की कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: Speak.

नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इन दिनों अगर आपके घर में जनगणना कर्मी आकर आपके मकान के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनका सहयोग करें और पूरी जानकारी उन तक पहुंचाएं, क्योंकि देशव्यापी जनगणना 2027 के पहले चरण का काम तेजी से चल रहा है, जिसमें मकान सूचीकरण और मकानों की गणना की जा रही है। इस बार जनगणना कार्यों में पहली बार शुरू की गई है स्वगणना सुविधा, जिसे जनता से काफी उत्साहजनक रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। काफी राज्यों में स्वगणना का जो विकल्प है वो समाप्त हो चुका है और कुछ राज्य अभी बचे हैं। ये पहल जनगणना कार्यों के डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और इसे कैसे भरना होगा, किस तरह के सवाल इसमें पूछे जा रहे हैं, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो तुरंत हमें कॉल कीजिए, क्योंकि आज के कार्यक्रम में हम मकान सूचीकरण और आवास गणना पर परिचर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं आपके साथ फरहत नाज।

0: और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमने आमंत्रित किया है गृह मंत्रालय की महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप महापंजीयक रुशाली वराड़े जी को। नमस्कार रुशाली जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
1: नमस्कार और धन्यवाद।
0: श्रोताओं, हमारी फोन लाइन्स खुल चुकी हैं, आप हमारे विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112311 और 0112311 पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लें, 9289094044 पर आप सवाल भेजते रहिए। सोशल मीडिया एक्स पर #AskAIR का इस्तेमाल करके भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और रुशाली जी, सबसे पहला प्रश्न हमारा आपसे ही है कि पहले चरण का काम तेजी से शुरू हो गया है, मकान सूचीकरण और मकानों की गणना किस

0: एक बार फिर सुन ले, 9289-0940-44 पर आप सवाल भेजते रहिए। सोशल मीडिया एक्स पर #AskAIR का इस्तेमाल करके भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और रुशाली जी, सबसे पहला प्रश्न हमारा आपसे ही है कि पहले चरण का काम तेजी से शुरू हो गया है, मकान सूचीकरण और मकानों की गणना किस तरह की जा रही है इसमें, और किस तरह के सवाल इसमें जनता के लिए चुने गए हैं?
1: जी, जैसे अभी आपने कहा कि इस बार पहली बार हम स्वगणना की उपलब्ध फैसिलिटी उपलब्ध है पब्लिक के लिए,
0: जी
1: तो काफ़ी राज्यों में स्वगणना का पीरियड ख़त्म हो चुका है, जो कि हमने 15 दिन के लिए रखा था, और 1 महीने का समय है जो कि प्रगणक घर घर जाके सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। तो कुछ 7 या 8 स्टेट में हमारी स्वगणना कंप्लीट हो चुकी है और HLO का काम भी कंप्लीट हो चुका है। कुछ राज्यों में स्वगणना अभी चल रही है। तो क्वेश्चन के बारे में अगर हम कहें तो जैसे नाम है इस फेज का, मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना, तो इसमें हम सिर्फ मकानों की गणना करेंगे और मकान के हालत कैसी है, घर कैसा है और घर में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे पीने का पानी कहाँ से आता है, पीने का पानी कैसे है, टॉयलेट की सुविधा है या नहीं, बाथरूम की सुविधा है या नहीं, घर में कितने लोग रहते हैं, कितने कपल्स रहते हैं, रूम्स कितने हैं घर पे, और घर में एसेट्स क्या है, जैसे जैसे कि रेडियो है या नहीं, टेलीविजन है या नहीं, 2-व्हीलर 4-व्हीलर है या नहीं, तो इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे।
0: जी रुशाली जी, और सबसे पहले हमारे लिसनर हमसे जुड़ गए हैं दिल्ली से, धर्मवीर जी। जी धर्मवीर जी
2: नमस्कार। मैडम
0: नमस्कार,
2: एक्सपर्ट को भी नमस्कार। मैं धर्मवीर गाने का दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरे सवाल में मैं ये पूछना चाहूंगा कि घर घर जाके आप इसके लिए इंक्वायरी करेंगे, जानकारी लेंगे, और कुछ घरों में जाने का मतलब ये है कि घरों में महिलाओं का होना, क्या जो आपके जाएंगे वर्कर तो उसमें एक महिला भी होगी साथ, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये, जो अगर कोई दिव्यांग है, दिव्यांग का मतलब ये है कि वो अगर उसके पास स्मार्टफोन नहीं है तो वो कैसे अपने, जो पहले आपने कहा था कि इसमें खुद भी ये दर्ज कर सकता है, और इसके लिए हमें क्या क्या, मैं कित अगर कोई फ्रॉड आ जाता है इंक्वायरी करने के लिए, तो ऐसे में हम क्या पहचान करें कि ये आदमी फ्रॉड है कि ये सरकार के भेजा गया ये आपका वर्कर है। धन्यवाद।
0: धर्मवीर जी ने 3 सवाल पूछे हैं रुशाली जी। सबसे पहला सवाल उनका ये है कि अगर महिलाएं घर में मौजूद हैं तो क्या कोई महिला कर्मी भी जनगणना कर्मी के साथ मौजूद रहेंगी?
1: तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, महिला अलग से तो नहीं होगी, क्योंकि हमारे जो प्रगणक होंगे वो जनरली होते हैं जो स्कूल के टीचर्स होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। हम लोग इंस्ट्रक्शन जरूर देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इसमें अपॉइंट करें, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन एक फेथफुली अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, बट ये कंपलसरी नहीं है और हर घर में एक ही आदमी जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें पूरे इंडिया के लिए 31 लाख प्रगणकों की ज़रूरत है। तो इतने सारे लोगों के साथ मतलब और एक महिला जाना मतलब संभव नहीं है। लेकिन जो तीसरा सवाल है मैं इसी के साथ जोड़ देती हूँ, जो फ्रॉड वाली बात इन्होंने पूछी है धर्मवीर जी ने, तो फ्रॉड की कोई ये नहीं है, क्योंकि प्रगणक के पास अपना आई कार्ड होगा, उसके पास चार्ज ऑफिसर का सिग्नेचर होगा, उस पर स्टैम्प होगा, प्लस QR कोड होगा आई कार्ड पे, और अपॉइंटमेंट लेटर पे भी QR कोड स्कैन कर सकते हैं। तो QR कोड स्कैन होने के बाद हमारी वेबसाइट उस पर आ जाएगी और वेबसाइट पे उसकी डिटेल्स आपको दिख जाएंगे, तो फ्रॉड की बिल्कुल दिक्कत नहीं है। हालांकि हो सकता है, लेकिन उसके लिए आप अपने चार्ज ऑफिसर को या लोकल ऑफिसर से बात कर सकते हैं।
0: और दूसरा सवाल इन्होंने पूछा है कि दिव्यांग व्यक्ति फॉर्म कैसे भर सकते हैं?
1: जी, तो दिव्यांग व्यक्ति के लिए जैसे पहले ही बताया मैंने, स्वगणना एक अतिरिक्त फैसिलिटी हम दे रहे हैं, ये कंपलसरी नहीं है। प्रगणक हर घर जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, अगर आपने स्वगणना की है तो भी प्रगणक घर घर जाके फिर से वो वेरीफाई करेगा। तो अगर दिव्यांग कोई है वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, प्रगणक वहां पे जरूर जाएगा और इन्फॉर्मेशन लेके आएगा।
0: और अब हमारे दूसरे लिसनर हरियाणा से हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेंद्र जी। जी राजेंद्र जी
3: नमस्कार। जी जागृति जी को और विशेषज्ञ जी को नमस्कार।
0: नमस्कार, मैं फरहत नाज बात कर रही हूँ राजेंद्र जी,
3: सॉरी जी,
0: लेकिन मैं आपका नमस्कार जागृति जी को भी पहुंचा दूंगी।
3: जी जी, और मैं ये जानना चाहता है अगर कोई गलत जानकारी देता है या तो कोई उस पे कोई कार्रवाई होगी या जैसे कोई नोटिस दिया जाएगा जनगणना के बारे में, मकान के बारे में?

0: उस पे क्या कार्रवाई हो सकती है, और जो 33 सवाल पूछे जाते हैं उसमें कुछ ही मेरे से कुछ दो तीन ही सवाल पूछे गए थे गए, और मुझसे ये पूछा गया था कि आप टीवी देखते हो, तो मैंने उनसे मेरे को ये पूछ लिया था कि आप रेडियो सुनते हो, तो मैंने कहा रेडियो मैं पहला ऐसा शख्स कह रहे मिला है इसके बारे में भी।
1: तो इनका सवाल था कि रेडियो सुनते हैं कि नहीं, इस तरह के जो सवाल हैं वो पूछे गए
2: जी
1: थे इस
2: जी
1: विकल्प में। जी
2: एक तो पहला मुझे लगता है इनका सवाल था गलत जानकारी के बारे में। तो
1: जी
2: पहले मैं बता दूं कि गलत जानकारी अगर कोई देता तो सेंसस एक्ट में ये प्रोविजन है कि उसे कोई पनिशमेंट मिलती है।
1: जी
2: बट उससे ऊपर जो इम्पोर्टेंट बात है कि सेंसस की इन्फॉर्मेशन बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, सेंसस एक्ट में ये मेंशन है कि उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन गोपनीय रखी जाएगी। तो जनरली लोग सही जानकारी देते हैं, और सेंसस एक्ट में ये भी प्रोविजन है कि लोग अपने बिलीफ से, अपने नॉलेज से सही जानकारी दे। जो डेटा रिलीज होता है वो एक एग्रीगेट लेवल पे रिलीज होता है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक होने की कोई भी संभवता नहीं है। तीसरा जो है, जो हमारे 33 सवाल है वो नोटिफाई हो चुके हैं, गवर्नमेंट के गैजेट में नोटिफाई हो चुके हैं, तो उसमें जो भी सवाल है वो सारे उतने ही एनुमरेटर को पूछने हैं और उनका ही जवाब रिस्पोंडेंट को देना है। ये बिल्कुल सही कहा कि टीवी का सवाल उसमें है, रेडियो का सवाल उसमें है, रेडियो आप किस पे सुनते हैं ये भी उसमें पूछा गया है कि आप मोबाइल पे सुनते हैं या आपके पास रेडियो सेट है या फिर आप कार में सुनते हो। उसी तरह टीवी का भी अलग अलग आप कैसे देखते हो, मतलब दूरदर्शन है आपके पास, फ्री डिश या डीटीएच है या फायर स्टिक है, केबल कनेक्शन है, तो अलग अलग सवाल उसमें है।
1: और अगर किसी भी तरह की हमारे श्रोता दिक्कत उठा रहे हैं तो आप मकान सूचीकरण और मकान गणना अनुसूची के लिए वेबसाइट जो पोर्टल दिया हुआ है se.census.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं, और आप सारे सवाल जो है वो इसमें आपको शो हो जाएंगे किस तरीके के सवाल जो है जनगणना कर्मी पूछ रहे हैं, ताकि आपको आसानी होगी उस समय आपका सवालों का जवाब देने में। और रोशाली जी, एक और प्रश्न हमारे पास आया है कि क्या जनगणना में सभी के लिए शामिल होना आवश्यक है?
2: बिल्कुल, जैसे जनगणना का पहला ही जो मोटो है कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं या किसी को दोबारा गिनती करेंगे नहीं, तो हर एक को इंक्लूड होना है जनगणना में। और जो बार बार मैं जिक्र कर रही हूँ जनगणना अधिनियम की, सेंसस एक्ट 1948, उसके हिसाब से हर एक व्यक्ति को या हर एक परिवार के मुखिया को ये कंपलसरी है कि सही सही जानकारी प्रगणक को दे। और ये प्रगणक की भी जिम्मेदारी है कि जितने सवाल गैजेट में पब्लिश हुए हैं उतने ही सवाल पूछे, उसके बिना और कोई भी सवाल ना पूछे, और जो भी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहा है वो उसको गोपनीय रखे।
1: जी अच्छा, अगर कोई व्यक्ति दूसरे मतलब जॉब की वजह से यहाँ पर रह रहा है, दिल्ली शहर में रह रहा है, लेकिन वो बिलोंग करता है किसी दूसरे राज्य से, तो वो क्या दोनों जगह का जो है उसके लिए भरना जरूरी होगा सेल्फ एनुमरेशन?
2: बिल्कुल नहीं, जैसे मैंने कहा सबको जैसे हम इंक्लूड करते हैं तो डुप्लीकेट भी नहीं करते हैं। तो जहाँ पे जनगणना की ये कंसेप्ट है, जो जहाँ पे नॉर्मली रिसाइड करता है, यानी जहाँ पे मैक्सिमम टाइम रहता है, अगर काम के सिलसिले में वो दिल्ली में रहता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन दिल्ली में कलेक्ट होगी। उसके अदर फैमिली मेंबर्स अगर गांव में रहते हैं तो अदर फैमिली मेंबर्स की गिनती गांव में होगी, लेकिन जो जहाँ पे रहता है वहीं पे उसका काउंटिंग होता है।
1: जी, और अब दिल्ली से ब्रह्मदत्त जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी ब्रह्मदत्त जी।
3: नमस्कार मैडम जी।
1: नमस्कार।
3: हमारे विषय विशेषज्ञ जी को प्रणाम।
2: नमस्ते। प्रणाम।
3: मेरे दो जिज्ञासाएं हैं। पहली है कि जो हमारे दस्तावेज हैं दूसरे शहर के बने हुए हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के, और हम दिल्ली में निवास कर रहे हैं, तो क्या हम दिल्ली की जनगणना में सम्मिलित हो सकते हैं? प्रथम प्रश्न। दूसरी है मैडम ये है कि अगर हम घर पर नहीं मिलते हैं तो क्या जनगणना स्टाफ को हम अपने समय के हिसाब से बुला सकते हैं? भाई छुट्टी वाले दिन आ जाना आप, तो क्या ऐसा संभव है? एक अन्य प्रश्न है, जो लोग जनगणना में शामिल नहीं होना चाहते क्या उन लोगों के लिए कोई दंडात्मक कार्यवाही का भी प्रावधान है? धन्यवाद मैडम जी।
2: धन्यवाद ब्रह्मदत्त जी। तो तीनों सवाल आपके बड़े ही अच्छे थे। पहला तो ये है कि जनगणना में कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है, आप जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे वो प्रगणक को नोट डाउन करनी है। इसीलिए हालांकि हम लोग सबसे अपील करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन सही है वही इन्फॉर्मेशन दे दे, और आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गोपनीय रहेगी, किसी के साथ वो साझा नहीं की जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बताती हूँ कि RTI में भी हम इन्फॉर्मेशन देते नहीं हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। कोई कोर्ट में अगर सबूत के तौर पर देने के लिए मांगता है तो उसको भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती एज पर।

0: सेंसस एक्ट। दूसरा जो सवाल था आपका, अगर आप घर पर नहीं मिलेंगे तो इसके लिए भी हमारे प्रगणक को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि अगर घर लॉक मिलता है तो 2 या 3 बार वहाँ पे जाए, छुट्टी के दिन जाए या सुबह जल्दी जाए या शाम को देर से जाए, ताकि घर पे कोई ना कोई मिलेगा। तीसरा जो आपका सवाल था दंडात्मक कार्रवाई का, तो सेंसस एक्ट में ये प्रोविजन है सेक्शन 11 में कि अगर कोई गलत जानकारी देता है तो उसको पनिशमेंट दी जा सकती है।
1: तो यानी कि पूरा सहयोग आपको जनगणना कर्मी के साथ करना है और सही
0: बिल्कुल
1: सही और सटीक जानकारी उन तक उपलब्ध करवानी है। और अब त्रिपुरा से अविनाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अविनाश जी।
2: जी नमस्कार
1: नमस्कार
2: जी, मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश चली बोल रहा हूँ। और मेरा सवाल है कि जब जनगणना टाइम पे सरकारी कर्मचारी हमारे घर पे आते हैं तो हम अपना जानकारी उनको प्रदान करेंगे, तो लेकिन हम उनको पहचानेंगे कैसे कि वो सही व्यक्ति आए हैं मेरे घर पे? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई ठगी व्यक्ति भी आ सकते हैं हमारे डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो हम उनको पहचानेंगे कैसे?
0: जी धन्यवाद अविनाश जी। और उसको पहचानेंगे कैसे? तो उनके पास आई कार्ड होगा और अपॉइंटमेंट लेटर होगा, जो कि लोकल चार्ज ऑफिसर, हमारे जो चार्ज ऑफिसर होते हैं वो तहसीलदार या मामलतदार होता है आपके एरिया का, या कोई बीडीओ होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो ये इनका स्टैम्प और सिग्नेचर के साथ प्रगणक के पास एक आई कार्ड होगा, अपॉइंटमेंट लेटर होगा, वो आप चेक कर सकते हैं। उसके ऊपर क्यूआर कोड होगा, क्यूआर कोड स्कैन करके आप देख सकते हैं, उसमें आपको हमारी वेबसाइट से सारे डिटेल मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कोई फ्रॉड हो रहा है तो आप अपने चार्ज ऑफिसर से या एरिया के कोई भी ऑफिसर से उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं।
1: रुशाली जी, एक और प्रश्न मेरे पास आया है कि खाली मकान, बंद मकान या फिर निर्माणाधीन मकान की गिनती किस श्रेणी में होगी और इन्हें कैसे चिन्हित किया जाता है?
0: जी तो हमारे जो मैंने कहा हर एक क्वेश्चन के अलग अलग कोड है, तो जो हमारा जनगणना मकान के कोड है उसमें
1: जी
0: कुछ कोड है वैकेंट के लिए, कुछ कोड है अंडर कंस्ट्रक्शन के लिए, कोड तो नहीं है बट अगर अंडर कंस्ट्रक्शन कोई बिल्डिंग है उसका छत डाला हुआ है तो उसको हम मानते हैं, क्योंकि मेन जो हमारा है सेकंड फेज जो फरवरी 2027 में होगा, तो हो सकता है अभी जो घर आपका अंडर कंस्ट्रक्शन हो फरवरी 27 तक वहाँ पे कोई रहने के लिए आ जाए, तो ऐसे इसीलिए उसको हम गिनती अभी कर लेते हैं, उसको नंबर देते हैं और उसको इन्फॉर्मेशन एज अ वैकेंट कर देते हैं और एक रिमार्क डाल देते हैं कि इट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, और जो खाली है उसको एक वैकेंट हम मानते ही है। कुछ ऐसे घर भी मिलते हैं कि घर लिया हुआ है लेकिन लॉक है, रहते कहीं और है, तो उसको भी लॉक के कैटेगरी में हम इंक्लूड करते हैं ताकि सेकंड फेज में वो छूटे नहीं।
1: जी अच्छा, इसमें जनगणना मकान नंबर कौन देता है और दीवार पर लिखने का क्या नियम है?
0: ये प्रगणक देता है और नियम है कि एक प्रगणक को एक जो एरिया देते हैं एनुमरेशन ब्लॉक हम जिसको कहते हैं, छोटा सा एरिया होता है 700 से 800 पॉपुलेशन या 150 घरों का, तो वो पूरे अपने एरिया में सीरियली जनगणना मकान नंबर देता है, एक से लेकर जो भी लास्ट उसके एरिया में होगा तो वो खुद लिखता है। उसके लिए हमने कुछ स्टेशनरी उसको प्रोवाइड की है, मार्कर पेन्स वगैरह दिए।
1: ठीक है, और अब शिमला से हमारे साथ राकेश जी जुड़ गए हैं। जी राकेश जी।
3: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
3: जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो घर में रहते तो उनकी तो होती है, जो किराए के मकान पे रहते हैं क्या वो भी जनगणना में आता है? उनको क्या जनगणना करानी पड़ती है जो किराए पे रहते हैं?
0: जी बिल्कुल, जैसे फिर से मैं कह रही हूँ कि जनगणना में किसी को छोड़ा नहीं जाता, किसी को दोबारा गिना नहीं जाता, तो अगर आप किराए के भी घर में रह रहे हैं तो जनगणना का पहला जो रूल है कि जो जहाँ पे रहता है वहाँ पे उसकी गिनती होती है, तो आपका घर खुद का हो, किराए का हो या और किसी का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जहाँ पे रह रहे वहीं पे आपकी गिनती होगी। आपका घर किराए का है या खुद का है ये जानने के लिए हमारा क्वेश्चन है कि घर आपका खुद का है या किराए का है। किराए का है तो उसके लिए भी आपका कोड है कि आपका घर किराए का है, लेकिन आपका खुद का घर कहीं और है तो उससे हमारे पास ये एक नंबर्स आ जाएंगे कि कितने मतलब पूरे कंट्री में या पूरे देश में कितने लोगों के पास खुद के घर है या कितने लोग किराए पे रह रहे हैं।
1: और अब रवि जी जुड़ गए हैं हमारे साथ हरिद्वार से। जी रवि जी।
4: हाँ जी नमस्कार मैम जी, मेरा ज्वालियागढ़ मीरपुर हरिद्वार से हूँ जी।
1: जी नमस्कार।
4: हाँ जी माँ जी, विशेषज्ञ को भी मेरा नमस्कार जी।
0: नमस्ते
4: जी मैम, मैं जानना चाहता हूँ जी, जो जनगणना है हमें सहयोग करेंगे, अपनी जानकारी देंगे, वो कितनी गोपनीय रखी जाएगी मैम?
0: जी बिल्कुल, ये पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और कितनी

0: ही जाएगी। इसके लिए मैं एक ही जवाब दे सकती हूँ कि आप भी मांगेंगे बाद में तो आपको भी नहीं दी जाएगी, इतनी गोपनीय रखी जाएगी, क्योंकि पूरी जानकारी एज पर सेंसस एक्ट या सेंसस अधिनियम जो है उसके हिसाब से किसी को दी नहीं जाती, आरटीए में भी दी नहीं जाती, कोर्ट में भी दी नहीं जाती और इंडिविजुअल भी को भी दी नहीं जाती। एक बार फिल होने के बाद वो कॉन्फिडेंशियल रह जाती है और हम सिर्फ एग्रीगेट लेवल पे डेटा रिलीज करते हैं।
1: और अब एक और लिस्नर हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से, महेंद्र जी। जी महेंद्र जी।
2: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
2: मैम, मेरा सवाल ये है कि अगर पुत्र या पुत्र वधु अगर माता पिता के साथ जीवन यापन करते और उनका भोजन एक ही रसोई में तैयार होता है तो वो अलग परिवार माना जाएगा या उसी में जॉइंटर किया जाएगा?
0: जी देखिए, जनगणना के लिए एक ही कंसेप्ट है, अगर एक परिवार मानने के लिए कि वो एक ही चूल्हे पे खाना पकाते हैं या नहीं, या एक ही किचन में खाना पकाते हैं या नहीं, तो इसमें कोई भी हो, अगर वो एक ही किचन से खाना खा रहे हो, खाना पका रहे हो, तो उसको एक ही परिवार माना जाएगा, चाहे वो अनरिलेटेड हो, उनका कोई आपस में रिलेशन भी ना हो। जैसे आजकल हम देखते हैं 3-4 दोस्त मिलके एक छोटा सा फ्लैट लेके रहते हैं और अपना अपना खाना बनाते हैं या मेड को रख के खाना बनाते हैं, तो ऐसे में भी उनको हम एक ही परिवार मानते हैं।
1: अच्छा, इसी से जुड़ा एक और प्रश्न मेरे पास आया था कि अगर मेरी बेटी की शादी हो गई और वो किराए पर रहती है तो क्या वो अपने घर में उसको सदस्य के रूप में शामिल कर सकते हैं?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं, वो जहाँ पे रहती है वहाँ पे उसका उसको गिना जाएगा।
1: अच्छा, और अब गुरुग्राम से सुभाष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सुभाष जी।
3: नमस्ते मैम।
1: जी नमस्कार।
3: आमंत्रित विशेषज्ञ महोदय आपको नमस्कार।
0: जी नमस्ते।
3: मेरा सवाल ये है मैम कि जो स्वगणना का जो भूमिका है, जैसे व्यक्ति अगर स्वगणना आपने जिक्र किया था अभी, तो उस स्वगणना में उसकी कैसी भूमिका को सत्यापन के रूप में जाना जाएगा, उसको मतलब कौन सा ऐसा प्रमुख बिंदु रहेगा जो उसके व्यक्ति के प्रमुख कार्यों को बताकर वह किस तरह से स्वीकारा जाए, उसका सत्यापन करने के क्या तरीके हैं, यही मैं पूछना चाहता था। धन्यवाद जी।
0: जी, तो जैसे मैंने कहा, स्वगणना इस बार पहली बार हम लोग ये फैसिलिटी दे रहे हैं, 2011 तक ये फैसिलिटी नहीं थी। ये इस बार इसलिए इंट्रोड्यूस की कि काफ़ी लिटरेसी भी बढ़ी है, प्लस आजकल बड़े बड़े शहरों में ये देखा जाता है कि घर के सारे सदस्य कहीं ना कहीं काम पे जाते हैं, सुबह से लेकर रात तक वो बाहर आते हैं रहते हैं, तो प्रगण को देने के लिए उतना टाइम उनके पास नहीं होता। लेकिन उसकी वो जो इन्फॉर्मेशन भरेगा वो सत्यापित करनी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ हमारे कंसेप्ट्स है, जैसे पानी कहाँ से मिलता है या घर में टॉयलेट की फैसिलिटी क्या है, इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है कभी कभी रिस्पोंडेंट को खुद पता ना चले, क्योंकि प्रगणक को काफ़ी अच्छे से हम ट्रेन करते हैं, 3-4 दिन का उसका ट्रेनिंग होता है, उसको वीडियोस दिए जाते हैं, ट्रेनिंग मटेरियल दिया जाता है, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर कभी रिस्पोंडेंट या जो खुद भर रहा है स्वगणना की इन्फॉर्मेशन कुछ गलत अगर करे तो वो प्रगणक एक बार देख के उसको बता के उसको सही करके सत्यापित कर सकता है।
1: अच्छा, एक और प्रश्न हमारे पास आया है रुशाली जी की, स्लम और जेजे क्लस्टर बेघर आबादी की गिनती मकान जनगणना में कैसे सुनिश्चित की जाती है?
0: जी, स्लम के एरिया के लिए तो हम जैसे मैंने कहा, एक प्रगणक के लिए छोटा सा एक एरिया होता है, तो स्लम के हम अलग से एरिया बनाते हैं, उसको अलग से कोडिंग करते हैं ताकि हमारे पास स्लम का डेटा भी आ जाए, क्योंकि उनके घर होते हैं, कच्चे हो चाहे पक्के हो, घर होते हैं, उसकी गणना की जाती है, घर नंबर भी दिया जाता है।
1: जी।
0: जो बेघर होते हैं, बेघरों की गणना पहले फेज में नहीं होती, उनको सेकंड फेज में गिना जाता है, जो कि सेकंड फेज हमारा कंप्लीट होने के बाद लास्ट डेट में जो 28 फरवरी का दिन होता है उसको रात को हम उनकी गणना करते हैं, क्योंकि जनरली ये लोग रात को ही मिलते हैं अपने किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पे या किसी ब्रिज के नीचे या इस तरह के जगह पे, तो बेघरों को सिर्फ सेकंड फेज में गिना जाता है।
1: जी, तो श्रोताओं, अब आपके सवाल जो हैं वो कुछ कम हो रहे हैं, तो हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं कॉल का। आप परिचर्चा सुन रहे हैं और मकान सूचीकरण आवास गणना पर विषय आज हमने रखा है, क्योंकि जनगणना 2027 जारी है और बहुत तेज़ी से ये काम चल रहा है। जनगणना कर्मी जो है दिन भर लगे हुए हैं, आपके सवाल का जवाब जो है आप दे रहे हैं, और इसी पर आप कॉल कर सकते हैं 0112331-0481 पर, और प्रश्न पूछ सकते हैं हमारे विशेषज्ञ से। किसी भी तरह का डाउट अगर आपके मन में है और आप इससे रिलेटेड कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं।

0: 01 23 71 71 1 पर हम कर रहे हैं आपके कॉल का इंतजार। त्रिशाली जी, एक और प्रश्न मेरे पास है कि भाषाई और क्षेत्रीय विविधता वाले राज्यों में प्रश्नावली को समझाने की सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है?
1: सबसे बड़ी चुनौती तो है उनको अपनी भाषा में समझाना, उनको अपनी भाषा में सारा मटेरियल उपलब्ध कराना और प्रश्न भी उनके भाषा में होने चाहिए। तो ये बहुत अच्छा एक ट्रेडिशन है जनगणना का कि जनगणना के सारे मटेरियल 16 भाषाओं में उपलब्ध है। जो सारे हमारे मोबाइल ऐप है या पोर्टल है या स्वगणना का वेब पोर्टल है, ये भी 16 भाषा में उपलब्ध है। जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स है ये तो 19 भाषा में उपलब्ध है, क्योंकि हर एक स्टेट की या हर एक रीजन की अपनी अपनी एक लैंग्वेज होती है, तो उन सारे लैंग्वेज में ये सारा अवेलेबल है।
0: जी अच्छा, 2011 में जो है अगर बात की जाए तो डेटा की एंट्रिंग, स्कैनिंग और वेरिफिकेशन में लगभग बताया जा रहा है कि 2 साल लग गए थे, लेकिन 2026 में रियल टाइम डेटा अपलोड से रिजल्ट कितने जल्दी आने की उम्मीद है?
1: बहुत अच्छा सवाल है। जैसे 2011 में पहला हमारा पब्लिकेशन आने में 2 साल लगे
0: जी,
1: लेकिन आप देख सकते बहुत सारे क्वेश्चन पे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं जो सेकंड फेज में आती
0: जी,
1: है। तो एक एक सीरीज या एक एक पैरामीटर पे डेटा रिलीज करने में 6 से 8 साल लगे थे। जो हमारा लास्ट टेबल रिलीज हुआ था माइग्रेशन पे, वो हमारा 2019 में रिलीज हुआ था। क्योंकि हमारे जो पेपर पे होता था तो देश के हर कोने से पेपर कलेक्ट करना, मतलब इन्फॉर्मेशन भरने के बाद वो कलेक्ट करना, वो स्कैन करना, इसी में हमारे पूरे 2 साल निकल जाते थे। अब हालांकि हमारा डिजिटल हो रहा है, रियल टाइम डेटा आ रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट पहला जो हमारा पब्लिकेशन है वो 8 से 9 महीने में रिलीज हो जाए और बाकी सारी डेटा 2 से 3 साल के अंदर अंदर डेटा पब्लिश हो जाए।
0: जी बिल्कुल, क्योंकि जनगणना केवल जनसंख्या की गिनती नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माण की आधारशिला भी है। तो मुझे लगता है कि इसमें अगर सब लोग मिलकर भागीदार बनेंगे तो देश प्रगति की राह पर बढ़ेगा। और अब दिल्ली से विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विकास जी।
2: हाँ जी, हमारे 2 मकान है, एक तो गाँव में है राजस्थान में और एक दिल्ली में है। तो हमारी जनगणना कहाँ होगी?
1: जहाँ पे आप रहते हैं हमेशा के लिए या ज़्यादा वक्त जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आपकी जनगणना होगी। और यहाँ पे बिल्कुल डरने की बात नहीं है कि अगर आपकी जनगणना यहाँ पे होगी तो गांव के मकान का क्या होगा। जनगणना का उससे कोई भी संबंध नहीं है, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे आपकी गणना होगी।
0: हाँ विशाली, ये प्रश्न वैसे देखा जाए तो बहुत लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो है रोजगार के लिए बाहर आते हैं और गांव का जो घर है उनका या तो खाली पड़ा होता है, लेकिन वो होता है, वो कहीं ना कहीं जाकर जो है उनसे जुड़ा हुआ होता है। तो वो लोग ये सोच रहे हैं कि अगर यहाँ पर हम लोग वो भर देते हैं, जैसे दिल्ली में अगर रह रहे हैं तो दिल्ली का अगर भर जाता है तो क्या गाँव का भरना जरूरी होगा, और अगर छूट जाता है तो क्या होगा?
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो जनरली जनगणना की यही कंसेप्ट है कि जो आदमी जहाँ पे रहता है, क्योंकि देखिए अगर वो शहर में रहता है तो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक मतलब शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मजबूत बनाना है, इसलिए जनगणना का जो कंसेप्ट है जो जहाँ पे रहता है वहाँ पे उसकी गिनती होगी। हालांकि मैंने फिर एक बार कहती हूँ कि इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आपका गांव में भी घर है, गांव में 2 घर है, यहाँ पे 1 घर है, तो इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप जहाँ पे रहते वहाँ पे आपकी गिनती होगी।
0: जी और अब एक और प्रश्न हमारे साथ जुड़ गए हैं, एमपी से राजेश नीमा जी ने प्रश्न ले रहे हैं उनका। जी राजेश जी।
3: जी मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ, और मेरा सवाल ये है कि यदि एक घर में एक मकान, आधा मकान कच्चा है और एक कमरा पक्का है, तो वो जनगणना की कौन सी श्रेणी में आएगा?
1: जी तो जनगणना में अगर सारे सवालों के बारे में एक जिस्ट में बताऊँ तो प्रीडोमिनेंटली यानी मुख्यतः जो यूज होता है उसका इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं। जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर सोर्स की अगर मैं बात करूं कि आपके पास कुआं भी है और नल से भी पानी आ रहा है, लेकिन आप नल का पानी ज़्यादा यूज करते हैं तो नल आपको लिखना है। उसी तरह आपका अगर आधा मकान कच्चा है आधा पक्का है, या ज़्यादा मकान पक्का है और थोड़ा सा मकान कच्चा है तो पक्का लिखना है। तो ये डिपेंड है आपका कितना पोर्शन पक्का है कितना पोर्शन कच्चा है।
0: और अब एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से, पप्पू सिंह जी। जी पप्पू जी
4: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार
4: सर। जैसे मकान के अलावा जैसे हमारा प्लॉट है और उसमें हमारे पशु बनते हैं और ईंधन खंडा रखे रहता है और वहाँ पे कुछ भी बना नहीं है, वैसे ही है, उसमें पेड़

0: खड़े तो उसकी गणना भी होगी क्या?
1: जी नहीं, जैसे हमारे इस फेज का नाम है मकान सूचीकरण, तो वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए, खाली प्लॉट को गिनते नहीं हैं। लेकिन वहाँ पे अगर कोई कच्चा सा शेड भी है जिसमें पशु रखे हुए हैं, तो उसको एक नंबर दिया जाएगा और उसको नॉन रेसिडेंशियल करके उसको गिना जाएगा।
2: तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न था एक
1: जी
2: तरीके से,
1: जी
2: क्योंकि
1: हाँ
2: अक्सर लोग गांव में जो होता है पशु वगैरह बांध देते हैं और पूरा एक शेड प्रॉपर ताकि बारिश से उनको बचाया जा सके वो रखते हैं। अच्छा रुशाली जी, एक और ये सवाल है कि 2011 में बैंकिंग सेवा का उपयोग नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार जो है जनधन डीबीटी के बाद इसे जोड़ने का क्या मकसद है?
1: मकसद यही है, क्योंकि एक स्कीम शुरू की गवर्नमेंट ने जनधन योजना, तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, कितने लोगों के पास या कितने परिवारों के पास बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध है, ये देखने के लिए ये प्रश्न नए से जोड़ा गया है।
2: जी, और अंत में चलते चलते हम रुशाली जी आपसे चाहेंगे कि जनता से क्या अपील हम करना चाहेंगे ताकि वो इसमें सहयोग दे सकें पूरी तरीके से।
1: जी, जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि पूरा कोऑपरेट करें इस जनगणना के लिए, क्योंकि जनगणना से जो भी आंकड़े आते हैं, फिर से एक बार दोहराती हूँ मैं, पूरी तरह से गोपनीय रखे जाते हैं। इससे कोई भी आपके ऊपर ना कोई टैक्स लगेगा, लेकिन जो भी आंकड़े आप सही आंकड़े देंगे, उससे सरकार की नीतियाँ बनेगी, पॉलिसीज बनेगी, जैसे किस गांव में स्कूल बनाने हैं या किस गांव में पानी की सुविधा देनी है, अच्छे पानी देनी है या टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो इस तरह की जो भी वेलफेयर स्कीम्स सरकार बनाती है, उसके लिए सही सही जानकारी देना बिल्कुल ज़रूरी है। तो यही एक अपील है कि सही जानकारी दे और कोऑपरेट करे, और जो प्रगणक है हमारे, वो अपना काम संभाल के पूरा एक्स्ट्रा काम ये कर रहे हैं, तो उनको अच्छे से कोऑपरेट तो करे ही, प्लस अच्छे से उनसे उनके साथ बिहेव करे, अच्छे से बात करे।
2: जी बिल्कुल रुशाली जी, क्योंकि 10 साल में एक बार ये मौका आता है कि जब आपके घर की गिनती, आपके सपनों की गिनती जो है वो की जाती है। जनगणना कोई डर की बात नहीं है, ये आपके हक की बात है और आपका मकान न गिना जाएगा तभी मकान तक सुविधा पहुंचेगी। भारत की पहली डिजिटल जनगणना में भागीदार बनिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद रुशाली जी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आज आप हमारे समक्ष मौजूद रहीं और हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का आपने जवाब दिया। बहुत
1: धन्यवाद
2: बहुत बहुत धन्यवाद। तो
1: धन्यवाद।
2: श्रोताओं, मुझे दीजिए इजाजत कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार।

हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। खेल जगत कार्यक्रम थोड़ी ही देर में हम अपने जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे।

0: खेल जगत सुनने वाले सभी खेल प्रेमी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। दोस्तों, आज के इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं दो भेंट वार्ताएं, जिसमें एक है पैरा एथलीट जगसीर सिंह से नवीन सिसोदिया की बातचीत और दूसरे जूडो कोच डॉक्टर शेर सिंह से नवीन सिसोदिया की चर्चा। आइए कार्यक्रम का आरंभ करें इस बातचीत के साथ जो नवीन सिसोदिया ने की पैरा एथलीट जगसीर सिंह से।
1: श्रोताओं नमस्कार, आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं जगसीर सिंह जी। आप पैरा एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं और इनके परिचय के बारे में अगर मैं बात करूं तो इन्होंने भारत के लिए अनेकों गोल्ड और सिल्वर और जाने कितने ही मेडल्स

0: इन्होंने हासिल किए हैं, भारत को बड़े बड़े गेम्स में इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। इनके अवार्ड्स की अगर मैं बात करूं तो ये अर्जुन अवार्ड हासिल कर चुके हैं 2010 में, महाराणा प्रताप अवार्ड इन्होंने हासिल किया 2017 में, पैरा एशियन गेम्स के अंदर इन्होंने 2010 में गोल्ड जीता था। आप कैप्टन भी रहे हैं पैरा ओलंपिक गेम्स के, आप फ्लैग बियरर रहे हैं 2012 के लंदन पैरा ओलंपिक्स के, आपने पैरा नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया है जिसके अंदर अभी तक आपका जो रिकॉर्ड है वो कायम है और कोई उसको तोड़ नहीं पाया है। लॉन्ग जंप में आपने 6.9 मीटर का जो जंप है वो लगाया है। वर्तमान में आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। जगशीर जी, सबसे पहले आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: जगशीर जी। आपके जो मेडल्स हैं उनकी तो लिस्ट काफी लंबी है, ये तो मैं कुछ ही बता पाया हूँ। आपने भारत का जो नाम है वो विश्व स्तर पर काफी ऊंचा किया है। हम आपसे यही जानना चाहेंगे सबसे पहले कि पैरा ओलंपिक या जो पैरा एथलेटिक्स है वो क्या चीज है?
1: पैरा स्पोर्ट्स है जो एक जितने भी हमारे दिव्यांग हैंडिकैप लोग हैं उनके लिए एक तरह से अलग ओलंपिक से अलग गेम्स होते हैं, जिसके अंदर उनकी जैसे हाथ है जिनका हाथ नहीं है, जिनका पैर नहीं है और जो ब्लाइंड है उनके लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज उनका इवेंट होते हैं। जैसे जिनका हाथ नहीं है उनके उनमें हाथ वाले आते हैं, जिनका पैर नहीं है उनमें पैर वाले आते हैं, जिनमें ब्लाइंड है उनका ब्लाइंड की अलग अलग कैटेगरी होती है। तो एक स्पोर्ट्स है, इन पैरा स्पोर्ट जब शुरू हुआ तो उनको एक अलग सा माहौल देने के लिए शुरू किया गया था, बाद में जो दायरा है धीरे धीरे बढ़ता गया। अब जहाँ ओलंपिक होते हैं वहीं पैरालंपिक होते हैं, और पहले ओलंपिक होंगे फिर पैरा शुरू होते हैं, ऐसी एशियन गेम्स है फिर पैरा एशियन गेम्स है। और आज गवर्नमेंटें भी काफ़ी हेल्प कर रही है, उनको पूरा एक समान दर्जा है, भारत सरकार का, राजस्थान सरकार का, सारी सरकारें बहुत हेल्प करती है। क्योंकि जब कोई हैंडीकेप हो जाता है उसकी ट्रेजरी होती है तो उसको अपने जीवन यापन में या उसका अपने वहाँ से निकलने के लिए बहुत समय लगता है, उसको ऐसा लगता है कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। और पैरा स्पोर्ट्स से पैरालंपिक ने उनको एक रास्ता दिखाया है कि आप दुनिया को जीत सकते हैं, आप दुनिया में बहुत अच्छा बन सकते हैं। और आज बहुत सारे पैरालंपियन हैं जो उदाहरण बने हुए हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे जैसे मैंने खुद ने भी इंडिया रिकॉर्ड किया, जब मैं खेला और मेरा 1993-94 के अंदर 8-9 साल का था जब मेरा एक हैंड चला गया था।
0: जी, हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि कौन सी ट्रेजेडी रही जिसके चलते आप जो हैं ये हाथ के साथ आपके जो चोट लगी वो किस प्रकार हुआ, बताइए थोड़ा।
1: मेरा पुरुषोत्तम वास फतेहगढ़ गांव है हनुमानगढ़ टाउन के अंदर ही, तो वहां से जब मैं खेत में खाना लेने जा रहा था तो 11,000 वोल्टेज जो तार थी तो उसको जब नीचे गिरी पड़ी थी, हाथ से उठाया तो मुझे पता नहीं था करंट उसके अंदर, पूरा हाथ मेरा जल गया। जलने के बाद कुछ लोगों ने उठाया फिर हॉस्पिटल लेके गए, तो 2 से 3 महीने मेरा इलाज चला, फिर हाथ मेरा काटना पड़ा। तो हाथ जाने के बाद घर पे आया तो धीरे धीरे मैंने अपने आप को संभाला, बहुत छोटी एज थी नहीं पता था, तो फैमिली में काफी उदास रहते थे भी क्या होगा आगे जाके। धीरे धीरे स्टडी शुरू हुई, उसके बाद जब मैं प्लस टू के बाद हमारे द्रोणाचार्य कोच आर्डिस ने मिला तो उन्होंने बताया कि पैरा स्पोर्ट्स होते हैं, जहाँ पैरालंपिक के जो दिव्यांग बच्चे हैं वो खेलते हैं, उनका कंपटीशन होता है, वो जीतते हैं, उनको गवर्नमेंट हेल्प भी करती है। तो फर्स्ट मैं टूर्नामेंट 2006 के अंदर बेंगलोर में खेला नेशनल में, जिसमें मैंने 4 गोल्ड जीते और इंडिया का बेस्ट एथलीट बना, वहां से मेरी शुरुआत हुई।
0: जी, आपने बताया कि 1993 में आपके साथ ये हादसा हुआ और उसके बाद में आपने 2006 में एक कोच के कहने पर आप मोटिवेट हुए और आपने इनमें भाग लेना शुरू किया, बहुत ही अच्छी बात है। हम ये जानना चाहेंगे कि आपने ट्रेनिंग जो है वो शुरुआत कैसे की और कहां से की?
1: एक्चुअली शुरू में मैं पुरुषोत्तम बाद से जब घर से कॉलेज तक मैं रनिंग करके जाता था तो 10-10, 20-20 किलोमीटर रनिंग करनी, तब मेरे कोच द्रोणाचार्य आर्य सिंह जी, उनका हॉस्टल चलता था, उसने बोला कि आप बहुत मेहनती हैं, तो उनको मैंने स्टेट के बारे में बताया, मैं स्टेट खेला था, तो उन्होंने बोला स्टेट कुछ नहीं है, आप तो बहुत अच्छे बड़े खिलाड़ी बनने वाले हैं, यदि आप थोड़ी मेहनत करो तो देवेंद्र जाजड़िया जो पद्मश्री अवार्डी थे वो भी NMPG कॉलेज में थे पहले मेरे से, उन्होंने उनका उदाहरण दिया, उनके भी एक हाथ नहीं था, उनकी भी लैट लगी थी, उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया मुझे। तो मैं रात दिन तैयारी करने लगा, अपने हॉस्टल में रखा उन्होंने मुझे 6 महीने साल, और 2006 में जब मैं खेला तो उसके बाद वहाँ से शुरुआत हुई, वहीं से मेरा आयरलैंड के लिए जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप थी 2006 में जुलाई के अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ। तो फर्स्ट मेरा इंटरनेशनल टूर जो जुलाई में खेला उसके अंदर मेरा 16 जुलाई को मेरा गोल्ड आया लॉन्ग जंप का, और सबसे बड़ी बात है कि 16 जुलाई को मेरा जन्मदिन होता है।
0: आपको जन्मदिन का जो तोहफा है वो गोल्ड के रूप में मिला?
1: हाँ जी हाँ, फर्स्ट इंटरनेशनल टूर के अंदर।
0: उसके बाद में आपने इस खेल को और आगे बढ़ाने के लिए और ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए क्या आपने ट्रेनिंग में कोई बदलाव किया या आप वहीं पर ट्रेनिंग करते रहे?
1: देखेंगे कि किसी के अंदर यदि डेडिकेशन या कोई इच्छा शक्ति अच्छी है तो वो कुछ भी कर सकता है। मेरे अंदर ये चीज़ें बहुत थी, मुझे कोई परमात्मा का आशीर्वाद था, मैंने और ज़्यादा मेहनत करी आके। जब मैं ग्राउंड जाता था उससे पहले दलिया बना के जाना, अपना डाइट तैयार करके जाता था, 4-4 घंटे टिब्बों

0: सैंड रनिंग में ट्रेनिंग होती थी, वेट रनिंग, सीढ़ियाँ, सब ट्रेनिंग चलती थी। तो आके मैंने डाइट खा के सो जाता था, शाम को फिर ट्रेनिंग। तो मुझे लगा कि उससे मेरा ताइवान के लिए सिलेक्शन हुआ आगे 2007 में, नेशनल में फिर 3 गोल्ड आए मेरे 2007 के अंदर। तो वहाँ भी मैं ताइवान में 2 गोल्ड जीते वर्ल्ड गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियन बना और बेस्ट एथलीट बना वर्ल्ड का। तो मुझे लगा कि जो मैंने टाइम दिया, समय दिया, तो 2007 में मेरा दिल्ली कैंप था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, वहीं मैं रात दिन अपना ट्रेनिंग किया।
1: हम आपसे ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहेंगे कि आपने कौन कौन सी जगह से ट्रेनिंग ली है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जिनसे आपने ट्रेनिंग ली, क्या आपने सरकारी ट्रेनिंग प्राप्त की या फिर आपने प्राइवेट कोचिंग ली, किस तरह आपने अपने खेल को और उत्कृष्ट बनाने के लिए कार्य किया।
0: 2006 के बाद नेशनल में जब मेडल आए तो मुझे भारतीय खेल प्राधिकरण बैंगलोर से कैंप मिला, मुझे वहां में कैंप में रहा। फिर 2007 में मैं भारतीय खेल प्राधिकरण के कैंप में रहा, साई के अंडर में, दिल्ली के अंदर। 2007 के बाद बैंगलोर में मेरा कैंप लगा, वहाँ कंठेरवा स्टेडियम के अंदर, वहाँ भी वास्तुकार द्वारा सारा पूरा खर्चा वहन किया जाता था। 2008 में बीजिंग पैरालंपिक गेम्स थे तो मैं काफी लंबा टाइम रहा उस टाइम। फिर मुझे पटियाला इंडिया कैंप चलता है भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा, वहाँ रहा। तो वहाँ पूरा डाइट का शेड्यूल है, पूरा मसाज का है, सोना बात है, स्टीम है, गवर्नमेंट का मसाज का है, पूरा रहता है और बहुत सारी फैसिलिटी है। तो उनका मुझे पूरा फायदा मिला क्योंकि मैं एक मिडिल फैमिली से था जहाँ इतनी मेरे पास इक्विपमेंट नहीं थे, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था स्पोर्ट्स का। वहाँ सिंथेटिक ग्राउंड जो इंटरनेशनल इवेंट का होता है वहाँ मुझे वो मिला, वहाँ ट्रेनिंग करने का मौका। वहाँ पूरा बॉक्स जैम्प है, जहाँ स्टडी जैम्प है, बहुत सारी चीजें इक्विपमेंट थे जिससे रात दिन मेरा 4 बजे उठने का शेड्यूल, रात का सोने का। मैं कभी फोन यूज नहीं करता था उस टाइम, ना मेरे पास फोन था। तो बीजिंग में मैंने 6.97 लॉन्ग जंप किया वहाँ ट्रेलों के अंदर। फिर पटियाला मैं कैंप में रहा काफी टाइम। फिर बीजिंग से पहले मुझे 2 महीने के लिए इन्होंने मलेशिया शाह आलम भेज दिया गया इंडियन कैंप के लिए, वहाँ ट्रेनिंग कैंप बीजिंग आया। वहाँ मेरी काफी इंजरी थी तो अच्छा नहीं हो पाया पैरालंपिक्स में, मैं काफी उदास हो गया था। इंडिया आने के बाद मैंने बिल्कुल हौसला छोड़ दिया था, तो मैंने कहा मैं बीएड करने जाऊंगा। तो फिर देवेंद्र जाजड़िया आए थे हनुमानगढ़, वो बोले कि स्पोर्ट्स नहीं छोड़ना है, कुछ ही हो जाए। फिर मैं बीएड करने चला गया, कोसा बोले कोई बात नहीं, अब टाइम है अपने पास। तो 2009 में मेरी बीएड कंप्लीट हुई। फिर देवेंद्र भाई साहब आए, वो बोले कि अब वर्ल्ड गेम्स आ रहे हैं 9 के अंदर, बैंगलोर खेलेंगे अपने साथ दोनों। फिर हमने वर्ल्ड गेम्स की तैयारी शुरू करी, मैंने 6.70 करके नया एशिया का उस टाइम रिकॉर्ड किया, इतनी था, तो गोल्ड जीता। फिर दोबारा मैं उस गेम के अंदर आया, फिर मुझे दिल्ली जो 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे राष्ट्रमंडल खेल, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मुझे कैंप मिला लंदन में, 3 मंथ के लिए लंदन चले गए हम लोग। तो 2010 में सबसे गोल्डन टाइम रहा मेरा क्योंकि जुलाई के अंदर एशियन ऑल स्टार मीट थी दिल्ली के अंदर, तब मेरा गोल्ड आया। फिर अगस्त में मुझे अर्जुन अवार्ड मिला, डिक्लेयर हुआ, उससे बहुत हौसला मिला उस चीज से। उसी साल मैंने अगस्त में अर्जुन अवार्ड मिला, सितंबर में मैंने इंडिया रिकॉर्ड किया जो आज तक ब्रेक नहीं हुआ, क्योंकि बॉडी के अंदर विल पावर एक अलग ही थी, मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो उसी साल फिर नॉटिंगम थे मैनचेस्टर के, सितंबर के अंदर लास्ट में, वहां दोनों गोल्ड जीते। उसी साल कॉमनवेल्थ गेम्स थे 3 से 14 अक्टूबर 2010 को, वहां मेरा सेमीफाइनल आउट हो गया था। मैं उसकी कमी मैंने एशियन गेम्स में पूरी करी, मेरा गोल्ड आया, सिल्वर आया। वहां भी हमारे जो इंडियन एवेंसी वाले वहां रोज आते थे तो वो बोलते थे भी किसी का गोल्ड आए तो हम नेशनल एंथम हमें सुनने को मौका मिले, क्योंकि जिस कंट्री का गोल्ड आता है वो नेशनल एंथम हमारा राष्ट्रगान बजता है। तो वहां पूरी एशियन टीम में एक सिंगल गोल्ड आया था मेरा
1: जी।
0: और नेशनल एंथम बजा, उन्होंने मुझे एक वॉच गिफ्ट करी थी इंडिया चाइना रिलेशनशिप की, वो आज ही मेरे पास रखी है। तो उनको वो बोले बड़ी खुशी मिली है कि हमारा नेशनल एंथम आज झंडा चढ़ा और राष्ट्रगान बजा है। तो उससे ज्यादा खुशी मुझे लगता है कि नहीं होते, एक आर्मी मैन जो रात दिन हमारे से भी ज्यादा एक शहीद होता है, उनको वो ड्यूटी देता देश के लिए, एक खिलाड़ी है कि बाहर अपना मेडल जीत के और राष्ट्रगान और तिरंगा हमारा फहराता है। तो एक प्राउड मोमेंट था उस टाइम, हम बता नहीं सकते कि इतना उस पोडियम पे खड़ा हो कितना फील हो रहा था। और
1: एक चीज ये भी देखने को मिलती है कि कुछ जो खिलाड़ी तैयारी करते हैं वो मेहनत करते रहते हैं लेकिन रेस्ट की तरफ पूरा ध्यान नहीं रखते, तो रेस्ट इसमें कितना जरूरी होता है।
0: मैंने बताया कि पहले अच्छी ट्रेनिंग, फिर अच्छा डाइट, फिर एक्टिव रेस्ट। यदि आप अच्छी डाइट खा के 2 घंटे सो लो, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। हर सैटरडे को हर खिलाड़ी को मसाज की बहुत जरूरत है क्योंकि जितने हमारे टिश्यू थकान होती है वो मसाज से दूर हो जाती है। मसाज के 24 घंटे के बाद हम ट्रेनिंग नहीं कर सकते, 24 घंटे रेस्ट देना होता बॉडी को, उसके बाद ही ट्रेनिंग कर सकते हैं। और स्टीम बहुत जरूरी है बॉडी के अंदर, यदि हमारे पास स्टीम नहीं है तो मसाज तो हर जगह मिल जाती है, मसाज तो हम किससे करवा सकते हैं, घर पे भी बाहर भी। तो खिलाड़ी को जैसे कोई गाड़ी या सर्विस है तो वो उसको अपनी बॉडी का खुद को ध्यान रखना है। परफॉर्मेंस खिलाड़ी बहुत सारे ट्रेनिंग करते हैं, वो अपनी इस भी चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। मैं भी बहुत बोलता हूँ कि मसाज बहुत जरूरी है 1 वीक के अंदर, क्योंकि नॉर्मल इंसान वो भी करता रहे तो वो भी स्वस्थ रहता है
1: जी।
0: मसाज ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छी है
1: जी। आपने जो छोटी छोटी बारीकियां बताई है, मैं ये चाहूंगा जो छात्र अभी या जो खिलाड़ी

0: ये भी तैयारियां कर रहे हैं वो इन बातों को सीखें और अपनी तैयारी को और ज्यादा निपुण बनाएंगे। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जो खेल है जंप का जो है लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप आपने बताया, ये किस तरह से होता है, इसके लिए क्या विशेष तैयारी आप करते हैं?
1: लॉन्ग जंप के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग की जरूरत नहीं होती है, वो 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर 12 में वो खिलाड़ी करते हैं। इसके अंदर वेट ट्रेनिंग मेन रहती है, जिम का रहता है, जैसे हाफ स्कर्ट है, बॉक्स जंप है, हर्डल्स है इसके अंदर, और ज़्यादा टाइम जो पिच के अंदर बीतता है, जो लॉन्ग जंप पिच बनी होती है उसमें ब्रॉड जंप हो गए, बॉक्स जंप हो गए, उसके ऊपर हर्डल रख के ज़्यादा उसी पे है, सीढ़ियाँ है, वन लेग से जंप है, बाउंडिंग है, होपिंग है इसके अंदर जो करते हैं, मतलब जंपिंग छोटी छोटी एक्सरसाइजें ज़्यादा होती है, मतलब पावर के लिए और स्पीड के लिए की जाती है, इसमें इंड्योरेंस का इसमें थोड़ा कम रहता है, जो लॉन्ग डिस्टेंस करते हैं 1500 उनके लिए ज़्यादा इंड्योरेंस का मैटर रहता है, शॉर्ट कम रहता है, इसमें जंपिंग वाली जितनी एक्सरसाइजें हैं ज़्यादा वो ऐड करते हैं हम लोग।
0: जगशीर सिंह जी, हम आपसे अंत में एक सवाल जरूर पूछना चाहेंगे कि यदि कोई खिलाड़ी खेल को ही अपना करियर के रूप में चुनना चाहे तो उसके लिए क्या संभावनाएं होती है?
1: खेल में या चाहे सामान्य खिलाड़ी है चाहे पैरालंपिक खिलाड़ी है, जितने भी हमारे हनुमानगढ़ क्षेत्र के या राजस्थान के दिव्यांग खिलाड़ी हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि पहले जैसा नहीं है, आज स्पोर्ट्स का बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। हनुमानगढ़ में पहली बार सिंथेटिक ग्राउंड अभी बजट में अनाउंसमेंट किया राजस्थान सरकार ने, बड़ी खुशखबरी है कि 8 करोड़ का जहाँ हनुमानगढ़ जंक्शन में सिंथेटिक ग्राउंड बनेगा, बहुत बड़ी बात है। अब राजस्थान सरकार खेल निदेशालय बना रही है, और 2 दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा तो स्पोर्ट्स का एक अलग ही बनेगा बोर्ड, तो उसमें भी खिलाड़ियों को फायदा मिलेगा। हमारा राजस्थान का कोई भी खिलाड़ी स्टेट में गोल्ड जीता उसको 1 लाख का केस प्राइज दिया जाता है
0: जी,
1: और सिल्वर जीता 50,000 रुपया और ब्रॉन्ज मेडल जीता 30,000 रुपया। ऐसा ही नेशनल में है, नेशनल में यदि गोल्ड जीता 2.5 लाख और यदि वो सिल्वर जीतता है तो 2.5 लाख और 1.5 लाख रुपया ब्रॉन्ज मेडल भी है। खिलाड़ियों को समय समय पर ये राशि मिलती रहती है, और यदि क्योंकि डाइट का मैटर रहता है, खिलाड़ी को डाइट पैसा मिलेगा तो डाइट खाएगा खिलाड़ी
0: जी बिल्कुल,
1: उसका है गवर्नमेंट, अब पहले नहीं था, अब देखो नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल लेके आता है खिलाड़ी, उसको डायरेक्ट आउट ऑफ टर्नमेंट नौकरी है, कुछ नहीं करना, उसको एक फॉर्म भरना है और 6 मंथ के अंदर अंदर उसको ज्वाइनिंग मिल जाती है। और उसके
0: आपके
1: अंदर
0: कहने का मतलब अगर कोई खिलाड़ी नेशनल गेम्स में ब्रॉन्ज भी जीत जाता है तो उसको डायरेक्ट नौकरी जो है वो सरकार की तरफ से दी जाती है?
1: बिल्कुल सर, मेरे साथ बहुत सारे खिलाड़ी है जूनियर है जो नेशनल लेवल पे खेले हैं और मेडल आया उनका लगे हुए हैं, बालाराम है, संतोष है, बहुत सारे रजनी है, जे सारे नेशनल मेडलिस्ट इनका नाम लिए मैंने जो हनुमानगढ़ के, और जो सारे सरकारी नौकरी लगे हुए हैं आईएलडीएस की पोस्ट पे आज, और 56 डिपार्टमेंट दिए राजस्थान गवर्नमेंट ने, और 56 डिपार्टमेंट में कोई भी इनकी इच्छा के अनुसार जो दिव्यांग खिलाड़ी उनको पोस्टिंग दी जाती है, वो उनको होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाता है, वो इतनी हेल्प इतनी सरकारें कर रही है, तो मैं कहूँगा भी आने वाले समय के अंदर और ज़्यादा स्पोर्ट्स डेवलपमेंट बढ़ना चाहिए, और जो दिव्यांग खिलाड़ी है वो हौसला बिल्कुल भी नहीं हारे, वो ज़्यादा मेहनत करेंगे ज़्यादा आगे बढ़ेंगे।
0: जी जगशीर जी, आपने हमारे श्रोताओं को बहुत ही अच्छी बातें बताई, हम चाहेंगे कि आपकी बातें सुनकर जो खिलाड़ी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को और ज़्यादा फाइन करेंगे, रिफाइन करेंगे और भारत के लिए कोई और जो मेडल है वो हासिल करेंगे। आप भी इस खेल से जुड़े रहें और लोगों को इस खेल की अच्छी जानकारी दें और भारत का जो नाम है इसी तरह रोशन करते रहें। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सर।
2: दोस्तों, ये थे पैरा एथलीट जगशीर सिंह, आपसे भेंट कर रहे थे नवीन सिसोदिया। आइए अब सुने जूडो कोच डॉक्टर शेर सिंह से आप ही की चर्चा।
0: श्रोताओ नमस्कार। श्रोताओ, खेल का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है, खेल हमारे मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और हमारे व्यक्तित्व को भी दिशा देता है। यदि कोई व्यक्ति खेल से जुड़ा है तो वो अपने जीवन में निश्चित रूप से अनुशासन का पालन करता है, शारीरिक स्वास्थ्य पर वो ध्यान देता है और खेल खेलने से ही खेल भावना का निर्माण होता है और आपके व्यक्तित्व को जो है खेल निखार देता है। इन्हीं खेलों में से एक खेल है जूडो। जूडो खेल के बारे में बात करने के लिए हमारे आकाशवाणी सूरतगढ़ के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर शेर सिंह को। आप 5th डैन ब्लैक बेल्ट हैं जूडो में, कॉमनवेल्थ में मास्टर कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था 2018 में, ब्रांड एम्बेसडर आप रहे हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में, स्वीप आइकॉन जिसको कहते हैं इंटरनेशनल जूडो के अंदर, इन्होंने कई सारे जो शोध पेपर हैं वो भी इन्होंने छपवाए हैं। 1995 से लेके आज तक ये स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया में जूडो कोच के पद पर कार्यरत हैं।

0: और इसके साथ ही भारत सरकार की तरफ से जहां भी जूडो से संबंधित कमेटियां अगर जाती हैं, पैनल्स जाते हैं, उनमें ये सदस्य के रूप में जरूर पहुंचते हैं और ए ग्रेड के इंटरनेशनल रेफरी हैं। सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर शेर सिंह, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: कभी बहुत बहुत धन्यवाद
0: डॉक्टर शेर सिंह। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे, जूडो खेल क्या है, कहाँ से आया है?
1: जूडो खेल एक जापान का खेल है
0: जी।
1: सबसे पहले डॉक्टर जिगारो कानो जो इसके फाउंडर हैं, उन्होंने 1860 में एक जुजुत्सु जो मार्शल आर्ट थी उसमें उसको अच्छी बातें लॉकिंग और चौकिंग को रखकर उसको रख लिया और दूसरी चीजें छोड़ दी। जूडो एक जबरदस्त गेम है, बढ़िया टेक्निक थी उनको रखा और दूसरों को उनको रखा, जैसे एक बहुत अच्छा गेम इन्होंने तैयार कर दिया
0: जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने जूडो कब शुरू किया, कब आपका लगाव इससे शुरू हुआ?
1: सर मैं 87 में ही स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हमारे गुरुजी राजेंद्र सिंह बिश्नोई जो साई कोच थे गंगाधर, उनका अपॉइंटमेंट हुआ तो उन्होंने वहाँ जूडो मेरे गंगा सिंह स्टेडियम में सिखाना शुरू किया।
0: आपके मन में कैसे आई कि मेरे को सीखना चाहिए?
1: मैंने कई बार टीवी में देखा तो मुझे ऐसा लगा भी जूडो सेल्फ डिफेंस के लिए सीखना चाहता था, इसे यदि मैं सेल्फ डिफेंस करूँगा तो ये मुझे अच्छा रहेगा। तो मैं हालांकि बेसिकली मैं रेसलिंग से था और कबड्डी और रेसलिंग खेलता था, लेकिन एक ऐसा टर्न आया जो साई के चीफ कोच डॉक्टर राजेंद्र सिंह बिश्नोई थे वो और देवेंद्र सिंह जी, इन्होंने जूडो के बारे में मुझे बताया, फिर मैं इनसे सीखा और 87 से मैं जूडो खेल के 88, 90, 91 में मैं राष्ट्रीय और यूनिवर्सिटी ऑल इंडियन यूनिवर्सिटी लेवल पर खेला। उसके बाद मुझे एक ललक सी लगी, मैं जूडो ही में परमंगत होना है, तो इसके बाद लगातार आज तक जूडो खिला रहा हूँ और खेलता हूँ।
0: आप 95 में आपने राजस्थान सरकार में एक फिजिकल टीचर के रूप में आपने ज्वाइन किया, तो उस वक्त भी आपने बच्चों को जूडो सिखाना शुरू किया?
1: तो मैंने 93 में NIS पटियाला में जाकर अपना डिप्लोमा स्टार्ट किया, जिसे हमारे चीफ को जेजी शर्मा जी और टोनी ली जो चाइन इंडिया कोच थे वो उनसे मैंने सीखा, और 94 में मैं डिप्लोमा लेके घर आया। फिर उसी दौरान राजस्थान सरकार ने सर्विस के लिए कुछ पोस्टें निकाल रही थी और मेरा 94 मैंने फॉर्म भरा और फरवरी 95 मेरी पोस्टिंग वहीं हो स्कूल में होगी, तो तब से लेकर आज तक उसी स्कूल में हूँ और वहीं सेवा कर रहा हूँ।
0: क्या बात है। उसके बाद में जैसे आपने जूडो की बात की, तो जूडो में आप कब राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े, क्योंकि आपकी जो नियुक्ति है वो तो राजस्थान सरकार में हुई, फिर आप कोच के रूप में किस तरह उभर कर आए?
1: सर इसमें क्या, राज्य सरकार तो सिर्फ फिजिकल एजुकेशन टीचर के रूप में ही मैंने ज्वाइन किया, लेकिन जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया जो जितने भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता करवाती हैं ये उनके तत्वावधान में होता है, तो मैं उसके बाद 95 के बाद मैंने NDIU नेशनल डिप्लोमा इन ऑफिशिएटिंग उसके तहत मैं ए ग्रेड में पास हुआ। 96 में सबसे पहले मैं इम्फाल में गया और वहाँ मैंने रेफरशिप स्टार्ट की। उसके बाद मैंने टीमें जाती हैं ओपन के लिए, राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए, स्कूल के लिए भी और राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो अलग से एक भारत सरकार खेल मंत्रालय चलाता है, तो उसमें भी मैं राज्य सरकार की ओर से राजस्थान एसोसिएशन की ओर से मैं कोच के रूप में प्रतिनियुक्त होकर जाता रहा, जिससे मैं मेरा आगे जुड़ाव और बढ़ता गया।
0: जी हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी तक जैसे हम सुनते थे जूडो खेल के रूप में तो है ही, लेकिन इसको आत्मरक्षा के रूप में ज्यादा देखा जाता है, तो जूडो और ताइक्वांडो जो है इन दोनों में मुख्य रूप से क्या अंतर है?
1: सर जूडो सबसे पुरानी जो जूडो कराटे थी 1972 के बाद जूडो कराटे अलग कर दी, ताइक्वांडो कुंग फू थांग था ये इसकी एक मार्शल आर्ट की वेराइटी है। ठीक है बहुत बढ़िया है ताइक्वांडो में, लेकिन उसमें पंचिंग है किकिंग है, लेकिन जूडो एक बहुत ही शालीनता गेम है, ऐसे एक गेम है, तो जूडो के खेलने से भी लड़कियों के लिए आजकल इसका बहुत ही प्रचार प्रसार हो रहा है, जिससे क्या कोई भी शो दे इनको घेर लें उसको ये एक कुछ ही पल में टेक्निक सीख कर तो उनको उससे बचा जा सकता है, इसलिए जूडो एक सेल्फ डिफेंस का बहुत ही महत्वपूर्ण खेल है जिसमें तकरीबन जो टेक्निक है वो जूडो की ही इसमें यूज होती है।
0: जी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जूडो खेलते वक्त क्या चोट लगने की संभावना भी रहती है?
1: नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन लगता है देखने वाले को, जूडो खेलने से चोट नहीं लगती, क्योंकि जब हम बच्चा 10-11 साल से हम खिलाते हैं तो उसको गिरने की पहले ही हम ऐसी

0: फॉलिंग्स खाते हैं जिससे क्या वो बच्चा परिपक्व हो जाता है
1: जी
0: और उसकी साइड लैंडिंग ऐसे करवाती हैं कि यदि वो हाथ पे गिरेगा तो उसके सारा हाथ जो उसका शॉक ऑब्जर्व कर लेता हाथ, तो हम उसके गिरने की टेक्निक ही ऐसी उनको सिखा देते हैं जिससे उनको चोट नहीं लगती। और जूडो में कोई चोट नहीं लगती, हाँ जूडो वाला चोट मार सकता है, उसको चोक कर सकता है, उसको लॉक करता है। लॉकिंग की बहुत टेक्निक हैं, चोकिंग 10-12 सेकंड के लिए वो चोक कर देते हैं और वो बेहोश हो जाता है, तो उसके बाद अपने कुछ भी कर सकते हैं।
1: हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि यदि कोई बच्चा सीखना चाहता है तो कौन सी उम्र से वो शुरू कर सकता है?
0: सर सबसे पहले हम 9-10 साल का बच्चे को लेते हैं, उसको सब हम जिमनास्टिक की सारी एक्सरसाइज कराते हैं जिससे क्या वो बच्चे की फ्लेक्सिबिलिटी हो जी। 10-11 साल से हम स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि बच्चा को वहाँ वेट ट्रेनिंग भी होती है सबको, लेकिन छोटा बच्चा ओवरलोड हो जाता है, हम उसको वेट ट्रेनिंग नहीं देते। धीरे धीरे धीरे उसको टेक्निक्स सिखाते हैं जैसे कि वो जैसे जैसे बच्चों के साथ सीखता है तो 2-3 सालों में वो सारी एक्सरसाइज करने लग जाता है।
1: जी जैसा आपने बताया कि अगर 9-10 साल का बच्चा आपके पास आए तो आप सबसे पहले उसको जिमनास्टिक्स की कुछ एक्सरसाइजेस सिखाएंगे। कौन कौन सी एक्सरसाइजेस होती हैं इसमें जो आप उनको सिखाते हैं और किस तरह से आप उसको 9-10 साल के बच्चे को ट्रेन करते हैं, आप विस्तार से बताइए।
0: सर सबसे पहले हम बच्चा जब नया आता है उसको सब उसको पहले 1-2 दिन क्लास लगाते हैं भी ऐसे बच्चे उसको हम मोटिवेशन करते हैं भी तू ऐसे बनेगा तो अच्छा होगा, नेशनल इंटरनेशनल पर तेरा नाम चलेगा। तो बच्चा क्या सबसे पहले रोलिंग स्टार्टिंग फ्रंट रोल और बैक रोल, इसमें काफ़ी प्रक्रिया होती है क्योंकि कई बच्चे आते हैं फ्रंट रोल करते हैं क्या बैक रोल, उनका नेक दर्द या पेट की जो ये ओब्लिक मसल होते हैं ये दर्द करने लग जाते हैं। तो बच्चा धीरे धीरे धीरे उसको हम लोड देते हैं, उसके बाद उकेमी है जो ऊपर से नीचे गिर जाते हैं वो कैसे गिरना है, जैसे हिप कैसे लैंडिंग करेगी और जो अपनी टांगे हैं उसका क्या एंगल होगा और जो अपना ठोड़ी है वो कहाँ पीछे सिर कितना उठाना, ये उसको हम बारीकियों से उसको सिखाते हैं। तो उसे जैसे वो नीचे बैठता है पहले उसे हिप लगती है, फिर वो स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करने पर टांगे उसकी 45 डिग्री एंगल से 90 तक जाते बीच में रखते हैं और सिर पीछे उठा होता है, ऐसे गिरता गिरता वो जैसे ही सीख जाता है तो वो उसमें हम उसको फिर उसको टेक्निक भी जैसे पहले शोल्डर थ्रो देना है उसको, फिर कमर के हाथ में हिप थ्रो देने हैं, ये धीरे धीरे सिखाते हैं। ये प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी है क्योंकि जब जब तक आदमी खेलता तो सीखता ही रहता है
1: जी। भारत की अगर हम बात करें जूडो के अंदर तो आप क्या स्थिति देखते हैं खेल के दृष्टि से अगर देखें, क्योंकि ये खेल ओलंपिक्स में कॉमनवेल्थ में और अन्य भी जो इंटरनेशनल स्तर के जो चैंपियनशिप्स होती हैं वहाँ पर ये अधिसूचित है, तो भारत की इसमें क्या स्थिति है?
0: सर भारत में आजकल भारत सरकार खेलों के बारे में बहुत ही अच्छा भी रिस्पांस दे रही है, भी बड़ी बड़ी एकेडमी खोली हुई हैं जैसे सबसे पहले GSW में जो औद्योगिक घराना है जिंदल स्टील उन्होंने खोली हुई है, उसके बाद भोपाल साई भारतीय खेल प्राधिकरण ने बहुत बड़ी एकेडमी खोली है, इम्फाल में
1: जी
0: बहुत बड़ी एकेडमी खोली है जो भारत सरकार द्वारा संचालित है
1: जी।
0: तो उसके बाद वहाँ पर वो बहुत अच्छी डाइट और बहुत ही अच्छे कोचेज, जैसे मैं बताऊँ JSW में फॉरेनर कोच हैं और अहमदाबाद में संस्कार धाम है एक जगह वहाँ पर भी फॉरेन कोच जॉर्जिया के कोच रख रखे हैं। इसी प्रकार
1: तो ये जो, सभी जो आपने बताई ये संस्थाएं ये भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं?
0: बिल्कुल, भारत सरकार भारतीय खेल प्राधिकरण के ही खेल मंत्रालय के नीचे ही आती हैं
1: ये सारी
0: और उनमें बड़े 10-10 कोच और बड़े हाई परफॉर्मेंस कोच रख रखे हैं और फॉरेन और जो औद्योगिक घराने हैं JSW है इन्हों ये भी फॉरेन कोच रख रखे हैं जो बड़े ओलंपिक मेडल हैं, भारत के खिलाड़ियों को कोचिंग देते हैं और तैयार करते हैं जिससे बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं।
1: कुछ हम खिलाड़ियों का नाम जानना चाहेंगे जो आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी अच्छा कर रहे हैं।
0: हमारे अभी लेंथोई है अभी जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लेके आई है, हमारे एक लड़का है हर्ष है वो, और अवतार सिंह अभी ओलंपिक पिछला खेल के आया था ओलंपिक खेल के वो अच्छा है, तो लड़के बहुत है सर, नाम की फहरिस्त बहुत लंबी है जी, बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। कोचिंग के लिए जॉर्जिया में सेंटर बनाया वहाँ जाके भी प्रैक्टिस करती हैं और अभी जापान भी JSW की टीम जापान जा रही है वो भी अभी दूसरी बार जा रही है, वहाँ भी 10-10, 15-15, 20-20 दिन की ट्रेनिंग कैंप लगे ओलंपिक से पहले। भारत सरकार का एक मुख्य देश है भी जो अपना ओलंपिक इंडिया में हो रहा है तो उसमें भारत ओलंपिक में खेले और मेडल जीते।
1: बिल्कुल, हम भी चाहेंगे कि भारत गोल्ड मेडल तक लेकर आए। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो भी इस खेल से जुड़ा हुआ है उसको अपनी

0: फिटनेस और रूटीन में क्या विशेष चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए?
1: सर अलग अलग, सर आजकल तो बड़ी हाईटेक फिटनेस है सर
0: जी,
1: बड़े बड़े जिम हैं, लेकिन आम आदमी के लिए या आम खिलाड़ी के लिए, हम बच्चों को रनिंग देते हैं, रनिंग के साथ साथ वो उसको एक्सरसाइज ऐसी है वो फिटनेस के लिए, जंपिंग जंपिंग ये बाइसेप ट्राइप्स के लिए, पुशअप पुलअप ये देते हैं रनिंग, और जिम के लिए ट्रेड मिले हैं आजकल, तो फिटनेस के लिए आजकल कोई प्रॉब्लम नहीं है।
0: और डाइट, डाइट की अगर हम बात करें तो
1: डाइट सर आजकल जैसे बड़े बड़े सेंटर हैं उनके लिए तो डॉक्टर हैं, वो कितना आप मिनरल लेना, कितना विटामिन लेना, कितना प्रोटीन लेना, वो सब उसके अनुसार चलता है
0: जी।
1: जो हमारे सेंटर है, जो जैसे चलते हैं गंगानगर, कर्णपुर, जयपुर, इसमें जो मेरे कोचिज है वो डाइट के लिए आजकल प्रोटीन का बड़ा रिवाज चलता है, वो लेते हैं लड़के प्रोटीन
0: जी जी
1: सप्लीमेंट का बहुत रिवाज, वो आजकल बना देते हैं अब इतना आजकल आ जाता है, लेकिन डर ये लगता है कि उस प्रोटीन में गलत ना हो।
0: जी बिल्कुल, उसकी शुद्धता बहुत
1: शुद्धता बहुत जरूरी है।
0: डॉक्टर शेर सिंह, हम आपसे अब आखिर में यही जानना चाहेंगे कि जो भी विद्यार्थी जूडो में जाना चाहते हैं या फिर जो सीखना चाहते हैं या सिर्फ आत्मरक्षा के रूप में भी इसको सीखना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है?
1: मेरा यही संदेश है कि बच्चे लड़के या लड़कियां जूडो जरूर खेलें, जिससे क्या है सेल्फ डिफेंस में और वो फिटनेस में, वो जूडो में खिलाड़ी ना बने भले ही, लेकिन सेल्फ डिफेंस खेलें जिससे आत्म रक्षा जरूर करें
0: जी।
1: और हमारे, मैं ये थोड़ी यही बता दूं, हमारे सेंटर के 5-6 लड़के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं।
0: बिल्कुल,
1: बलविंदर सिंह ग्लासगो में अभी खेल के आया है कॉमनवेल्थ और जूनियर वर्ल्ड खेल के आया है, मनप्रीत है, ध्यान सिंह अभी वर्ल्ड पुलिस कनाडा में अभी गया था ब्रम्पटन में, वहाँ पर मेडल, गोल्ड मेडल लेके आया हुआ है,
0: क्या बात
1: और
0: है।
1: अभी लड़का एक सिलेक्ट हुआ है मेरे साथ जा रहा ताशकंद के लिए, तो हमारे 3-4 लड़के और गगनदीप कौर एक लड़की दक्षिण कोरिया में गई हुई थी, तो हमारे लड़के गंगानगर जिले के वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय
0: बिल्कुल,
1: नाम रोशन कर रहे
0: गर्व की बात है हमारे लिए। डॉक्टर शेर सिंह, आप हमारे स्टूडियो में पधारे और खेल से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सर आपका भी मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: दोस्तों, ये था खेल जगत का आज का अंक, जिसमें आपने दो भेंट वार्ताएं सुनी, एक थी पैरा एथलीट जगशीर सिंह से और दूसरी डॉक्टर शेर सिंह जूडो कोच से नवीन सिसोदिया की बातचीत। खेल जगत के लिए आकाशवाणी सूरतगढ़ की प्रस्तुति, आलेख और वाचन रोहिता शर्मा का।

मीडियम वेव 326.7 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुने फिल्म संगीत।

चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाजें थी अमिताभ भट्टाचार्य और अनुषा मणि की। गीत अमिताभ भट्टाचार्य का और संगीत विशाल शेखर का। आइए अब सुने गुलजार का लिखा गीत, संगीत यार रहमान का, आवाजें उदित नारायण और महालक्ष्मी की, फिल्म का नाम दिल से।

इजिप्शियन ये जावेद अली और साथियों की आवाजों में तुम मिले फिल्म का ये गीत लिखा है सईद कादरी ने और संगीत प्रीतम का।

श्रोताओ, ये फिल्मी नगमे इस समय आप आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से सुन रहे हैं। आइए अब सुने सोनू निगम और साथियों की आवाजों में परदेश फिल्म का ये गीत।

चलते चलते फिल्म का गीत सुनिए, आवाजें सुखविंदर सिंह और साथियों के गीत, आदेश श्रीवास्तव का संगीत, बप्पू मान का।

लीजिए, कार्यक्रम के अंत में सुनिए कुमार सानू की आवाज में तुमसे अच्छा कौन है फिल्म का गीत, गीत समीर का, संगीत नदीम शरवण का।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था से लेकर शिपिंग तक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
2: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
1: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई, ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। द्विपक्षीय बैठक में एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते सहित कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। यह यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेले से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया। यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% अधिक है। उन्होंने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं

दोनों के निर्यात में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जज जांच समिति ने आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 181 रनों का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 15वें ओवर में 2 विकेट पर 131 रन बना लिए थे। चेन्नई की ओर से कार्तिक शर्मा ने 44 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।